0: चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्जम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम ज़रूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस्ट से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

0: ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है। लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में, और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी। आप है सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आप है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों। मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका इस विषय पर चर्चा करूंगी। तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है।
0: मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है।
1: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है। सो इनमें से देखा जाए तो चौलाय, सहजन, मालाबर पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं।
0: मैम इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है?
1: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है। अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है। मलाबार पालक जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाई जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है। इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसी फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है।
0: मैम ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की, अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझे तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है?
1: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है।
0: मैम आजकल हम लोग काफी

0: ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है?
1: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
0: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इन सब्जियों को?
1: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा बीएयू साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
0: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
0: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया, आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी है वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों

0: के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से

0: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से

0: 300 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्कासुरिया एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो

0: सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे

तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. और उन्नत कृषि कार्यक्रम में बिल्कुल आपको मालूम होगा हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की. और जहां तक बात है मशरूम की खेती की, तो बिल्कुल आजकल मैं देख रही हूं कि लोग जो हैं मशरूम की खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो हम भी आपको मशरूम के बारे में

0: अलग अलग मशरूम के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आज का जो विषय है पुआल मशरूम, आज हम पुआल मशरूम की खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं अनिता कुमारी मैडम, जो कि केवीके में, जी हाँ, केवीके सबौर में एसएमएस हैं और आज पूरी जानकारी के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, सबसे पहले तो जो मशरूम है, अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं, उन्हें अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, अलग अलग तापमान उनके लिए ज़रूरी होता है, तो ये पुआल मशरूम क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: अनु, हमारे बिहार राज्य का जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें अलग अलग मौसम में चार तरह के मशरूम की खेती की जा सकती है
0: जी।
1: इसमें ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पुआल मशरूम। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो पुआल मशरूम है। ये पुआल मशरूम को हम लोग पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहते हैं, या फिर धान पुआल मशरूम भी कहते हैं, या फिर चाइनीज मशरूम भी कहते हैं, और इसे गर्मा मशरूम भी कहा जाता है। और ऐसे इसका जो प्रजाति है उसके अनुसार वॉल्वेरिया भी इसे कहा जाता है। और इसका जो इजाद हुआ था, सबसे पहले जो इसकी खेती शुरू हुई थी, वह 1822 में चाइना में, चीन में शुरू हुआ था। और इसका जो वॉल्वेरिला शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो मशरूम का जो उत्पादन होता है, जिस वक्त यह मैच्योर होता है, उस वक्त उसके ऊपर एक वॉल्व टाइप का रहता है, वो फटता है तो हम जानते हैं कि इसकी तुराई हो गया है। और ये जो वर्ड है वॉल्वेरिला वर्ड से इसलिए लिया गया है इसका नाम जो है, कि उसके वो जो तुराई का एक स्टेप है, या उसके उत्पादन का एक स्टेप है, जिसके जो कि इस वर्ड से जुड़ा हुआ है
0: जी। मैम, इसकी खेती कब की जा सकती है, तापमान इसके लिए क्या सुटेबल होगा?
1: इसकी खेती हम लोग अप्रैल मई से सितंबर तक आराम से कर सकते हैं। और तापमान की यदि हम बात करें तो 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है। और थोड़ा यदि टेम्परेचर इससे कम बेस हो तो हम लोग थोड़ा प्रबंधन करके वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक नमी जो है 80 से 85% लगभग इसमें नमी चाहिए। इसका जो इस मशरूम को जो हम लगाते हैं तो एक स्टेज होता है कवक जाल फैलाव का, तो कवक जाल फैलाव के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो हमारा 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और लगभग 7 से 8 दिन में इसका पूरा कवक जाल फैल जाता है। और नमी हम लोग को 80 से 85% पूरे फसल अवधि के दौरान मेंटेन करके रखना होता है
0: जी। ये तो बात हो गई तापमान की, कब खेती इसकी करनी चाहिए हमें। और पुआल मशरूम का उत्पादन तकनीक, मैम ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को बताना और जो भी लोग इसकी खेती करना चाहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, पुआल मशरूम की तकनीक थोड़ी अलग है। जैसे कि हम लोग और भी जो तीन प्रजाति है मशरूम की, ऑयस्टर हो या बटन हो या फिर मिल्की हो, उसके लिए जो पोषाधार लेते हैं, कृषि अवशेष जो लेते हैं, वो धान का पुआल का कुट्टी हुआ या फिर गेहूँ का भूसा हुआ, मतलब वो हम लोग टुकड़े में लेते हैं, पुआल कुट्टी के रूप में लेते हैं। लेकिन ये जो पुआल मशरूम का जो हम लोग खेती करते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम का या पुआल मशरूम की जो खेती करते हैं, इसमें हम लोग धान का जो ताज़ा साफ सूखा हुआ पुआल जो होता है, उस पुआल का गट्ठर लेते हैं।
0: अच्छा।
1: और वो गट्ठर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का मोटाई होता है, गट्ठर का जो मोटाई होता है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। और जिसे हम लोग कोई तेज धारदार हथियार से उसके जो जिस तरफ से धान का बाली निकला होता है या पीछे का पोर्शन, दोनों को काट के बराबर एक जिस डायमेंशन का कर लेते हैं, दोनों तरफ से तेज धारदार हथियार से काट करके उसको बराबर साइज का कर लेते हैं। और गट्ठर की जो मोटाई रखते हैं वह 20 से 25 सेंटीमीटर की मोटाई के गट्ठर रखते हैं। इस तरह का गट्ठर इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ जो मान लो हमारा उत्पादन कक्ष जो है, उस कक्ष में एक इसके लिए हम लोग मचान बनाते हैं। वो मचान जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचा होना चाहिए और उसी मचान पर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग पुआल का गट्ठर बना लिए, पुआल के गट्ठर को रात भर पानी में भिगो देते हैं, किसी पानी के टैंकी या ड्रम जैसे भी हो, जो भी सुविधा हो उसमें हम लोग रात भर भिगो देते हैं। सुबह वहाँ उसे निकाल करके दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए
0: जी।
1: जब अतिरिक्त पानी निकल जाता है तो तब उसे लगभग आधा घंटा तक खौलते पानी में उबालते हैं, और उसके बाद फिर उसमें लगभग 2-3 घंटे छोड़ दिए, फिर उसको निकाल करके पुनः हम लोग दीवार के सहारे उसको खड़ा करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी है उसमें, वह अतिरिक्त नमी उसका निकल जाए। उसके बाद उसको गट्ठर को हम लोग जो मचान बनाए हुए हैं उस मचान

0: गट्ठर को का एक परत लगाते हैं, और परत जो हम लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि जिस तरह से एक बंडल हम रखे, दूसरा बंडल जो रखेंगे तो जिस तरफ से गट्ठर को हम लोग बांधे हैं वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक जो रखे हैं जिस तरफ से गट्ठर है तो दूसरी तरफ, दूसरी बार आपका जो पुआल जिधर से बाली लगा रहता है वो पोर्शन उसके बगल में रहना चाहिए। इस तरह से 6 से 8 गट्ठर हम लोग तह बिछा देते हैं, इसके ऊपर हम लोग मशरूम का स्पॉन डालते हैं, फिर दूसरा तह बिछाते हैं, फिर मशरूम का स्पॉन डालेंगे, फिर तीसरा तह बिछाते हैं। इस तरह से करीब 4 से 6 तह बिछाते हैं, और इस प्रकार से तह बिछा के हमारा जो उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए वो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक तह का 4 से 6 तह जो देते हैं उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको हल्का हल्का हाथ से हम लोग दबा देते हैं, दबाने के बाद ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से उसको हम लोग ढक देते हैं। इसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद हमारा पूरा माइसेलियम रन हो जाता है। जब माइसेलियम पूरा रन हो जाता है तो हम लोग पॉलीथीन शीट को हटा देते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार हल्का हल्का नमी डाल देते हैं उसमें, हल्का फुल्का नमी। उसके 2 से 3 दिन के बाद हमारा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है, और वो 1 से 2 दिन वो तुराई योग्य हो जाता है। यदि अनुकूल तापमान रहता है तो ये, चूँकि उस वक्त गर्मी काफ़ी रहता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, तो इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अनुकूल सारा कुछ इन्वायरमेंट अनुकूल रहे तो दिन में इसकी तुराई 3 बार भी करनी पड़ सकती है, सुबह दोपहर शाम, इतना फास्ट ये ग्रो करता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी इसका इस तकनीक से इसको हम लोग उत्पादन
1: करते हैं। जी मैम, ये तो बात हो गई उत्पादन की, लेकिन अब बात करते हैं तुड़ाई की, कि तुड़ाई किस प्रकार करनी चाहिए और इसके बाद भंडारण किस प्रकार करनी चाहिए।
0: तुराई, जब तुराई के लिए जब मशरूम को हम लोग देते हैं उसका ऊपरी सिरा, जो ऊपरी सिरा झिल्ली को फाड़ के, जब झिल्ली जब फट जाए उसके बाद ऊपरी सिरा दिखने लगे यदि मशरूम का, तो हम समझते हैं कि यह तुराई योग्य हो गया, उसको हम लोग तुरंत तोड़ लें। जैसा कि हम अभी पहले ही बताए कि यदि अनुकूल सारा चीज इन्वायरमेंट रहे, आइडियल रहे, तो इसकी इतना फास्ट बढ़वार होता है, कुछ दिन में 3 बार भी तुराई करना पड़ सकता है, तो उस अनुसार हम नहीं भी पड़ सकता है ये, जब अनुकूल रहेगा तभी हम 3 बार तुराई करेंगे, नहीं तो फिर 1 बार भी हो सकता है। तो जैसा आवश्यकता रहेगा उसके अनुसार हम लोग फटते ही, या तो फटने के जस्ट पूर्व तुराई करें, या फट गया तो बिल्कुल तुरंत हमको तुराई कर लेना है, तुराई कर लेंगे। और इसको तुराई के बाद, जैसे भंडारण की बात कही, तो भंडारण के लिए इस मशरूम का जो गुणवत्ता है वह भंडारण के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग इसको तुराई करके तुरंत उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग तुरंत उपयोग कर लें। और इसका पहले तुराई जब सारा कुछ आइडियल रहा तो लगभग 9 से 10 दिन में हो कर लेते हैं, और यदि बहुत आइडियल नहीं रहा तो भी 13 से 15 दिन के अंदर हम लोग इसका तुराई कर हो जाता है। मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो, कहने का मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो इसका होता है, और इसका जो टोटल पूरा फसल चक्र है वह लगभग 4 से 5 सप्ताह का होता है। 4 से 5 सप्ताह के अंदर इसका फसल चक्र तो आपका समाप्त हो जाता है। और यह चूँकि काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए इसका भंडारण यदि हम करना भी चाहें तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में कर सकते हैं। वो फ्रिज में भी टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो हम लोग 2 से 3 दिन तक इसका भंडारण कर सकते हैं। नहीं तो तुराई के कुछ घंटे के अंदर ही हम लोग को इसको उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो यह स्वविलय हो जाता है। और हम इस वजह से इसको हम लोग मार्केटिंग पर्पस से, या तो इसका फिर प्रोसेसिंग पे चले जाइए, निर्जलीकरण करके कोई प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इसको यदि हम फसल चक्र में इसको हम इंक्लूड करते इस मशरूम को, तो एक टेस्ट के लिए कि अलग टेस्ट मिलता है, लेकिन हम यदि रॉ मार्केटिंग करना चाहें तो थोड़ा इसका रॉ मार्केटिंग में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसका स्वलाइफ काफ़ी कम है।
1: मतलब ये जितना फास्ट ग्रो करता है उतना ही फास्ट है, मतलब ये सड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत जल्दी आप तुड़ाई के बाद इसका इस्तेमाल कर ले। मैम ये तो बातें हो गई भंडारण तुड़ाई की, बात करते हैं सावधानियों की, इसकी खेती के दौरान क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
0: जैसे कि अन्य मशरूम के खेती के दौरान जो सावधानियां हम बरतते हैं, क्योंकि यह भी तो एक मशरूम फंगस है, तो सारे के लिए सेम सावधानी लगभग सेम ही है, तो हम उसी तरह से पुआल मशरूम की भी यदि हम खेती करते हैं तो हम यह ध्यान रखें जो हम पोषाधार का जो पुआल का गट्ठर का हम चयन किए हैं वह बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना हो, पानी का भीगा हुआ होना चाहिए या सरा गला होना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल ताज़ा सूखा हुआ पुआल की गट्ठर का हम प्रयोग करेंगे। और जो भी जिस कमरे में हम इसकी खेती कर रहे हैं, चाहे या पुआल सीट से जो ढक रहे हैं, या मचान जो भी, या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, सारे चीज़ों को हम लोग

0: फॉर्मलिन से 2% फॉर्मलिन से सारे चीज़ को हम लोग उपचारित कर लें, शोधित कर लें, उसके बाद ही उसको हम लोग बिजाई कक्ष में ले जाएं और उसका उपयोग करें। और स्पॉन जो भी हम इसके लिए स्पॉन का चयन करते हैं वो स्पॉन ताज़ा होना चाहिए, 1 महीने से पुराना स्पॉन किसी हाल में नहीं लेंगे, किसी भी रूप में जो स्पॉन हो वो दूषित नहीं होना चाहिए, और स्पॉन में कोई गीलापन नहीं होना चाहिए, कोई बदबू नहीं होना चाहिए, रंगीन दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग को जब स्पॉन लेते हैं तो उस वक्त यह ध्यान देना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ स्पॉन में है तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए उस स्पॉन को, ऐसे या जहाँ तहाँ फेंकें नहीं, नहीं तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन आपके कक्ष तक आ सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस मशरूम की खेती हम लोग गर्मी में करते हैं, और उस वक्त गर्मी के समय में जो इन्वायरमेंट में जो जीवाणु इसका संक्रमण का दर काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो इस मशरूम के साथ साथ और दूसरे अवांछित जीवाणु आ जाएंगे और जो कि हमारे मशरूम को नुकसान पहुँचाएंगे। और जो आपका हमारा नमी बनाए रखना चाहिए, 80-85% हमारा नमी रहे, तापमान कोशिश करना चाहिए कि हम जो अनुकूल तापमान है उसको ही बना के रखें, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, अनुकूलता ज़्यादा सही रहेगी। और जब हमारा फसल निकल रहा हो तो उस वक्त उसमें किसी तरह का डायरेक्ट फसल पर किसी तरह का रसायन का प्रयोग ना करें, और यदि और जो भी दूषित पन्नी या पुआल जो भी आपका उत्पादन के बाद निकलता है उसको उत्पादन कक्ष से हटा दें, और उसको आप जो भी उसका खाद बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उत्पादन कक्ष से हटा लीजिए। जब एक फसल आप ले लेते हैं, फसल चक्र एक पूरा हो जाता है, तो दोबारा फसल लगाना हो तो एक बार कमरे को अवश्य फिर से निर्जीवीकृत कर लें, तो फिर उसमें हम लोग दूसरा फसल लगाएं। 3 सावधानियों को यदि हम बरतेंगे तो हमारा पुआल मशरूम की खेती काफ़ी अच्छी होगी, और उसको कम से कम हम लोग अपने खाने के लिए कुछ बेड तो जरूर लगाएं, ताकि हम अपने में आहार विविधता ला सकें और इसको अपने डाइट में हम शामिल
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं और किसान भाइयों और जो भी हमारे श्रोतागण पुआल की मशरूम की खेती करना चाहते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये आज का टॉपिक था, तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को जानने को आपको मिला होगा, और सावधानियों के बारे में जो मैडम ने बताया है तो आप उनको भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी।

0: चुकी 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: कृषि। जी हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के बीच, आप सभी के पास उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है और खास विषय भी है आप सभी के लिए, और वो है पपीता की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश की बात करें तो रंग बिरंगे फल और फूल यहाँ पर मिलते हैं, और फलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं ये फल, और बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरे रहते हैं ये फल। वैसे पपीता की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती एक जो समझ है वो हमें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों को ये समझ होनी चाहिए। और इसी विषय पर और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फिज़ा अहमद, जो है प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, जब पपीता की बात आती है तो खेती का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सही समय क्या होता है।
1: देखिए, पपीता एक ऐसे फल है जो कि हम यहाँ पे हर समय लगा सकते हैं, सिर्फ आप ठंडे को छोड़ करके। उसकी वजह यह है कि पपीता जो है ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
0: अच्छा।
1: तो आप ये रखिए उम्मीद कि आपको नवंबर से लेकर के फरवरी तक पपीते को नहीं लगाना चाहिए, बाकी समय में आप कभी भी पपीता लगा सकते हैं। लेकिन पपीता लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना होगा, और जो एक अहम प्रक्रिया है पपीते का बाग लगाने के लिए, नर्सरी जैसे कि आपने फरवरी में लगा दिया है तो आपका एक महीने के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाएगा, और आप मार्च में भी लगा सकते हैं। किसी वजह से आपने मार्च में नहीं लगा सके तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं। अगर मई में नहीं है तो जुलाई में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नर्सरी का प्रबंधन बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा बताया कि पानी में पपीता नहीं चल पाता है।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए आपको चाहिए कि जब पपीता का नर्सरी तैयार करना है तो आपको ज़मीन से करीब 1 फीट ऊपर का मट्टी का एक बना दें, रेज बेड बना दें, और रेज बेड पे ही आप उसमें सीड डालें।
0: अच्छा।
1: ताकि रेज बेड डालने से क्या होता है कि पपाया जो सीड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा और मरेगा नहीं, इसलिए हमेशा रेज बेड पे उगाना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन करने के लिए पपीता में सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ों के लिए हमें मट्टी में ज़्यादा नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि मट्टी में सीड का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि सीड बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल, इसलिए हमें हर सीड से पौधे बनने चाहिए। उसके लिए प्रोट्रे आता है। किसान भाइयों के लिए प्रोट्रे समझाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से वो विश्वविद्यालय आकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पपीता का सीड कैसे तैयार करते हैं। प्रोट्रे होता है, उसमें एक बुरादा हम लोग डालते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे कि पपाया का पौधा तैयार होता है। पपीता जो है इसमें वायरस बहुत लगता है। जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं,

0: कि उसको बाहर में छोड़ देते हैं, उससे वायरस लग जाता है। तो हम लोग उसको पपीता को बाहर में नहीं नर्सरी को तैयार करते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें हम लोग एक जाली नुमा दार जो है चद्दर डाल देते हैं, वो मार्केट में मिलता है,
1: कवरिंग
0: कर देते हैं ताकि उसमें जो है कीट जो है नहीं घुस सके। अगर कीट वो चला जाएगा तो वायरस कर देगा, और वायरस कर देगा तो आगे चल के कुकड़िया रोग लग जाएगा इसमें, जो पपीता का सबसे बड़ी समस्या है। किसान भाई पपीता का बहुत अच्छा पौधा देखते हैं, एक दो महीने के तक बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चला कि इसमें कुकड़िया रोग लग गया और कुछ भी फल नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है इसके लिए। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो नर्सरी तैयार करें, रेज बेड में करें, जमीन से उठे हुए एरिया में करें जहाँ पानी ना लगता हो, और जब वो सीड डालें और जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसमें नेट लगा दे वो, ताकि इंसेक्ट नहीं जा सके उसमें, अगर कीड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने कुकरैया रोग के बारे में कहा, अभी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पपीता की खेती के लिए जो बीज से नर्सरी तैयार किया जाता है तो उसकी विधि क्या हो सकती है?
0: हाँ, हमने जैसे कहा कि जो प्रेड ट्रे है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा, और वही चीज़ अगर आप जमीन में लगा के करते हैं तो उसमें आपको 60%, 60% 70% तक मिलेगा, लेकिन प्रो ट्रे में बहुत अच्छा होगा। और किसान को चाहिए कि वो विश्वविद्यालय आकर के सीखे कि पपीता का सीड को कैसे बनाया जाता है, उससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे।
1: अच्छा, तो ये बात हो गई है यहाँ पर सीखने की। तो जहाँ तक बात आती है सीखने की, तो हमारे किसान भाई जितना कुछ सीखना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपको हम पूरी की पूरी जानकारी रेडियो के थ्रू, यानी कि हमारा जो FM ग्रीन है उसके थ्रू दे। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब, जब बाग तैयार करने के तरीके आते हैं तो बाग तैयार कैसे करें, उस तरीकों के बारे में भी आप किसान भाई।
0: ये अहम प्रक्रिया है। बाग तैयार करने से पहले भूमि का चयन का बहुत जरूरी है कि पपीता जो है वो पानी जहां लगता है वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी ना लगता हो। अगर बारिश में पानी एक रात भी अगर किसी खेत में लग जाएगा और वो पपीता के संपर्क में आ जाएगा तो पपीता रात भर में मर जाएगा। इसलिए किसान भाई इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस खेतों का चुनाव करें जहाँ की सालों भर पानी ना लगता हो। अगर पानी भर भी जाता हो तो 2 या 3 घंटे में वो पानी निकल जानी चाहिए, तो ऐसे खेतों का चुनाव होना चाहिए। और मिट्टी जो है दोमट बलवाही मिट्टी जरूरी है इसके लिए। बलवाही मिट्टी भी, दोमट भी चलेगा इसमें, मतलब हर तरह के फील्ड में रहता है, लेकिन काली मिट्टी में ये नहीं चलेगा क्योंकि उसके रूट नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे जब चुनाव कर लिया गया है तो ये वैरायटी पे डेवलप करता है कि कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिस है, ये अच्छी वैरायटी है, और ये वैरायटी जो है पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये पौधा राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है, वो बीज तैयार करते हैं वहाँ पे, और किसानों के लिए ही बीज वो तैयार किया जाता है। तो किसान पूसा में जा करके पपीता का बीज ला करके नर्सरी तैयार करेंगे। अगर पूसा डिलीशियस लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर बाय 2 मीटर पे वो गड्ढा खोदेंगे जिसमें लगाना है, उससे करीब 15 दिन पहले गड्ढे को खुला छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर उसमें 2 टोकरी कम से कम डाल दें। अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है किसानों को तो वो भी 0.5 किलो 1 किलो के बीच में हर गड्ढे में डालते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाग में जो हम पौधे लगाते हैं तो साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि पौधे की दूरी, मतलब पौधे के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर है?
0: हाँ, जैसे वो लगा रहे हैं जो पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिक है, जो पूसा ड्वार्फ है, ये सबको 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: आज जो चलन यहाँ हो रहा है बिहार में वो रेड लेडी का चलन चल रहा है यहाँ।
1: ये क्या होता है?
0: रेड लेडी एक वैरायटी है जो ताइवान से आती है।
1: अच्छा,
0: और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है इसमें नर और मादा दोनों जो है फल देते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं ना पपीता में कि आधे में फल आता है आधे में नर आता है, तो नर वाला तो फल नहीं देता है, लेकिन ये जो रेड लेडी वैरायटी है ये जो भी पौधा लगेगा खेत में सब में फल आएगा। इसलिए किसान जो है इसी को प्रीफर करता है कि हमको जो है हर पौधे में फल मिले। इसलिए ये वैरायटी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा वैरायटी है।
1: हाँ,
0: तो इसको आप 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, ये 1.25 मीटर पे भी लगा सकते हैं।
1: और तो अक्सर अच्छा देखा भी है कि जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द फल मिले हमें, तो ये वाला वैरायटी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा।
0: जी, हर साल लगाना चाहिए, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है रेड लेडी में, इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। अगर सही टाइम पे इसका उपचार, जो कुकड़िया रोग है, नहीं करा जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान फिर मुश्किल में लग जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप खाद की मात्रा बता रहे थे अभी कुछ देर
0: जी पहले। जी जी खाद जो है अहम है।

0: किसी भी पौधों को खाद जो एक अहम है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, उसी तरह पौधा भी चाहता है कि हमको बार बार मिले। तो हम देखते हैं किसानों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार में वो खाद की मात्रा को पूरा कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि पपीता में हर जो डोज है उसका, जैसे 200 ग्राम नाइट्रोजन है, 200 ग्राम फास्फोरस है, और लगाते 100 ग्राम फास्फोरस है और 200 से 300 ग्राम जो है पोटाश है। तो फास्फोरस की मात्रा वो लगाते समय ही डाल दे 100 ग्राम, उसके बाद वो कभी पौधे की जिंदगी भर जब तक पौधे रहेंगे तब तक फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा 200 ग्राम यूरिया का और 200 ग्राम पोटाश 300 ग्राम पोटाश का, उसको 5 भाग में बांट करके दे वो, ताकि वो हर महीना अगर डालते रहेंगे तो उसको खाना मिलता रहेगा। अगर वो खाना मिलता रहेगा तो उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। पपीता का जो असली खाना है वो पोटाश है। अच्छा। अगर आप पोटाश उसमें डालते हैं तो पपीता जो है अंदर से लाल और पीला जैसा जो वैरायटी है वो अच्छा होगा और स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। हम देखते हैं कि किसानों के खेत में टमाटर लाल नहीं हुआ। टमाटर लाल ना होने की वजह है कि किसान पोटाश डालता ही नहीं है। अच्छा। जो भी रंगीन फल है उसके लिए पोटाश का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे केला है, केला बहुत ही पोटाश चाहता है, उसी तरह से पपीता भी है, वो भी पोटाश बहुत चाहता है। तो पोटाश की मात्रा को आप हर महीने उसमें 50-50-50 ग्राम देते रहें 5 डोज में, तो आपका हम समझते हैं कि पपीता जो है बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट और मीठा और बाजार में बहुत पसंद किया जाएगा। जब उसको काट करके आप रखेंगे और रंग देखेगा तो जो व्यापारी भी होंगे वो भी ले जाएंगे और जो डेली कंज्यूमर है वो भी इस चीज को पसंद करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक कुकरैया रोग के बारे में भी आप बता रहे थे, और उसमें आप कह रहे थे कि ये पपीता जो है इसमें गलना, जमीन से गलन इसका जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके उपचार के बारे में।
0: हाँ, देखिए गलन वाला जो बीमारी है, हम लोग जितने बैठते हैं ऑफिस में, मैं देखता हूँ कि सारे किसान जो भी आ रहे हैं वो पपीता के गलने वाले रोग को अभी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या होता है कि किसानों को उतना अंदाज नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पपीता लगा देते हैं, लेकिन जब पानी लग जाता है तो वहाँ गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ से लगा हुआ होता है वहीं से ये गलन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा रेज बेड पे पपीता को लगाए, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है थोड़ा सा पपीता को रेज बेड लगाया था, पानी जो है उसके जो मेन ट्रंक है उसको टच न कर सके। एक तो ये चीजें हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए कि किसी पौधे में 1-2 पौधे में गलना शुरू हो गया है, तो उसको बचाव करने के लिए आप 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके उसके जड़ में दे दें। 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके करीब आधा लीटर या एक आधा लीटर पानी हर पौधे में डाल दें, तो ये गलने का रोग जो है वो से आप दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे पौधे। लेकिन पानी अगर नहीं लगेगा तो ये गलना वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बीमारी है इसमें है, ये है ये कुकड़िया रोग, जो कि पौधा का पत्ती जो है कुकड़ी होकर के मुड़ करके ये नीचे लटक जाते हैं। ये वायरस से होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज जो है वो है कि जो इसको वायरस फैलाता है उसको मारना है। जैसे डेंगू बीमारी है, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है डेंगू को? डेंगू का इलाज है मच्छर को मारना। अगर आप मच्छर मार दिए तो डेंगू नहीं होगा। उसी तरह से पपीता में है, अगर आपने कीड़े को मार दिया तो उसमें कुकड़िया रोग लगेगा ही नहीं है। तो ये एक समस्या है, यहाँ पे किसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिर्चा में कुकड़िया रोग लगता है, उसी तरह पपीता में भी लगता है, तो वो नहीं समझता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 20 दिन से 22 दिन के अंदर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक पौधों में छिड़के, और इसका जो कीड़ा रहता है वो पत्ती के नीचे रहता है, तो दवाई ऐसे छिड़कना चाहिए कि पत्ती के नीचे भी दवाई लगे, तो इसे बहुत इफेक्टिव होगा, वो कीड़ा मर जाएगा। तो ये जो बीमारी जहाँ लगा है वहाँ नहीं ले जाएगा। अगर शुरू के टाइम पे किसी पौधे में ये बीमारी लगा है तो उसको उखाड़ करके जमीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण बनता है। एक रिंग स्पॉट होता है। किसान भाई, जब आप खेत में जाएं तो पत्ती को गौर से देखें, और गौर देखने के बाद वहां देखेंगे कि पत्ती पर अगर गोल गोल रिंग बन रहा है तो आप उसको तुरंत उखाड़ करके जमीन के नीचे गाड़ दें, क्योंकि यही रिंग स्पॉट वायरस जो है पूरे बाग को चौपट कर देता है, अगर ये लग गया रिंग स्पॉट वायरस तो। इसका वही कंट्रोल है कि उसमें आप हर 15 से 20 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। कोई भी इंसेक्टिसाइड लें, सिस्टमेटिक ले लें या आप कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड ले लें, जो भी है आपके पास उपलब्ध आप छिड़क दीजिए, तो हम समझते हैं कि उससे बहुत बच जाएंगे और पपीता का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग खेती सिर्फ कुकड़िया बीमारी की वजह से नहीं करते हैं किसान भाई, लेकिन अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे कीटनाशक के द्वारा, तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा फल आएगा इसमें।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 20 से 25 दिन पर आप अपने जो जो पपीता के जो पौधे हैं उसका देखभाल करते रहें, और अगर आप

0: ऐसा लगता है कि इस पे कोई रोग आ रहा है तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पपीता गलन के इस बीमारी के बारे में हमने जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना। अब एक सवाल और पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि जो पपीता में जो फल लगते हैं वो कितने समय में लग जाते हैं?
1: हाँ देखिए, ये पपीता जो है, जैसे कि पपीता आपने लगाया, रेड लेडी पपीता लगाया, तो ये करीब 3 से 4 महीने के बीच में फूल आ जाते हैं इसमें, और ये फिर उसके बाद जो है 7-6 महीने में ये तैयार हो जाते हैं। करीब साल भर में आपका साइकिल तैयार हो जाता है। तो किसान आजकल क्या कर रहे हैं, वो दो साल नहीं ले रहे हैं पपीता, वो 1 साल का पपीता लेके काट देते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो एक पपीता से करीब 5-6 साल लेते थे, तो वो अब जमाना नहीं रह गया है। अब ये जमाना आ गया है कि हर साल पपीता लगाइए और हर साल आप पपीता को लगा करके फल ले लीजिए। 1 साल में आप रेड लेडी पपीता को अच्छी तरह तोड़ करके बेच करके अच्छा आय कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये फल लगने के समय हो गया डॉक्टर साहब, और इसकी तुड़ाई हम कब करें ये जानना चाहेंगे?
1: हाँ देखिए, इसका तुड़ाई करने का तरीका है, कैसे जानेंगे कि ये पपीता मेरा पक गया है? तो इसके लिए किसान भाइयों, देखिए आप जो पपीता लगा हुआ है उसमें आप ब्लेड से चीरा लगाएं, अगर वहाँ से दूध जो गिर रहा है वो पतला धार हो गया है तो समझिए कि वो पपीता आपका पक गया है। अगर दूध का धार जो है वो गाढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि ये अभी नहीं पका है। ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो 1-2 पौधे में देखेंगे कि वहाँ पे रंग चल रहा है तो वो भी एक तरीका है पपीता को जानने का कि ये पक गया है और इसको अब तुड़ाई शुरू करनी चाहिए।
0: तो ये पूरी की पूरी जानकारी किसान भाइयों, आपने सुने पपीता की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और साथ ही अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूँ कि रेडियो पे तो आप सुनते ही हैं हम लोगों को, लेकिन आप अगर विश्वविद्यालय में आके यहाँ के प्राध्यापक के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको, किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय बना है वही लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है। यहाँ पे एक प्राध्यापक बैठा हुआ है जो शोध करके किसानों तक पहुँचाने के लिए, अगर किसान भी एक कदम आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय में आता है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कैसे कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं, और पूरी की पूरी जो एक डॉक्टर्स की टीम है, आप समझ लें कि आपकी खेती के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। जैसे कि आप अपने रोगों का इलाज कराते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो आप अपने फसलों का इलाज, अपने जो भी रोग हैं आपके पौधों के, फल के, सब्जियों के, आप उसका इलाज भी यहाँ पर आके करवा सकते हो, यानी कि जानकारी ले सकते हो, और सही जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चलेंगे, इसे अपनाएंगे और अच्छे तरीके से पपीता की खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या?

0: करें खेतों के अंदर,
1: तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।

0: जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए

जिनकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में. मखाना की पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर. और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है. और भारत में बिहार, जी हाँ, अकेला बिहार 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है. और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए. और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम. आप हैं प्रसार शिक्षा

0: विभाग से आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जमा रखता है। दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और ये दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़,
1: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
1: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
1: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है। तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीस कर पाउडर बनाया जाता है जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य

0: खाद्य उत्पादों में किया जाता है। फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और वयस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
1: पॉपुलर है,
0: मांग में है।
1: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम, क्या मखाना मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
0: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इस में मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है, 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती

0: हैं, तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
1: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली, और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं, और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाज़ार क्या है और किस तरह इस तक पहुँचा जा सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाज़ार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाज़ार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाज़ार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाज़ार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, न ही सिर्फ हमारे घरेलू बाज़ार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक बाज़ार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग, युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
0: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएँ हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद

0: करता है, क्योंकि पलायन रोकने युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक BAU हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। यह एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना 1, जो मखाना की एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है। साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि,

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी।

0: क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
9: नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सकें, क्योंकि उन्हें पालने में लागत ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो, और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे, और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें। आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के उपाय। जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है, उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है, और उनके रोगों का उपचार कैसे करें उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीमार बकरी की जहाँ तक बात आती है तो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हम आदि तो नहीं होते हैं कि हम जैसे मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य कह देता है कि भाई मुझे बुखार लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे है, लेकिन बकरी बोल नहीं पाते हैं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये बकरी बीमार है और ये बकरी स्वस्थ है?
10: देखिए, पशुपालकों के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे ही आप पशु की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, आप खाना लगाते हैं, पानी देते हैं, उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुँह अगर सूख जाएगा, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा, आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल

0: जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है, तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नज़र आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था, जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड कहते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
1: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं, तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं। इसके अलावा उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है, वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
0: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंड हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीजन में, ठंडे के सीजन में, और नाक से पानी आने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन, ठंडी के दिनों में अधिकांश बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी बीमारी है, आप उसको शुरू से उस पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फूट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी, तो उसको फूट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में, जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है, तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा। और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सब से बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रत्येक 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
1: मतलब जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा, तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावे भी कुछ और?
0: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, स्केरिस है, एक हिमोंकस कंटॉर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी होती है, तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डीवर्मिंग कीजिए प्रत्येक 3 से 4 महीने पे, इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप

0: उसको डिवर्मिंग कराएं नियमित रूप से, पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोंक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डिवर्मिंग से बचा जा सकता है।
1: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
0: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप अब चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला बरसीम काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा, और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसके 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीजन में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप टीडेर या टिनिडाजोल के नाम से दवाती है, तो उस दवा को टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेबलॉन पाउडर आता है, नेबलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरेपी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, पेड़ के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी, तो ठंड हवा से बचाएं। डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंड हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताज़ी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
1: बाहर जानी चाहिए,
0: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज़्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर है पर्दा लगा दे लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
0: देखिए, प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड, आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेट उंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फड़ गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेट उंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं, उसकी दवा

0: आती है टॉपिक्योर हिमैक्स, यदि वो आप सही सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप ज़रूर अपने पशु को दिखवा लें, जांच करवा लें। और अभी जो है, कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है ठंडी से पहले, ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में। यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जानना चाहेंगे हम।
0: देखिए, फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया, कहीं खून बह रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज़ ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है, ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए, बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो, या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को, तो मीठा सोडा खिला सकते हैं। मीठा सोडा खिलाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं, डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा, यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
1: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
0: देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
1: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते,
0: बीमार रहते हैं, हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए, तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आसातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुंच पाया, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपये का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आप यदि 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
1: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब, आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं

0: लेकर आऊंगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV

टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी।

0: दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन

0: के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को

पाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं

दूसरों को समझाकर पढ़ाते हैं तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मजेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफ़ी फास्ट चीज़ें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हों, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीज़ें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाएं। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाएं जहां पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे, और एक अच्छे तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में, ग्रुप स्टडी में, आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी अलग होता है, वो चीज़ों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके
तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास

ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं। आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपनी स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिविजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है। जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, कोई भी यहाँ पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले।

0: कि वाह कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया, तो खुद ही खुश हो जाइए। तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसको जानने का समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं, तो आप अकेले पढ़िए। लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं, तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूज़न दूर किया, या फिर किसी और के कन्फ्यूज़न को आपने दूर किया, तो फिर आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीज़ों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहां पर आप अपने जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।

0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
4: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु। दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार तो कुछ काम कर ही रही है, लेकिन यहां पर ज़रूरी है कि किसान भी कुछ समझे अपने विकास के लिए, अपनी खेती के विकास के लिए, अपनी आय को कैसे वो दोगुना कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, उन्हें जानने की बारी आती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय भी है, बहुत ही खास विषय है, कृषि तकनीक की प्रसार में नेतृत्व की भूमिका। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस दिवाकर जी, और मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये प्रसार शिक्षा विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है नेतृत्व का होना।
2: जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नेतृत्व को आजकल सीधा सीधी लोग ले लेते हैं पॉलिटिकल लीडर के जैसा, वो केवल पॉलिटिकल लीडर को ही वो लीडर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लीडर कोई भी हो सकता है। पहले इसके बैकग्राउंड में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब आज़ादी के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी मैनिफेस्ट

0: तो या कोई भी बड़े नेता की भाषण को हम लोग सुनेंगे या उनकी मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे पार्टी जो हैं किसान की तरक्की के लिए हमेशा वो वचनबद्ध रहे हैं
1: जी।
0: अपने मैनिफेस्टो में भी
1: सबसे पहला उनका जो हाँ सबसे पहला जो उनका मुद्दा भी होता है वो लोगों के सामने लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं अपने जो मैनिफेस्टो वगैरह है उससे, तो सबसे पहले किसानों की बात ही करते हैं और उन्हें बहुत सारे जो हैं सहूलियत देने की बात करते हैं।
0: फिर भी हमारे किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम है। इतना सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसान के बारे में बात करते हैं फिर भी प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि हम देखेंगे आज़ादी के समय जो हमारा जीडीपी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 50% के आसपास था।
1: अच्छा।
0: और आज के डेट में 13% पे आ गया है। मतलब कि कृषि से ज़्यादा अदर सेक्टर्स ज़्यादा ग्रोथ किया है।
1: अच्छा।
0: लेकिन कृषि का ग्रोथ
1: अभी तक नहीं हुआ है।
0: हुआ है ग्रोथ, हमारा प्रोडक्शन तो 5 गुना बढ़ा है लेकिन
1: जो
0: जिस हिसाब से दूसरे सेक्टर बढ़े हैं उस हिसाब से हमारा प्रगति नहीं हुआ है।
1: मतलब कि प्रगति अभी धीरे धीरे हो रही है
0: जी,
1: जिस जो स्पीड में होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो रही है, जितना एक्सेप्ट करते हैं हम उतना नहीं हुआ है कृषि में तकनीक के विकास। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब और भी कुछ बातें आप बताने वाले थे
0: जी। इसमें मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये सोचने वाली बात है कि सरकार की योजना के बावजूद हमारा किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भारत में किसान संगठित तो है ही नहीं।
1: अच्छा।
0: बहुत कमी है। भारत सरकार की योजना भी है जैसे FPO बनाई है, फार्मर इंटरेस्ट बनवाती है और नबार्ड उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, फिर भी हमारे किसान एकजुट या संगठित नहीं हो रहे हैं। और संगठन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है, एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ इसको। सपोज आपके गांव में किसी सपोज सिंचाई की प्रॉब्लम है।
1: अच्छा।
0: और कोई एक किसान जाकर के ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि इस गाँव में ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपकी आवाज को ना सुना जाए।
1: अच्छा।
0: लेकिन यही जब किसान का एक संगठन ये अपनी बात रखेगा इस गांव में प्रॉब्लम है तो संगठन की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। और वो संगठन सपोज हमारा यहाँ तो लोकतंत्र है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड लोकतंत्र है, हर बार डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड लोकतंत्र है जिसमें आप मुखिया भी चुनते हैं। आप अपनी समस्या को मुखिया से तो कह ही सकते हैं। सपोज मुखिया वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो ब्लॉक पंचायत समिति में ले जाएंगे बात, वहां भी प्रॉब्लम का निदान नहीं हुआ तो जिला परिषद में जाएगा।
1: हाँ।
0: और जिला परिषद तक जाते जाते मुद्दा इतना बड़ा हो जाए कि सरकार इस चीज को जान जाएगी कि वहां पर रियल प्रॉब्लम है, तो आपका समस्या का निदान ऑब्वियसली हो सकता है। इस तरह
1: मतलब जरूरी है एकजुट होना, संगठित होना अभी किसान भाइयों का।
0: एकजुट होने पे ही आपकी आवाज को
1: सुना जा सकता है। हाँ।
0: और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जैसे कृषि तकनीक में आजकल हम लोग देखते हैं कंबाइन हार्वेस्टर, खास करके विदेशों में इसकी तो बहुत इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इंडियन कंडीशन में कंबाइन हार्वेस्टर हम लोग कम ही देखते हैं यहाँ, खास करके बिहार में तो बहुत कम ही देखा जाता है। इसका रीजन ये है कि हमारे जो किसान हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, कम जोत वाले किसान हैं। और यदि हमारे किसान जैसे कि ये गांव में 50 किसान संगठित हो गए तो 50 किसान मिल करके जो नई तकनीक जो आई है कंबाइन हार्वेस्टर उसको वो हायर कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं, तो नई तकनीक का वो संगठन के रूप बना करके वो यूज कर सकते हैं।
1: मतलब ये एक तरीका हुआ कि आप अगर उस योग्य नहीं है कि आप अकेले खरीद सकते हैं या फिर उसे हायर कर सकते हैं तो आप संगठित होकर भी जो है उसे हायर कर सकते हैं और उसका फायदा हर कोई जो है ले सकता है खेती में।
0: जी, तो अभी हम लोग देखा कि दो लाभ देखे संगठन का।
1: हाँ।
0: हम लोग दो ही लाभ पे बात करेंगे आज।
1: हाँ।
0: एक तो देखे कि आपकी आवाज को सरकार सुन सकती है जब आप संगठित होंगे, और दूसरा कि आप नई तकनीक जो महंगी तक

0: टेक्निक है उसको आप संगठित होकर के यूज करने में कामयाब होंगे।
1: तो यहाँ पर संगठित होने के लिए एक लीडर की भी जरूरत होती है डॉक्टर साहब, तो इस लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए?
0: जी, लीडर में कुछ जो गुण होने चाहिए मोटा मोटी मैं कुछ गुण बताता हूँ
1: जी।
0: पहला तो गुण में ये होना चाहिए कि वो लीड बाय एग्जांपल, उनको खुद को एक एग्जांपल के रूप में पेश करना है।
1: अच्छा,
0: सपोज कोई नया वैराइटीज आई रिलीज हुई यूनिवर्सिटी के द्वारा और वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर गांव के एक प्रोग्रेसिव फार्मर उस तकनीक को, उस वैरायटी को अपने खेत में लगाए और अच्छा रिजल्ट देखे, तो वो अपने फेलो फार्मर्स, उस गांव के जितने अदर फार्मर्स हैं, उनको बता सकते हैं कि नहीं, मैं तो इसको यूज किया हूँ और ये हमारे कंडीशन के लिए बहुत अच्छा ये वैरायटी है।
1: अच्छा,
0: और सपोज कोई दूसरा आदमी जो वो वैरायटी को यूज नहीं किया तो उसकी बात को लोग नहीं सुनेगा। तो पहले एग्जाम्पल अपने आप को पेश करना होगा, ये लीडर का एक पहला गुण होना ही चाहिए। और इसके अलावा एक होता है कि लीडर को हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हमेशा उनको उत्साहित रहना चाहिए। कोई लीडर है और खुद से निराश है कि नहीं, ये नई तकनीक जो आई है हमारे गांव के लिए सूटेबल नहीं है, तो उससे कोई भी लोग प्रभावित नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: और लीडर का तो डेफिनेशन ही है, जब आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तभी आप लीडर
1: बन सकते हैं।
0: तो आपको एंथुसियास्टिक होना ही पड़ेगा। एक है एम्बिशियस, लीडर को हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए कि नहीं हमें ये कर लेना है। एक हो गया डिटरमाइंड, वो हमेशा डिटरमाइंड होना चाहिए, उसको एक काम में लग गए तो ये नहीं कि इनिशियल स्टेज में हमें सफलता नहीं मिल रही तो काम को छोड़ दें।
1: अच्छा,
0: इसको एक एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए, कोई एक किसान है, वो जो कुआं खोदना चाहता है और थोड़ा सा खोदा, फिर उसके दिमाग में आ गया कि नहीं यहाँ से तो पानी नहीं निकलेगा, फिर वो दूसरा गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है। ऐसे कर करके वो पूरा दिन वेस्ट कर देगा, सप्ताह वेस्ट कर देगा।
1: अगर इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते, पेशेंस होना चाहिए।
0: पेशेंस, एक फिल्म भी आई थी माउंटेन मैन करके, जो दशरथ मांझी जी का अकेला आदमी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए, डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल।
1: और लोग उन्हें कह भी रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो, उसे तुम्हें क्या मिलेगा, फिर भी
0: लीडर को मतलब हमेशा एकाग्र होना चाहिए। और उनको हमेशा, जैसे किसान का जो प्रोग्रेसिव फार्मर नेता है, उनको हमेशा अदर किसान को इनकरेज करना चाहिए कि तुम भी करो ना, प्रॉफिट होगा, अच्छा काम करेगा। उनको डराना नहीं चाहिए कि नया तकनीक है, नया वैरायटी है, फेल हो जाएगा। जबकि नेता ही ऐसा बोल देगा तो किसान नहीं लगाएंगे उस चीज।
1: अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि LIC के जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा लोगों को कन्विंस करने में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही रखते हैं, तो इस तरीके के थोड़े हमारे जो किसान भाइयों के जो लीडर हैं इस यूनिटी के या फिर यूनिट के जो भी लीडर हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा फीचर्स होना चाहिए उनके पास कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो रखें लोगों के सामने और उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भूल कर भी ना रखें।
0: जी, और एक और गुण कह सकते हैं नेता में जो होना चाहिए, वो रेडी टू लर्न।
1: अच्छा,
0: उनको हमेशा सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सपोज आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और गांव के सभी किसान आपको इज्जत करते हैं, तो जो चीज सपोज आपको नहीं आता है उसको सीखने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए,
1: बताने में भी।
0: और बताने में भी जो चीज आपको नहीं आता है तो आप कहीं से सीख लीजिए। तो ये सारे गुण मोटा मोटी होना चाहिए प्रोग्रेसिव फार्मर में।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हमने बात किया इस संगठित होने का, जो दो लाभ आपने बताया कि एक जो किसी यंत्र को खरीद कर और दूसरा कि अपनी आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आय की ओर बढ़ते हैं हम, तो किसान भाई संगठित रूप से कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी बताएं।
0: का भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन।
1: अच्छा,
0: इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई एक गांव है जो शहर से 50 किलोमीटर दूर है, वहां के किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और प्रचुर मात्रा में मान लीजिए कि गोभी वहां पे पैदावार हो रही है, और वो गोभी को मार्केट, पटना मार्केट में सपोज रेट अच्छा मिल रहा है, सब और मार्केट

0: के और जो वहाँ जो भी उनका नियरेस्ट मार्केट हो और दूर की मार्केट में अच्छा उनको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन किसान अकेला वहाँ तो ले नहीं जा सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। लेकिन वहाँ के किसान, 100 किसान जो 100 फूलगोभी की जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, 100 किसान एक साथ मिलकर के अपने प्रोड्यूस को मार्केट, दूर तक की मार्केट में, यहाँ तक कि अदर स्टेट में भी वो भेज सकते हैं। और जो ट्रक का जो भाड़ा होगा वो सब पे शेयर्ड हो जाएगा, तो मामूली सी मार्केटिंग कॉस्ट में अपना प्रोड्यूस को बेच करके अच्छा इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी पे आप आते हैं, इसके लिए आपको 500 किसानों को जो एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं एकत्रित करना होगा और सबका शेयर बनता है। सपोज एक किसान 1,000 रुपया सब इन्वेस्ट किया,
1: अच्छा,
0: तो 1,000 लोग है तो जितना अमाउंट जोड़ के आएगा उतना पैसा नाबार्ड भी आपको दे देगी, आपको आगे की खेती करने या खेती का जो नई तकनीक आप जो यूज लेना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं इसका यूज।
1: तो इस तरीके से किसान भाइयों, आपने जाना कि संगठित होने का क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको, और कृषि तकनीक के प्रसार में नेतृत्व की भूमिका बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है

0: 101.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 के पाठ 4 पर आधारित कार्यक्रम पत्ते ही पत्ते।
1: बच्चे बाहर खेल रहे थे तभी दीदी बोली,
2: अरे पियो काचू ये देखो तो, देखो मेरे पास क्या है।
3: क्या है दीदी
4: बताओ ना।
2: देखो मेरे पास कुछ पत्ते हैं।
4: अरे वाह कितने सारे पत्ते।
3: मुझे ये लंबा पत्ता बहुत अच्छा लगता है।
2: ये आम का पत्ता है। कई जगह पर लोग इस पत्ते का पूजा में उपयोग करते हैं।
4: ये पत्ता तो देखो कितना खुरदुरा है।
2: हाँ ये पारिजात का पत्ता है। ऐसा और कोई पत्ता देखा है आपने?
3: नहीं हमने तो नहीं देखा।
4: मैंने भी नहीं देखा। दीदी ये छोटा गोल पत्ता गुलाब का है ना?
2: हाँ एकदम सही पहचाना तुमने, ये गुलाब का ही पत्ता है।
3: और ये पत्ता?
2: अच्छा ये कतरीला पत्ता तो पपीते का है।
4: दीदी इमली के पत्ते ऐसे ही होते हैं ना?
2: हाँ इसी प्रकार के होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। देखो तो ये कैसे बंधनवार जैसे दिखता है ना?
4: हाँ दीदी।
5: हाँ दीदी।
4: दीदी सभी पत्ते तो हरे हैं, लेकिन ये पत्ते तो पीले हैं।
3: और ये जामनी क्यों है?
2: बच्चों वनस्पति के पत्ते विविध रंगों के और प्रकार के भी होते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते हम पत्तों के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है
3: ठीक है दीदी।
2: तो चलो फिर और पत्ते इकट्ठा करते हैं।
3: दीदी मैं भी चलूंगा।
2: दीदी हाँ हाँ ठीक है।
0: पत्ते ही पत्ते अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉक्टर रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार ममता मलकानी, शालिनी सिंह और रक्षित थपलियाल, बाल कलाकार निशांत, नमन, रवीश, रितिका, रियान और सौरभ, ध्वनि अंकन बटिलंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान

भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन पर. मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज़ की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं धान में पोषक तत्व प्रबंधन. और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए.
1: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है. तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नेत्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फूर या उसे फॉस्फोरस कहा जाता है.
0: अच्छा.
1: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे, जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे. फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे. और नाइट्रोजन जो है, बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 kg यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे.
0: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं. अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है. तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
1: अब ये जो है

0: विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी जमीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ संकर किस्म है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान के किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80, 40, 20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 केजी और बढ़ा देंगे। तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास, तो 100, 40 और 20 केजी के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे। कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं।
1: जी।
0: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में। तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 केजी एनपीके के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं, जिनको जिनके गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे और बौनी लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 केजी एनपीके का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे।
1: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट। जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए। तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें, ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
1: जी। और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
0: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्टेज है, जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी जगह उसका इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फॉस्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय, तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद, तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास, वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः तो यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह, कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
1: जी। तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में, और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है।

0: ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। अच्छा। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नेत्रजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, वायुमंडल में जो नेत्रजन आपका है उसका इस्तेमाल, उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु है जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं एजो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसी फ्रिक्वेंसी याद रखें, 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: 90 क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।

0: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
1: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुंदर बोले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVKs से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि RAWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों

की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान RAWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की RAWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्निल ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्यप्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर AK शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से RAWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि RAWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा। किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत

0: गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 Green FM पर।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की

0: आपके बच्चों की पीको से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
1: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है, और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फॉस्फोरस क्या है, अब ये बताइए।
1: जी, फॉस्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएं। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रिया हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
1: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़।

0: तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
1: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पॉर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
1: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फास्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फास्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार

0: की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं। वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी। यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: मैम अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
0: जी जरूर। फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
1: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, ख़ास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू वेरी मच उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की।

0: अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बंबई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान

वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है

कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के लक्षण है। क्या होता है कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर बी ट्वेल्व की कमी है। और बी ट्वेल्व की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, बी सी डी ई जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन बी सेवन की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी सी डी ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं।

0: यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है। डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकती हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहे। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ಕೃಷಿ. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.

0: 90.8 FM ग्रीन और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों, जिसका इंतज़ार आपको रहता है और वो कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन रहे हैं और इसमें आज हम दालों के बारे में जान रहे हैं, यानी दाल, आज अरहर दाल के बारे में हम जानेंगे। आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और साथ ही अरहर की खेती के लिए आपको कौन सी भूमि चयन करनी चाहिए, कौन से प्रभेदों को आपको लेना चाहिए, इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से, सारी चीज़ें आज आपको, अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा ये भोजन का अभिन्न अंग है। दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है। भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है। अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अरहर प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। अरहर सूखा प्रतिरोधी, जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं और अब खेती की बात करते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि भूमि का चयन, तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो।
1: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग को ध्यान रखने की बात है, और भूमि के चुनाव करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा और समतल हो, जिससे जल निकास अच्छी हो। बिहार में अरहर प्राय मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट या अथवा दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम मानी जाती है। और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अरहर की फसल उगाने के लिए खेत को की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। 2-3 बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए। जहां अधिक वर्षा होती हो वहां रेस्ट बेड, जैसे हम लोग कहते हैं उठी सैया बनाकर या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा। आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो मेर पर है, वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं।
0: तो ये थी कुछ बातें जैसे कि आप जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के, जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ कर सकते हैं।
1: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिहार में अभी भी कि मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती 2 समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितंबर के समय में। तो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई। उसमें हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय, चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है, उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA

0: 203 यह प्रभेद अभी नवीन नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में दो रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, यह है IPA 206। यह 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर एक है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है, मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार पूसा 9 नरेंद्र अरहर की खेती, मालवीय अरहर 13 जैसे प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा सामान्य आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है, तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में दो प्रभेद अनुशंसित है, पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जिससे कि उनको इसकी खेती करके लाभ हो।
0: अरहर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी फसल अच्छी उपज लेने के लिए बीज दर के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे समानतः अरहर की बुआई में हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से बुआई करनी चाहिए और यदि हम लोग सितंबर अरहर लगाते हैं तो उसमें हम लोग को बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी होगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि बहुत से रोगों को बचाने के लिए टीका लगवाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी फसलों में रोग व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोग के को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेवेस्टीन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेवेस्टीन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इसको गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घरे में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छांव में सुखा देना चाहिए। जहां तक संभव हो बीजोपचार सायं काल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को पीएसबी कल्चर जिसको फॉस्फेट सर्वलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया

0: या कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में खरीदा जा सकता है। राइजोम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही पीएसबी कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो नेत्र जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समानांतर परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए। और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें, निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40 से 50 प्रतिशत की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पिंडी मेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमीजा थाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है।
1: तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना कि आप बीजोपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
0: किसान भाई अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण कैसे पहचानें। सामान्यतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4 से 5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में यह रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, देखिएगा तो वह मुरझाकर सूख जाते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी की कमी के कारण ये मुरझा गए हों, जबकि वास्तव में खेतों में पर्याप्त नमी होती है। रोगी रोधी के तने का निचला भाग तथा संवहन उत्को जिससे उसको पानी और भोजन के जाता है जिससे उसका रंग भी काला पड़ जाता है। यदि रोगी रोधी पौधे को उखाड़ कर उनकी जड़ों को चीर कर देखा जाए तो उन पर पतली पतली कालियां धारियां दिखलाई पड़ती है। यदि रोगी रोधी पौधे के तने की लंबाई को चीरा जाए तो उसमें से काली धारियां दिखाई पड़ती है जो कि भूमि की सतह से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग इस जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल जैसे 4 से 5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक्र तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोजैक रोग है। इसमें इसके लक्षण होते हैं रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती

जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्राय पौधे की कुछ शाखाएं रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएं से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं, IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो इमीडा क्लोरोपीड, रोगी पौधे के साथ इमीडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन, अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वो पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं जिनकी पीठ पर गहरी भूरी रेखाएँ दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमोन फंदा जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे कि वो हमारा जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो, कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लियो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे जैविक दवा है NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से NPV वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद NPV का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 40%

वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी खेती में ज़रूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
6: मैम, सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।

0: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएं हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं, और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, तथा 48% जो महिलाएं हैं वह स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है, और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
1: जी मैम,
0: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है, जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये तेजी से हो रहा है, और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है, बल्कि वो एक उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं, और पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है, और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है, और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं, और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
1: मैम, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
0: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है, तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कृषि कार्यों में शामिल होती हैं, और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं, बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल, और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल, ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है, जिसमें कि अगर कहें तो 1,000,000 स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं, और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है, और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें, या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
1: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
0: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में, तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं, और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है, और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात, जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य, या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं।

0: यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षा और शोध है बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं या मधुमक्खी पालन के ऊपर या जैविक खेती ऐसे पशुपालन ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक धान उत्पादन मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है, और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
0: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुंच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियाँ भी होती है, तो क्या चुनौतियाँ भी सामने आती हैं?
0: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी

0: उसके उसके फायदे होते हैं, उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इनकी इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है। और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके और हम जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
1: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
1: जी।
0: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे।

0: दो।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान

सींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर

0: माना जाता है।
1: सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही

ही था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देख कर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी।

0: Dari kakil.
1: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
2: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
3: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
2: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
3: हाँ, अब बन गई रेल।
1: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
2: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
3: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
4: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
2: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
4: चलो
1: रेल चली भाई रेल चली,
4: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ, रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
2: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
4: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
2: अच्छा
4: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
3: दादाजी मैंने देखी है।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
4: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
2: अरे वाह,
4: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
2: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
4: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
5: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
4: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
5: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
4: बैठो,
5: आओ
4: जल्दी खड़ो, जल्दी बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
3: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
4: हाँ हाँ उतरो बेटी।
0: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
4: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
4: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।

0: बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल दी। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
2: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक

डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

पे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11

0: दोस्त
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है.

0: जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
1: जी तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
0: अच्छा तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
1: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
0: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
1: और इससे बचने का कोई तरीका जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
0: बिल्कुल हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
1: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
0: अच्छा तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ

0: रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत जरूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ा, कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं, मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं, उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो, वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द, मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है, और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन हरी।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 एफएम ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
4: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन

0: खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए

पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी, आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना

ज़रूरी है। इससे आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं, या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखें कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे। इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घर के लोग समझें, ख़ास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए। किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें। और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी

लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए ज़रूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी। तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं, और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के, अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?

0: तो बताता हूँ बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि, किसान भाइयों को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको धान में शीत ब्लाइट के प्रबंधन की ओर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी भगत, प्राध्यापक पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जब बात आती है रोगों की और वो भी धान में, तो ये जो शीत ब्लाइट रोग है वो हमारे धान की फसलों के लिए एक प्रमुख रोग बनकर रह गया है, और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि पहले के चार पाँच साल से धान की फसल में 60% तक गिरावट आई है, और ऐसे में किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का प्रबंधन करना एक चुनौती बन गया है। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट नाम क्यों पड़ा इस रोग का?
8: आप किसान भाई जानते होंगे कि आप जब धान लगाते हैं अपने उत्पादन के लिए अपने, तो क्या होता है कि आप जब फसल हमारा 30 से 40 दिन का हो जाता है रोपने से, जिसमें हम लोग घास उसमें खेत से निकालने के लिए तैयार होते हैं, उस समय देखते हैं कि बहुत हमारा खेत स्वस्थ होता है, और उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि घास निकालने के बाद जब खेत में घूमने जाते हैं कुछ दिन के बाद, देखते हैं कभी कभी कि हमारे खेत में धब्बा लग जाता है। यह जो धब्बा है शीत ब्लाइट कहलाता है, जो आप लोकल भाषा में जो हमारा क्षेत्र यह है इसमें हम लोग गलसा गलसा कहते हैं। यह गलसा क्यों होता है? गलसा जैसे है शीत बाला ब्लाइट, उसको हम लोग आवरण झुलसा भी कहते हैं। आवरण झुलसा मतलब हुआ कवर, जैसे आपके धान के पत्ती को खींचते हैं तो एक कवर होता है नीचे में, पत्ती के नीचे, उसी आवरण पर यह लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको शीत ब्लाइट बोलते हैं, और उसका हिंदी में आवरण झुलसा बोलते हैं।
2: अच्छा, आवरण झुलसा।
8: जी हाँ।
2: और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट वैसे तो रोग हानि ही पहुंचाता है, चाहे वो मनुष्य हो या धान हो या फसल हो, जो भी हो। तो रोग की बात कर लेते हैं, शीत ब्लाइट रोग की, तो ये धान की फसलों को कहाँ तक हानि पहुंचाता है?
8: आप किसान भाई जानते होंगे यह शीत ब्लाइट जो हमारा है, यह जो गलसा रोग है, आपको अगर शुरू अवस्था में लगा तो देखेंगे कि उग्रता के हिसाब से, उग्र जब रोग होता है पूरे बाली तक आ जाता है, झुलसा ये हमारा पूरे बाली तक आ जाएगा, तो हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया है पत्ती द्वारा वह समाप्त हो जाता है। लगभग हमें यह रोग 50% तक हानि हो जाता है, आधा जो फसल हमें 10 क्विंटल होना चाहिए उस खेत से हमको 5 क्विंटल होगा, मतलब 50% तक का हानि को देखा गया है इसमें।
2: यानी कि 50% तक की गिरावट हो सकती है फसलों में, धान की फसलों में, या फिर यूँ कहेंगे कि धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम जानें कि हमारे इस धान की फसल को शीत ब्लाइट रोग लग चुका है, और इसके लिए ज़रूरी है पहचान। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे

0: इस रोग का पहचान कैसे किया जाए?
1: आप किसान भाई देखेंगे कि जब आपका पौधा 50 से 60 दिन हो जाएगा तो आपके जो आवरण है, जो जहाँ पर पानी की सतह है, पानी की सतह से 1-2 इंच ऊपर देखेंगे आवरण पर या शीत पर भूरा रंग का धब्बा बनता है। यह भूरा रंग का धब्बा जब बढ़ता है तो यह पत्ती की ओर चला आता है। जब पत्ती पर आता है तो हम पत्ती पर देखते हैं भूरा से चिकता नेमा सांप का जो इस धब्बा होता है सांप के ऊपर भरकदार चमकदार, उस तरह के पत्ती पर और नियमित आकार का, कोई निश्चित नहीं है कि गोल होगा, वो अनियमित आकार का धब्बा दिखाई पड़ता है, बहुत चमकीला होता है। और उसके बाद यह धब्बा जो है आपके पूरे पत्ती को झुलसा देता है और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। इसका पहचान यही है जिसको आप लोग बाद में क्या कहते हैं कि झुलस गया गलस गया, आप लोग बहुत देर से देखते हैं। अगर शुरू अवस्था में देखेंगे तो आवरण पर भूरा रंग का धब्बा बनेगा जहां पानी से 1-2 इंच ऊपर जो हमारा धान का पौधा है, जो पत्ती के नीचे जो कवर किया हुआ है डंटल, वो आवरण जो है वह शीत जो है उसको उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। बाद में यह क्या होता है कि पूरे पत्ती पर झुलस जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की आवरण पर भूरे रंग का धब्बा अगर आपको दिखाई दिया जाए तो आप समझ लें कि वो प्रारंभिक अवस्था है शीत ब्लाइट रोग का, और अगर आप उसका उपचार करते हैं उसी समय तो आप इससे बच पाएंगे, इस रोग से अपने धान के फसलों को बचा पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शीत ब्लाइट रोग है ये हमारे धान की फसलों में फैलता कैसे है?
1: किसान भाई आप जानते होंगे कि आप जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वस्थ बीज का उपयोग करते हैं। जब स्वस्थ बीज का उपयोग किए बिचरा लगाए तो क्या करता है, कादो करने के समय जो शीत ब्लाइट का जो बीज है, इस रोग यह रोग जो है फफूंद के कारण होता है। इस फफूंद का नाम है राजेक्टोनिया सोलना है। यह फफूंद जब अपनी पूर्ण अवस्था करके फिर यह जो बीज को छोड़ देता है, उसका गोल गोल बीज होता है, जो सरसों का दाना आप जानते हैं जो बहुत छोटा होता है, उस तरह का बीज इसका होता है जो जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। जब आप कादो करते हैं तो यह बीज तैर करके ऊपर आ जाता है, सो ऊपरी सतह पर। जब आप कादुआ करते हैं उसके बाद हम वह बीज दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका भी रंग भूरा होता है, मिट्टी में गंदा पानी होता, नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में आप देखेंगे कि जब यह दाना, यह जो आपका फफूंद रोग कारक जो है, इसका जो बीज है वह पौधे से चिपक जाता है, जैसे सट जाता है तो वह अपना आपस में वह अंकुरण हो जाता है। क्यों? उससे कुछ संबंध है कि उसके साथ जैसे चिपकेगा वह अपना बीज जो है अंकुरित करके पौधे में प्रवेश कर जाता है, पौधे की पत्ती में। जब प्रवेश करता है तो वह अंदर में पौधों के आवरण में जहाँ से पानी की सतह से चिपक गया हमारे आवरण पर शीत पर, उसके बाद वह मल्टीप्लाई करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, उसके बाद वो धब्बा का रूप में हमको उभर कर आता है। तो यह जो बीज है किसी एक पौधे में लगेगा, किसी एक धान के पौधे में, फिर दूसरे पौधे में कैसे कंटामिनेट होगा कैसे, तो एक पत्ती के द्वारा जब वृद्धि हो गया, पत्ती में जब यह लक्षण आता, दूसरे हमारे पौधे में जो पत्ती है उससे चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, आपस में मिला हुआ रहता है, तो उस पत्ती में चला जाता है, उस पत्ती से उस पौधे में चला जाता है, फिर यह इसका वृद्धि जो होता है उसी पौधे से, आक्रांत पौधे जहाँ पर हम लगाए हैं, आक्रांत पौधे से अगल बगल फैलेगा। यह हवा द्वारा नहीं फैलता है, यह कंटेक्ट से फैलता, आपस में संपर्क से फैलता है। एक एक लक्षण यह है फैलने का, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, जहाँ लगा है जहाँ यह लक्षण दिखाई पड़ा उसी के आसपास यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा बात क्या होता है कि हमारे किनारे जो घास है, हमारे आर जो बंद है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, उस पर घास बहुत होते हैं, उस घास में भी ये पलते हैं और वह घास आक्रांत होता है। घास हमारा जो है पौधे से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ जल्दी जल्दी फैला जाता है, जिसको आर के किनारे फैलता है। उसमें भी एक देखते हैं आर का जो पूर्वी आर है वहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी आर है उसके तरफ जो पौधे हैं उस पर ज़्यादा होता दिखाई पड़ता है यह रोग। क्यों ऐसा होता है कि 9 से 10 बजे तक पश्चिमी किनारे में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है।

0: पूर्वी किनारा जो होता है हमारे प्लॉट का, वहाँ धूप जल्दी उग जाता है, मॉइस्चर कम देर रहता है, इसलिए वहाँ कम दिखाई पड़ता है। जबकि हमारा पश्चिमी किनारा जो होता है, कोई भी बंड के किनारे जो पौधे हैं, वहाँ पर यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह रोग जो किनारे में दिखाई पड़ता है ड्यू टू घास, जैसे घास का अगर हम सफाई सुथरा करते रहें तो हमें यह रोग पश्चिमी किनारे की ओर नहीं बढ़ता है। और यह खेत के अगर 10 ये हमारा 1 बीघा खेत है या 10 कट्ठा खेत है या 5 कट्ठा जो भी हमारा खेत का क्षेत्र है, वहाँ यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ तहाँ आपका पौधे से संसर्ग में जहाँ बीज लग गया इसका आपके फफूंद का, वहीं पर यह रोग फैलता है। यह किसान भाई इस लक्षण यही है, अगर यह जब आप पहचानेंगे तो एक डंटल तोड़ लें बीच बीच से और उसके डंटल को आवरण पर देखें भूरा रंग का है कि नहीं।
1: अच्छा, तो ये बातें हो गई है कि यहाँ पर ये कैसे फैलता है ये रोग, और इसके बाद डॉक्टर साहब जब रोग फैल जाता है तो ज़रूरी होता है उसका उपचार करना। और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का उपचार करना या फिर इसे स्थायी रूप से इसे बंद करना या फिर इसे छुटकारा पाना एक चुनौती भरी जो समस्या है वो उभर कर आ चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इससे कैसे बचे और इस रोग का उपचार कैसे किया जाए।
0: किसान भाई, आप जानते हैं कि जब भी रोग लगता है तो हमें उपचार करना चाहिए या हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन पूरा पूरा ले सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे किसान भाई उसको पहले तो अपने जब वह खाद बीज घास निकालने के बाद, जैसे 30 से 35 दिन में घास निकालते हैं हम लोग रोपाई के बाद, उसके बाद हमें 15 से 20 रोज जो है में खेत घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे डंटल पर जो आवरण जमीन जो पानी के सतह से जो हमारा डंटल है वहाँ उसको निचोड़ करके तोड़ करके देखिए कि उस पर धब्बा हुआ तो नहीं पड़ा है। अगर भूरे रंग का धब्बा आप देखते हैं और अधिक संख्या में देखते हैं तब खेत में हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है। अगर भूरा धब्बा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वह आप खेत जो है रोपनी से 60 दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए, जब वह आक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो जब किसान भाई यह बात देखते हैं पत्ती पर तो क्या कहते हैं कि हमें खेत में रोग लग गया, लगता है वही गलसा है। सही, गलसा तो है, अगर हम जैसे पत्ती पर जो लक्षण बताए भूरा रंग का चमकीला भड़कदार धब्बा दिखाए पत्ता पत्ती पर, तो नीचे की ओर से होता ना कि ऊपर की ओर से होता है। तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा हमारे पत्ती में क्या क्या लक्षण आया है कि नहीं है। तो उस अवस्था में अगर धब्बा हमें दिखाई पड़े तो किसान भाई दवाई का छिड़काव करेंगे। इसमें हमें दवाई का छिड़काव करने के जिस खेत में बार बार होता है, इसकी हम लोग ये भी कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बार बार हो, साल में हमेशा होता हो, आता रहे यह रोग, तो आप पौधे की रोपाई जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर करें। जितना सघन करेंगे उतना रोग फैलेगा, उतना रोग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम रोप की बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में, तो हमें हवादार मिलेगा। जब हवादार मिलेगा तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है वातावरण जो ये है वो पानी की मात्रा उस धान के आसपास कम होगा, जहाँ पर वो लगा हुआ नीचे जमीन के सतह पर, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम हुआ तो वहाँ रोग नहीं होगा। जहाँ सघन रोपाई किए आपने तो वहाँ ह्यूमिडिटी जो पानी की मात्रा है वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहा, तो वहाँ पर रोग फैलने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए रोपाई उस खेत में थोड़ा दूरी दूरी करें जिससे कि लाइट रोशनी जल्दी जाए, और लाइन स्विंग करना जरूरी है। जैसे आप पूरा पश्चिम लाइन स्विंग किए तो आपको फायदा क्या है कि धूप सभी पौधे में बराबर पड़ेगा और वहाँ पानी की मात्रा जल्दी से उड़ जाएगा, उस वजह पानी की मात्रा कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाष्प वहाँ पर कम रहेगा, तो रोग कम होगा। अगर रोग लग ही जाता है, लग गया है, तब उपचार करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर 2 दवाई बाजार में हम लोग ज़्यादा, ये दवाई एक है और उस बाजार में 2 नाम से सीथमार आप लोग सुने होंगे। सीथ मतलब है सीथ ब्लाइट से नाम रख के रखा उन्होंने, सीथ मार बोलते हैं मारने वाला। तो इस सीथ मार जो दवाई है बहुत यह केमिकल नाम अलग है, वैलिडामाइसिन कहते हैं हम लोग इसको, वैलिडामाइसिन। ये वैलिडामाइसिन जो केमिकल है, इस वैलिडामाइसिन का उपयोग करना चाहिए। बाजार में भिन्न भिन्न तरह का, पहले तो मैं जानता था दो ही दवाई, राइजोसिन नाम करके एक दवाई आता था, इसी का नाम है बाजारू नाम राइजोसिन है। तो कहने का मतलब ये तरह का वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है। वैलिडामाइसिन का उपयोग करने के लिए

0: क्या करना होगा कि हमें 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसी जगह छिड़कना है जहां हमें रोग दिखाई पड़ता है, और सभी जगह नहीं। अगर ये हवा वाली रहती, हवा द्वारा फैलता, तो हम पूरे बोलते हैं पूरे प्लॉट में छिड़क दीजिए, पूरे खेत में छिड़किए, लेकिन यह छिड़काव इसलिए हम लोकलाइज करते हैं, उसी जगह करते हैं कि जहाँ उससे बढ़ेगा नहीं
1: जी।
0: हाँ, किसान भाई के साथ कंसेप्ट यह है कि कोई भी दवा को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, तो हमको उसी जगह छिड़कना है दवाई, सभी जगह नहीं, जहाँ हो वहाँ छिड़केंगे तो वह बढ़ेगा नहीं।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जब आप रोपाई करते हैं तो समय समय पर आकर आप देखें कि कहीं धब्बे तो, यानी कि भूरे रंग के धब्बे तो नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप अगर पौधों की रोपाई करते हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों को रोशनी मिल पाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने शीत मार एक दवा बताई है, वो भी आप बाज़ार से लेकर जो फसलों हैं धान की फसलों पर दे सकते हैं। हाँ, वेलिडामाइसिन जिसे कहा भी जाता है, यानी कि शीत मार को वेलिडामाइसिन भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी से आशा करते हैं कि आज जो भी सुझाव मिले हैं आपको डॉक्टर एपी भगत जी से, आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनाकर अपने धान के फसलों को शीत ब्लाइट से बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी किसान भाइयों आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM।

0: मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके तो वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरे दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियां या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेम्बर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहाँ पर भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख पहुँच गया है। तो अगर 5 लाख किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए

0: मेहनत कर सकता है, क्यों आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
0: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं, सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है, FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी NABARD जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन NABARD उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान, क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस NABARD की तरफ से कवर कर लिया जाता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी NABARD ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
0: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं, अगर जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50% से लेकर 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की, जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर शुरू करेंगे तो

0: को लगे एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
0: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें ज़रूर मुनाफा होगा।
1: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
0: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुएं हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
0: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी, और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच

0: वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण

0: दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए। इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: तो भूख मिटे।
1: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी, हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
1: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते

0: कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा

0: लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 एफएम ग्रीन पर। और आज फिर से आप सभी के बीच लेकर आ चुकी हूँ, खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप जानते हैं खेती से जुड़ी उन्नत बातें। तो दोस्तों और हमारे किसान भाइयों, हर रोज हम अलग अलग फसल को लेकर आते हैं आप सभी के बीच, चाहे वो गेहूँ की बात हो, चाहे वो जो दाल है उनकी बात हो, या फिर चाहे वो चावल धान फसल की बात हो, वो लेकर आते हैं। लेकिन जहाँ तक फलों की बात होती है, तो भाई फल जो है वो हमारे हेल्थ से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदे लेकर आते हैं, और फल मौसमी भी होते हैं। फिलहाल अगर अनानास की मैं बात करूँ तो ये हर मौसम में आप सभी के लिए उपलब्ध है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, आज हम बात करने वाले हैं अनानास के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी। ख़ास तौर पर आज जो हमारा विषय है, मैं बता दूँगा आप सभी को, टिश्यू कल्चर विधि से अनानास के पौधों का उत्पादन। जी हाँ, ये है हमारा विषय और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तुषार रंजन जी। मैं आपको बता दूं कि ये सहायक प्राध्यापक हैं, साथ ही कनीय वैज्ञानिक भी हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, ये बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर से हैं। और आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, और अनानास से जुड़े बहुत सारी बातें भी जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वैसे तो मैंने अभी कहा भी कि अनानास के बहुत सारे फायदे हैं हेल्थ के लिए, हमारे बहुत फ़ायदे लेकर आता है अनानास, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं हमारे लिए आज खास तौर पर, तो बताएं कि अनानास के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
1: अनानास की अगर हम लोग बात करें तो ये ना ही सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके काफ़ी औषधीय गुण भी होते हैं।
0: जी,
1: ये अनानास का के फल का सेवन हमारे भूख को बढ़ाता है।
0: अच्छा,
1: एंड साथ ही साथ ये हमारे पाचन में भी काफी मददगार साबित होता है।
0: ऑब्वियसली जब ये भूख को बढ़ाता है तो डेफिनेटली डाइजेशन भी हमारा अच्छा ही होता होगा।
1: यस, एक्चुअली इसमें बहुत सारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफिशियंट बनाते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारा अनानास विटामिन से काफी भरपूर होता है।
0: अच्छा।
1: और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फास्फोरस, जिंक की भी काफी प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। सो और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफी ज्यादा होते हैं जो कि हमारे एंटी एजिंग के रूप में ये काम करते हैं, और ये हमें बीमारी से लड़ने
0: में, मतलब हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो ये बनाए रखते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं अनानास के। वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे अनानास पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उसमें जो है एक वाटर लेवल भी उसका मेंटेन रहता है इसे खाने से, चाहे आप गर्मी में खाओ सर्दी में खाओ, तो ये आपको बहुत ही अच्छा जो पोषण है वो देता है, साथ ही फिट रखता है आपको,
1: काफी हाइड्रेटेड
0: रहते हैं। फिलहाल जब गर्मी की बात आती है तो हर जगह इसका जो जलवा है वो दिखता है। और अब आते हैं हमारे विषय पर, यानी कि टिश्यू कल्चर विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अनानास की टिश्यू कल्चर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है।
1: देखिए, यहाँ दो तरह की बातें हैं। एक पहली बात, जितने भी हमारे, अगर हम नॉर्मल

0: प्लांट की बात करें, जैसे हमारे पास धान होते हैं, गेहूं होते हैं, मक्का होते हैं, ढेर सारे फल भी होते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो कि बीज रहित पौधे होते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अगर हम अनानास की बात करें तो इसमें कोई बीज नहीं होता है,
1: तो फिर इसे कैसे लगाया जाता है?
0: यही एक वजह है कि हम लोग जैसे हम लोग केले की खेती
1: जी,
0: करते हैं,
1: तो
0: केले के साइड से एक छोटा सा बच्चा जिसको हम लोग शक्कर पौधा बोलते हैं, वो निकलता है हमारे बगल से, और उसको हम लोग यूज करते हैं केला की खेती करने के लिए।
1: हाँ, हमने वो बचपन में देखा है कि जब केले के किसी भी पार्ट को आप ले लो और वो छोटे बच्चे भी वो काम कर सकते हैं, तो वो हमने बचपन में देखा था।
0: अनानास में भी वैसा ही कुछ होता है, इसमें भी बगल से एक छोटे से प्लांट निकलते हैं, मदर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, मातृ पौधे से एक छोटा सा बच्चा जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं विज्ञान में, जिसको हम लोग वैज्ञानिक टर्म जिसको हम लोग शक्कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: ये शक्कर होता है, इसको हम किसान बंधु यूज करते हैं और इससे पौधे निकलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो पहली बात, इसमें बीज नहीं है,
1: तो बीज रहित है,
0: बीज रहित पौधा है ये, तो इसीलिए हमें इसके पार्ट, इसको इस प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर के किसान बंधु इसको खेत में लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारे पास दो वजह, एक दूसरी वजह ये चीज है, जो भी हमारे पाइनएप्पल के पौधे होते हैं, अगर हमारा मातृ पौधा है किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी जीवाणु विषाणु कोई भी बीमारी से अगर वो ग्रसित है, अगर उस पौधे से निकला हुआ बच्चा भी ऑफकोर्स वो भी हमारा बीमारी से ग्रसित होगा।
1: Obviously.
0: अगर उसको किसान बंधु अगर खेत में लगाते हैं तो वो किसान बंधु के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है।
1: जी जी।
0: तो ये हमारा टिश्यू कल्चर विधि जो होता है, वो हम लोग पाइनएप्पल के किसी भी एक छोटे से अंश को लेते हैं हम लोग, और हम लोग अपने पोषक तत्व में, अपने प्रयोगशाला में पोषक तत्व में पे उसके ऊपर रख करके काफी ही स्वच्छ वाले वातावरण में उसको रखते हैं, और उस पर फिर हम लोग उससे एक अंश से पाइनएप्पल के एक छोटे से टुकड़े से हम 100-200 प्लांट रेडी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से डिजीज फ्री, रोग रहित प्लांट। तो यही एक विशेषता है कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जितने भी पौधे पाइनएप्पल के तैयार किए जाते हैं, अनानास के, वो बिल्कुल रोग रहित होते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, और टिश्यू कल्चर के बहुत ये अच्छे फायदे हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है हमारे किसान भाइयों को, और ये विश्वास भी हो जाता है कि अगर टिश्यू कल्चर पौधा है तो ये रोग रहित ही होगा, इस पौधे में कोई रोग नहीं होगा। तो आप भी अगर पौधे लगाना चाहते हैं अनानास के, तो टिश्यू कल्चर पौधे ही लगाएं। फिलहाल यहाँ पर अब नॉर्मल प्लांट की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, और टिश्यू कल्चर प्लांट की बात करते हैं। अभी तो आपने बताया कि उसमें रोग रहित होते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट और नॉर्मल प्लांट, तो फिर से एक बार हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि नॉर्मल प्लांट और टिश्यू कल्चर प्लांट में क्या अंतर होता है।
0: जैसे हम लोग नॉर्मल प्लांट की बात, जैसे मैंने अभी आपसे खुद ही बताया, अभी आपको खुद ही बताया हमने कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में अगर हम लोग बात करें तो किशनगंज का एक जिला है अपना, हमारा किशनगंज जिला है, जो कि पाइनएप्पल में का सबसे ज्यादा पैदावार करता है बिहार में। और किशनगंज की अगर हम लोग बात करें तो पोठिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, ये कुछ ऐसे एरिया हैं, इलाके हैं जहाँ की किसान बंधु इसको अनानास की खेती करते
1: कर सकते हैं।
0: तो वहाँ पर यहाँ के किसान बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक आप बोल सकती हैं कि इनको बहुत बड़ा एक परेशानी फेस करना पड़ता है कि इनके लिए जो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल होते हैं, जो भी अनानास के लिए प्लांटिंग मटेरियल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मातृ प्लांट होते हैं, मातृ प्लांट के बगल से वो निकलते हैं, ये किसान भाई जो बगल से बच्चा प्लांट निकलता है उसको यूज करते हैं।
1: अच्छा।
0: ये इसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, इसके लिए हमेशा उतने प्रचुर मात्रा में ये बच्चे प्लांट, शक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उन किसान बंधुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। और इसके साथ साथ हमारा टिश्यू कल्चर, जैसा कि हमने आपको बताया, एक अंश लेकर के आप उससे 100-200-500 प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। तो एक तो पहला हमारा मोटो है कि टिश्यू कल्चर से जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांट हो, हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं अपने किसान बंधुओं के लिए। दूसरी बात, जहां तक हमने बताया आपको, नेचुरल प्लांट क्योंकि ये तो हमारे फील्ड में तैयार होते हैं, तो फील्ड में तैयार होते हैं तो हमारा फील्ड ढेर सारे जीवाणु विषाणु के से भी प्रभावित होता है, हमारा अनानास का पौधा। तो जो नेचुरल प्लांट होते हैं उसमें डिजीज, ढेर सारे बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर किसान बंधु उस बीमारी वाले मातृ प्लांट से निकले हुए पौधों को अगर खेत में लगाते हैं तो ये उसके लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए साबित हो सकता है। तो यही एक हमारे टिश्यू कल्चर और नेचुरल प्लांट में यही डिफरेंस है कि हमारा टिश्यू कल्चर के द्वारा जितने भी रेज्ड प्लांट होते हैं, जो भी प्लांट हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर तकनीक से बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लांट हम लोग तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पाइनएप्पल की बात करें तो इनकी 12 से ऑलमोस्ट 12 महीने के करीब इनके ओवरऑल क्रॉपिंग सिस्टम के 12 महीने करीब लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम उतने दिन तक इंतजार करें तो ये हमारे लिए बहुत ही, किसान बंधुओं के लिए बहुत ही

0: एक ढंग से बोला जाए तो ये उनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है ये प्लांटिंग मटेरियल। तो इसीलिए हम लोग टिश्यू कल्चर विधि से ऑलमोस्ट हम बहुत ही मात्रा में बहुत काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हम लोग पौधे तैयार करते हैं और अपने किसान बंधुओं को ये डिजीज फ्री, जिसको हम लोग रोग रहित बोलते हैं, रोग रहित प्लांट को हम लोग
1: लाते हैं। तो ये तो बात हो गई अंतर की और फायदों की बात जहाँ तक आपने बताई, क्या इसके अलावा भी और कुछ फायदे हैं?
0: नहीं, यही सब कुछ फायदे हैं। जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी, ये काफी इसमें वाटर की काफी मात्रा होती है, तो ये हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रेटेड रखते हैं, और ये इसके खाने से हमारे स्किन भी काफी ग्लो करते हैं, और इसमें एंटी एजिंग फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को, हमें किसी भी, अगर हम लोग इसे डेली कुछ प्लांट अगर सेवन करें तो ये हमारे, इसमें विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और जैसा कि हमने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं।
1: तो खाने में ये जितना ही टेस्टी लगता है, यानी कि इसका जो स्वाद है वो सबसे अलग है फल में, उतना ही ज़्यादा फायदा है इसका अनानास का। तो जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, तो वो भी जी हाँ, बाज़ार में इसकी बहुत मांग है। आप इसके पौधे लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, फिर आप जहाँ भी इसे बेचना चाहते हैं अपने अगल बगल के बाज़ार में तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत होती है इस बात को जानने की कि आपने जो प्लांट लिए हैं, जो छोटे पौधे लिए हैं, जो आप लगाना चाहते हैं, क्या वो रोग रहित है। तो इसलिए टिश्यू कल्चर पौधे को ही आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, यानी कि प्राथमिकता दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही अच्छी जानकारी आज लेकर आए थे हमारे साथ तुषार रंजन जी, और इसके साथ ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी। 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए RJ अनु के साथ। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें।

0: की सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम

0: तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई निराई अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है जो रसायन मुक्त है जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है जो आपका क्षेत्र है वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
1: जी सर, सर प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
0: देखिए इसके मुख्य आधार दो ही हैं, एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ, तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं। अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी अर्क या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है? ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
1: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं?
0: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है, एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा, दूसरी बात सहफसली खेती की जाती है, सहफसली इसमें जो खेती की जाती है जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं, उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन

0: है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सहफसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सहफसली का इसमें ज्यादा वल होता है, सहफसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है और 50% सॉलिड पार्ट होता है। यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वो उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
0: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन, इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो वो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा। तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फास्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फास्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इसका प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी, जिसके चलते वह खुद ब खुद

0: बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूपेण जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
0: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।

0: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएँ भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह, ख़ासतौर पर मैंने देखा इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
1: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
2: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
1: अच्छा।
2: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोगरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
2: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोगरोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
1: अच्छा।
2: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट, थोड़ा मैम फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
2: ज़्यादा हो, विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं।
1: जी,
2: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है, फ्रूट है, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है, उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
1: अच्छा।
2: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में, जब इसको बहुत कम दिन होते हैं, 2-3 दिन तक रख सकते हैं।

0: अच्छा,
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए
0: जी,
1: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है। हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था। तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है लगाने इसे लगाने की वो भी बता दें।
1: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है। सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
0: व्यावसायिक रूप में
1: बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं, और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी,
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है। प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
0: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
1: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको
0: कमी मिलेगी जी।
1: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है
0: जी
1: कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस

0: पौध में उसको हमको लगाना चाहिए, और लगाने पौधे लगाने के पहले पौधे को हम कार्बन डाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
1: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
0: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
1: जी।
0: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी ज़मीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा।
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं, और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
0: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
1: तैयार
0: कर सकते हैं, और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हज़ार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हज़ार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा।
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं, और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है और लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा

0: तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 60 से 70 सेंटीमीटर तक, 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है। साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनेल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है। चाहे आप पुआल का मल्च दें, चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर की चौड़ाई में आता है और लंबा आप जितना चाहें एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी, सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक। और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45

0: दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को चार भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम चार भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको चार बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की तीन विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं ही अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बनडाजिम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बनडाजिम के घोल में उसको 5 मिनट तक डुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
1: जी,
0: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते, इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15-20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें, और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बनडाजिम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को, जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीफ स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीफ पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें, इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का, जो ग्रे मोल्ड होता है, ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मल्च का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी, इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें, तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लीफ स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान

0: बारे में भी आपने जाना। और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
1: इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे। और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें, तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
0: जी।
1: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें, थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
0: जी।
1: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे। तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं
0: जी।
1: तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है।

है, पोषण सुरक्षा है, तो स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी।

भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईटी के सहयोग से, और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनी हो या गूगल का एआई मोड पे आप जाएं, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो एआई जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत

0: हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है। हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है।

केयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: टीबी को हराए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में

स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दे तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करे। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोए और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजर

0: दास ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
3: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? हम तो भाई अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं। बस आपसे बात करने में हमारा मन लगता है। आपसे बात करते करते हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता और कई बार तो ये लगता है कि समय हो गया है लेकिन अभी हमारी बात तो पूरी हुई नहीं। तो आज हम आपके लिए ढेर सारा समय लेकर आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए एक कविता जिसका नाम है झूला। यह कविता आप पहले भी सुन चुके हैं लेकिन हमारा तो मन भरा ही नहीं। मन करता है कि आपके साथ एक बार यह कविता और पढ़ लें। तो सारे बच्चे तैयार हैं झूला कविता सुनने के लिए? तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कविता जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी आपको कविता? इस कविता के साथ साथ आपको तमाम तरह के वे सारे झूले याद आ रहे होंगे जिन पर आप झूले हैं। कभी आपको झूलों पर बहुत मजा आया होगा तो कभी आपको झूलों पर बहुत डर भी लगा होगा कि कहीं हम नीचे न गिर जाएं। हमने अपने आसपास तरह तरह के झूले देखे हैं, है ना बच्चों? आपने ये झूले कहाँ कहाँ देखे हैं? मेले में, स्कूल में, पार्क में, बगीचे में और बहुत सारी जगह हम इन झूलों को देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम अपने घर आंगन बरामदे में ही झूला डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम झूला झूलते हैं तो मन से एक गीत निकलता है और हम झूला झूलते झूलते वह गीत गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों, झूले के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे गीत और कविताएं होंगी जो आपको याद होंगी। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि झूले के आसपास कोई गीत कविता उन्हें याद है या नहीं। उन्हें याद होगा तो वे आपको सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा तो आप हमें सुना दीजिएगा। तो बस यूं ही गीत गाने और गुनगुनाने का सिलसिला बना रहेगा। अच्छा बच्चों, आपने झूला कविता में बहुत सारे शब्दों पर ध्यान दिया था, याद है आपको? एक शब्द था झूला जिसमें दो आवाजें हमने सुनी थी, झ की और ल की। शाबाश। और हमने झ और ल से बनने वाले बहुत सारे शब्द भी तो सुने थे, आपने कहे थे और हमने सुने थे। तो इसी कविता में एक और शब्द हमारे पास है और वह है डाली। पेड़ के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं। पेड़ में तना होता है, तने में डालियां होती हैं और टहनी होती है और पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं और पेड़ की जड़ होती है। तो कुल मिलाकर किसी एक पेड़ के ये अलग अलग हिस्से होते हैं। कविता में उन दो चीजों के नाम आए हैं जो पेड़ के हिस्से हैं।

0: आपको याद है? शाबाश, आपने कहा डाली और पत्ता। वेरी गुड। तो आपने डाली और पत्ता ये दो शब्द हमें बताए। आज हम डाली के आसपास बहुत सारी बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेड़ की डालियां बहुत मजबूत होती हैं, हम उन्हें पकड़कर झूल सकते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी डाली उतनी मजबूत नहीं होती, बहुत कमजोर होती है, और अगर हम उनसे लटक गए तो धप से हम जमीन पर आ गिरेंगे। तो हमें पेड़ों पर चढ़ने का मजा लेना है तो एक ऐसा मजबूत पेड़ चुनना होगा जिसकी डालियां बहुत मजबूत होती हैं। आप बस डालियां पकड़ते पकड़ते पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अकेले पेड़ पर नहीं चढ़ना, नीचे कोई बड़ा व्यक्ति हो उनकी देख रेख में ही हम पेड़ पर चढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि जब हम डाली शब्द कहते हैं तो इसमें कौन कौन सी दो आवाजें आपको सुनाई देती हैं? पहली आवाज है डा और दूसरी आवाज है ली। तो ये शब्द था डाली। लेकिन हम इन शब्दों को कभी भी बोलते समय तोड़ते नहीं हैं कि पहले हम बोलेंगे डा और फिर बोलेंगे ली। हम तो क्या शब्द कहते हैं? डाली। ठीक है, झूला झूल रही है डाली। अब इसमें जो पहली आवाज है वह आवाज है ड की। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें यह आवाज हमें सुनाई देती है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी आवाज को हम बोलते हैं या इन आवाजों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। तो जिस माध्यम से आप हमें सुन पाते हैं और हम आपके मन की आवाज को सुन पाते हैं वह है रेडियो। और इस रेडियो में भी बीच की जो आवाज है वह है ड, रेडियो। आया समझ में?
1: खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, डुगडुगी ले लो, डमरू ले लो, गुड़िया की डोली ले लो।

0: कुछ डाकू आए।
1: डाकू?
0: भारी डील डॉग। हाँ, करे डकैती बजा के डंका, सके न कोई बोल।

सभी छुपे डर डर के क्योंकि सभी तो थे डरपोक, डंडा मार के पैसा लूट रहे थे, सब डाकू बेरोक।

है, कहाँ है? शुरू में। वेरी गुड। हमारा अगला शब्द है डोलना। डोलना, इसमें ड की आवाज है? हाँ है। कहाँ है? शुरू में। डोलना। अगला शब्द है डंठल। डंठल, कुछ मुश्किल हुई आवाज को पहचानने में? क्योंकि ड और ठ एक साथ आ रही हैं, तो डंठल में शुरू की आवाज क्या है? ठ है कि ड है? शाबाश, डंठल में शुरू की आवाज है ड। अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। जो शब्द मैं कहूंगी और जो शब्द आप सुनेंगे, अगर उस शब्द में ड की आवाज है, यह ड की आवाज शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और आखिर में हो सकती है, तो आपको शब्द में ड की आवाज को पहचानना है कि वह आवाज है या नहीं। अगर शब्द में ड की आवाज आपको सुनाई देती है तो आप हाँ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जलेबी। और अगर शब्द में ड की आवाज कहीं भी नहीं है तो आप कहेंगे इमली। अब दोनों शब्द सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और मैं ये शो खत्म करते ही तुरंत ही जाऊंगी और जलेबी और इमली खाने का इंतजाम करूंगी। मुझे अफसोस रहेगा कि आप बच्चे मेरे साथ नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप मेरे साथ नहीं है? बस मैं आपका नाम ले लेकर आपके हिस्से की भी जलेबी और इमली खा लूंगी। तो तैयार है हम जलेबी और इमली के लिए? खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं कुछ शब्द और आपको बताना है कि इसमें जलेबी है या इमली। अगर शब्द में ड की आवाज है तो आप कहेंगे जलेबी, और अगर शब्द में ड की आवाज नहीं है तो आप कहेंगे इमली। तैयार है? ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा डोरी, जलेबी, डोलना, जलेबी, धरती, इमली, गार्ड, जलेबी, डेरा, जलेबी, बादल, इमली, डोर, जलेबी, डोलना, जलेबी, डमरू, जलेबी, झूला, इमली, ऊपर, इमली, डेरा, जलेबी। शाबाश, आप भी यह खेल अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं, और कभी मौका मिला तो आप और हम मिलकर ये खेल खेलेंगे। आप चाहें तो जलेबी और इमली की जगह कोई और मजेदार शब्द खोजकर रख सकते हैं। शब्द खोजना आपका काम है, मैं बस थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आप चाहें तो जलेबी की जगह यानी कि हाँ की जगह रख सकते हैं उठा, और ना की जगह रख सकते हैं शब्द पटक। तो शब्द क्या बनेगा? उठा पटक। और बहुत मजा आएगा अगर आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी इन शब्दों को दोहराएंगे। जैसे डाली उठा, धरती पटक, मजा आया? तो बस ऐसे ही एक शब्दों की सूची बना लीजिए। आपको अपने आसपास जो चीजें नजर आती हैं उनके नाम बोलते जाइए और आप उठा पटक करते जाइए। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि जब आपने जलेबी की बात शुरू की है तो आप इसकी एक कहानी भी सुना दीजिए। सारे बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं। तो जलेबी के आसपास तो मेरे पास कोई कहानी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कहानी है जिसका नाम है मिठाई। अब मिठाई में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे लड्डू खाइए, जलेबी खाइए या फिर बर्फी खाइए। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मिठाई। पता है बच्चों, एक दिन गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा, और पता है उनके दोस्त कौन कौन थे? उनके दोस्तों में शामिल थे हाथी, गिलहरी, चींटी, भालू, खरगोश। तो गधे के इतने सारे दोस्त थे,
गधे को बारी बारी से सब दोस्तों ने कुछ ना कुछ

कुछ मीठा खाने के लिए कहा, लेकिन देखते हैं कि किसने क्या मीठा खाने के लिए कहा। तो गधे ने अपने दोस्तों से कुछ मीठा खाने के लिए मांगा, तो पता है भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे को शहद खाना अच्छा नहीं लगा था। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। ना, गधे ने यह भी मना कर दिया। फिर पता है क्या हुआ? फिर चींटी ने कहा गधे भाई गुड़ खा लो, गुड़ तो बहुत मीठा होता है। गधे ने इसे भी मना कर दिया। फिर बारी आई हाथी की। पता है हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा गधे महाराज आप गन्ना खा लो, गन्ना तो बहुत मीठा होता है। लेकिन गधे को यह बात भी पसंद नहीं आई और गधे ने गन्ना खाने से इनकार कर दिया। तो गिलहरी ने क्या कहा? गिलहरी ने कहा आम खा लो, आम तो बहुत मीठा होता है। गधे ने मना कर दिया। दरअसल गधे को किसी की भी कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी। उसका मन मीठा खाने को था, तो कोई गुड़ दे रहा था, तो कोई आम खाने के लिए बोल रहा था, कोई शहद खाने के लिए बोल रहा था, तो कोई गाजर खाने के लिए बोल रहा था। गधे का मन मीठा खाने को तो था, लेकिन उसका मन कुछ अलग मीठा खाने को था। लेकिन उसके दोस्त यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ बिल्ली आई। बिल्ली बोली चलो हम हलवाई की दुकान पे चलते हैं। गधे को यह बात पसंद आ गई। उसने कहा हाँ हाँ हम सब हलवाई की दुकान पर चलते हैं। सारे जानवर हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। अब हलवाई इतने सारे जानवरों को देखकर डर गया। उसने सोचा कि अब ये मेरी दुकान पर हमला करेंगे। लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ बद दोस्त, आई रिपीट, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ दोस्तों आज कैसे रास्ता भूल गए। मुझे लगता है कि अभी अभी जो मैंने लड्डू बनाए हैं उसकी खुशबू से आप सभी मेरी दुकान पर आ गए। तो बिल्ली ने कहा नहीं हलवाई महाराज, हम तो गधे को लेकर आए हैं, गधे का मन कुछ मीठा खाने को है, इसलिए हम उसे आपकी दुकान पर ले आए। तो हलवाई ने कहा हाँ हाँ तो आप बैठिए, बताइए आपको क्या खाना है। तो गधे ने पूरी दुकान को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और उसे दिखी क्या? जलेबी। उसने हलवाई से कहा कि मुझे तो बस ये जलेबी खानी है। तो हलवाई ने गधे के साथ साथ गधे के सभी दोस्तों के लिए जलेबी परोसी और सब ने मजे से जलेबी खाई। तो ये तो थी मिठाई कहानी। अब गधे को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा मीठा खाना है। देखिए भाई, गुड़ भी मीठा होता है, गन्ना भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है और गाजर भी मीठी होती है। लेकिन गधा ये बता ही नहीं पा रहा था कि उसका मन क्या मीठा खाने को हो रहा है। बस उसने हलवाई की दुकान पर अपनी मनपसंद जलेबी देखी तो उसने कहा मुझे तो जलेबी खानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही काम करते होंगे अपने घर में। घर में दिन भर ये कहते होंगे कि मुझे कुछ चटपटा खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे कुछ नमकीन खाना है, लेकिन वे सही सही नाम नहीं बता पाते कि उन्हें मीठे में क्या खाना है, चटपटे में क्या खाना है और नमकीन में क्या खाना है। बस यही कहते रहते हैं कुछ मीठा कुछ नमकीन।

0: आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा है जिसमें मीठा खाने की बात है, जिसमें चटपटा खाने की बात है या जिसमें नमकीन खाने की बात है और आप बता ही नहीं पा रहे, तो ऐसे मजेदार किस्से हमारे पास लिखकर जरूर भेजिएगा। हमें आपके किस्सों की प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। हम आपके किस्सों की प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही हम आपकी कहानी कविताओं की भी प्रतीक्षा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलती हूँ एक मजेदार कहानी और कविता के साथ। तब तक के लिए सब बच्चों को ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी

0: से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर

0: उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्म को किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें

0: जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है और जैसिड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
1: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
0: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसिड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
1: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
0: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसिड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
1: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
0: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
1: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द

0: एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको

आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

0: से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। यहाँ कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से राजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, राजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी, ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास ना जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर ना रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से

और वह हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल।

नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से, इसलिए

0: आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। 90.8 FM ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है, चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
0: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं सर?
1: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं। एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें 100 से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सुटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
0: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
1: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करेंगे, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
0: सर अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है उसका किस्म, जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है। और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खास कर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी सर, सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
1: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, वो छोटे मतलब 1,000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए। उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाई वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे। इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल, वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है

0: सीड को सोइंग करना, ऊपर से फिर हल्का सा पर्थ, फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर। इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया, मेनली मीडिया जो है आप सोयल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
1: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए। मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
1: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
0: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा, उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा, फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
1: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की, तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
0: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहाँ आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहाँ लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
1: जी सर।
0: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
1: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं, बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
0: हाँ, इसमें ये है, जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
1: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
0: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है। उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है, उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
1: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है।

0: की बात।
1: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
4: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
10: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
11: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
10: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
13: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानने और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल, हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है इसमें रोग लगता ही नहीं, हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है, इसमें भी रोग बीमारी और कीड़ा लगने के लिए स्टार्ट शुरू हुआ है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से। ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पादन भी घट रहे हैं और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने को के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
1: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
1: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ का होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलस रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
1: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलस रोग के बारे में। झुलस रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तब

0: भी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकते हैं। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे भूरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे। वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा झुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते, पत्ता पूरा सूख जाता है। इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है। वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
1: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
0: बचाव के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देते हैं, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा। पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जलस रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है।
1: जी,
0: इसी के आवश्यकता से, जो भी आवश्यकता से, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फफूंद नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसा फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
0: करना चाहिए,
1: उतनी ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना
0: है। जो खाद और पानी कम देने, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज़्यादा देते खाद ज़्यादा देते पत्ता ज़्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो जुलास रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
1: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उसकी पहचान क्या है?
0: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है। चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृद रोमित असीता होते हैं। हम लोग ये बोल देते हैं मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तियाँ आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है। उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना, वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी। इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता, मृद रोमित असीता। अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ ऊपर दिखते थे, अभी मृद रोमित में क्या होते हैं, उसमें उल्टा हो जाते हैं। उसी में ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग का श्रेणियाँ के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है, आपको फफूंग दिख सकते हैं। वो बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाते हैं, आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाता है। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में एक रोग आता है जब गर्मी ज्यादा, वो चूर्णित असत्य रोग आते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है ना, उसी टाइम में ए रोग दिख सकता है। जब उम्र ज्यादा होता है, मृद असत्य होते हैं ना, वो डाउन मिल्ड बोलते हैं हम लोग, जब उम्र ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग

0: शाम में, शाम में हम लोग दिख सकते हो, बारिश आते रहते हैं। अभी जो आजकल हम देखते हैं ना, वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदुरोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
1: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
0: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता वजह से जब पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और खेती में क्या होता है ना, जो भी पत्ता दिखते हैं आप चूर्ण जनिक दिखाए और मृदु जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले के, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाते हैं और पानी से फैल जाते हैं। जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा और बालों में पूर्णित दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लान, एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो फफूंग होता है, ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है, जो कचरा आप पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
1: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाएं जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें
0: पहला
1: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
0: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़ियाँ असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक के 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं। और मृदुरोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है, उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
1: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
0: वही बोल रहा हूँ, अभी ये जैसा परवल इतना क्रॉप है, इसमें ज्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
1: जी सर, अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए।
0: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का, फफूंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास कैसे के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना, इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना। इसी में क्या होता है, पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग को जानते हैं। जब पत्ता, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है, एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मोज़ेक होना चाहिए। जैसा एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक, दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाते हैं, पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं, पीलापन हो जाता है, और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना, फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है। जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, ये फिर देखते हैं, थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
1: जी सर, तो इन अगर हम प्रबंधन की

0: बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
1: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना, प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है, उसी से पूरा फैल जाता है। एक भी नहीं रुकना है, रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट हटा के नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं, जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्की दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी रख सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्की देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा के संख्या घटने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
0: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
1: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होते हैं ना, पौधा अचानक क्या होते हैं, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेती होती है ना, जब भी आप परवल डालने के बाद 2 साल हो गया, अभी 3 साल 4 साल 2 साल के बाद आप रखे, तो ये जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता। क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपको उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
0: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं। हाँ,
1: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा, इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं। और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होते हैं, एक संक्रमित रोग आप देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक फफुंग नाशक होते हैं, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, वही जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
0: जी सर, सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: किसान उनके लिए पांच महत्वपूर्ण बात, किसान भाई परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें। जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और

0: दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
0: वही ये जो हम बात किए थे इसी के बारे में ध्यान में रखना है, वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
1: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM

0: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी।

सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम ऐसे सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सितारा होने से पहले अपने ही माता पिता के द्वारा ठुकरा दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि आपके कल में क्या लिखा है ये आप अपने आज को देखकर नहीं पता लगा सकते। अपने माता पिता के द्वारा ठुकरा दी गई बच्ची पहले तो अपने माता पिता के घर पहुंची, उसके बाद देश भर में अपना नाम बनाया और फिर पूरे विश्व भर में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए

जरूरत थी उसे दाई को सौंप दिया। अपनों के द्वारा ठुकराई गई बच्ची को दाई ने दिल से अपनाया और धनतेरस के दिन जन्मी बच्ची को नाम दिया धन्नो। धन्नो की दाई ने खूब सेवा की, दिन रात मालिश कर उसका मुंह कुछ सीधा कर दिया। जब धन्नो के माता पिता तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने धन्नो को अपनाने का फैसला किया। वो धन्नो को अपने पास ले गए और धन्नो अब धनलक्ष्मी हो गई। धन्नो के पिता ने धन्नो को दिल से अपना लिया था और उस समय में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। धन्नो भी 8 साल की हो चुकी थी तो उसकी शादी तय कर दी गई। धन्नो की शादी हो गई और नई नई दुल्हन से जो आम तौर पर उम्मीद की जाती है, धन्नो से भी वही उम्मीद की गई। घर के काम का सीखे और घर की चार दीवारी की होकर रह जाए। पर धन्नो तो कुछ और चाहती थी, उसे स्कूल जाना था, उसे पढ़ाई करनी थी। तो धन्नो ने जिद पकड़ ली और घर के काम काज में उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं आती थी। इसमें धन्नो की कोई गलती नहीं थी, हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है। बस फिर क्या था, घर के काम काज में रुचि न लेकर स्कूल जाने की जिद पकड़ लेने वाली बहू को कोई कैसे अपना सकता था। वो शादी टूट गई और धन्नो वापस अपने पिता के घर आ गई। तब तक धन्नो के पिता सुखदेव महाराज ये समझ गए थे कि धन्नो कोई आम लड़की नहीं है, उसमें उस जमाने में भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की ललक है। वो लग गए अपनी बेटी को कामयाब बनाने में। धन्नो के पापा सुखदेव महाराज वाराणसी के रहने वाले थे और मूल रूप से वो एक कथक कलाकार थे, तो बच्ची के रगों में भी अपने पिता का खून आया था और वो भी कथक में रुचि लेने लग गई थी। उसके पापा ने अब धनलक्ष्मी का नाम सितारा रख दिया। सितारा ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। 10 साल की उम्र होने तक वो एकल नृत्य का प्रदर्शन करने लगी थी। एकल नृत्य यानी कि वो खुद अकेली नृत्य का प्रदर्शन किया करती थी। और ये वो वक्त हुआ करता था जब लड़कियों का स्टेज पर नृत्य करना, लड़कियों का स्टेज पर डांस करना अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। तब के समय में सितारा अधिकतर सिनेमा हॉल में फिल्मों के बीच जो 15 मिनट का समय होता है, यानी कि मध्यांतर के दौरान अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थी। अब सितारा 11 साल की हो गई थी। फिल्मों के बीच 15 मिनट के इंटरवल में प्रदर्शन करने वाली सितारा अब पहली बार फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली थी। कहते हैं कि कथक से अगर किसी ने बॉलीवुड का परिचय कराया है तो वो है सितारा देवी। कथक ने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी थी और ये दिशा दिखाने वाली थी सितारा देवी। उन्होंने शहर का जादू, स्वामी, रोटी और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन मदर इंडिया के बाद सितारा देवी ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो फिल्मों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय नृत्य पर ध्यान देंगी। उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया। सितारा देवी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। किस्सा ये कि सितारा जब 16 साल की थी तो उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर मौजूद थे। वो सितारा देवी के नृत्य से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी का उपनाम दे दिया। साथ ही उन्होंने सराहना के तौर पर एक शॉल और 50 रुपए का उपहार भी दिया सितारा को। गुरुदेव ने सितारा के नृत्य को देखकर ऐसे ही नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि नहीं दे दी थी, बल्कि आगे चलकर सितारा देवी ने इसे सही साबित किया। अपने नृत्य से उन्होंने पूरी दुनिया का मन मोहा और कथक को एक नया आयाम दिया। उन्होंने पूरे विश्व को कथक से परिचित करवाया। देश के हर कोने के साथ विदेशों में भी उन्होंने शो किया, जिसमें इंग्लैंड के रॉयल अल्बर्ट हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में उनका फुल हाउस कार्यक्रम ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनके इन दोनों कार्यक्रम को आज भी याद किया जाता है। बाद में सितारा देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सहित ढेरों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितारा देवी ने पुरस्कार तो कमाया, साथ ही उन्होंने जीता अपने लोगों का दिल और अपनी नृत्य की यात्रा को छोड़ते हुए, वो हम सबको छोड़ते हुए 25 नवंबर 2014 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन आज भी अगर कथक की बात होगी तो सितारा देवी का नाम जरूर लिया जाएगा। उनके निधन के बाद कथक की दुनिया में ही नहीं बल्कि जो भी नृत्य प्रेमी थे उनमें शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी यहाँ हमेशा रहने नहीं आया है, और जब तक उसे रहना है तब तक वो ऐसे काम अगर कर ले जिससे उसके जाने के बाद भी दुनिया उसे याद करे तो फिर क्या ही कहने। जैसे सितारा देवी ने जन्म के साथ ही एक छोटी सी नवजात बच्ची को उसके माँ पिता ने खुद ठुकरा दिया।
लेकिन तब कहां किसी ने सोचा था कि धनतेरस के दिन जन्मी धन्नो पूरे विश्व में अपना नाम कमाए।

की तो ये थी धनो धन लक्ष्मी सितारा देवी नृत्य सम्राज्ञ की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ और ढेरों जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, यहाँ पर हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी और ख़ास बातें लेकर आते हैं। जी हाँ, उन्नत कृषि नाम है हमारे इस कार्यक्रम का और उन्नत बातें होती हैं आप सभी के साथ। तो आज का विषय भी काफ़ी खास है आप सभी के लिए, वो है बीज उत्पादन तकनीक। तो आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सीड साइंस टेक्नोलॉजी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले जब विषय की ओर बढ़ें हम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि किसान किन किन फसलों का उत्पादन अपने स्तर से कर सकते हैं।
2: मेरा सबको नमस्कार। जहाँ तक ये फसलों में बीज उत्पादन का जो ये है कार्यक्रम है, तो आप अपने यहाँ किसी भी फसल का उत्पादन, बीज का उत्पादन आप कर सकते हैं, बशर्ते ये शर्त ये है कि थोड़ा आपको उसमें जैसे तकनीकी जो जानकारी होती है वो आपको अपने पास होना चाहिए। और उसके लिए जैसे यूनिवर्सिटी के पास, जैसे विश्वविद्यालय के पास टेक्नीशियन है, वो आपकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे आप सीड प्रोडक्शन का, बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू करेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये हम फिर थोड़ा आप चर्चा करेंगे। और ये आपको लगातार जो विश्वविद्यालय है उनके टेक्नीशियन के संपर्क में रहने से आप धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगे।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई कि कैसे किन फसलों का उत्पादन वो अपने स्तर से कर सकते हैं। अब ये जानना चाहेंगे हम, और हमारे किसान भाई भी जानना चाहते होंगे कि बीज उत्पादन के बाद बीज ढेर को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जैसे आपके पास, जैसे आप सारा टेक्निक सीख गए, बीज उत्पादन हो गया, और उसके बाद जैसे आपके पास एक ढेर आ गया, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल का एक ढेर आ गया, कोई मान लीजिए आपके पास कोई बीज इसका गेहूं का आ गया या धान का आ गया, तो उसको आप अपने तरीके से, एक तो आप अपने गांव में भी जो है सेल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आपने पहले से अगर सेलिंग का रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, तो आप अपना किसी एक ब्रांड नेम जो होता है, जैसे पर्टिकुलर नाम से अगर आपने रजिस्टर्ड कराया है, उसके तहत आप उसको बेच भी सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या है कि जैसे हम लोग सारी कोशिश करने के बावजूद हमारा जो बीज विस्थापन दर है, जो क्वालिटी सीड से होना चाहिए, वो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग का सिर्फ 40-45% इसी रेंज में है, जो कि हम लोग मतलब होना ये चाहिए कि 70-80% के रेंज में जाए क्रॉप में, फसलों में, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें ये हो रहा है कि जैसे जो किसान भाई अपने यहाँ जैसे बीज जो जैसे लगाते हैं जो फसलों को, उसको उसी का निकाल करके वो रख लेते हैं, और फिर जो अगले साल उसी को लगाते हैं, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें पैदावार घटने लगता है। एक बार जैसे बीज आपने खरीदा, फिर अगली बार आप उसी को लगाएंगे, फिर उसके बाद उसी में से निकाल के फिर अगली बार लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा इसमें मिक्सचर होता है, उसके बाद आपको अपना जो उत्पादन है वो नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपका लागत भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो जो आप बीज बचा के रखते हैं, उसको अगले बार अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से यहाँ जो बीज लगाए हैं उसको हम किस तरह से अरेंज करके सारा कुछ रखें, जिससे कि वो बीज ख़राब भी नहीं हो और उसमें मिक्सचर भी नहीं हो, तब आप अगले बार उसको लगा सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुरक्षित रखना है बीजों को अगली बार इस्तेमाल करने के लिए। और बीज उत्पादन के समय अगर हम बात करें ध्यान देने योग्य बातें, तो किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं?
2: देखिए, बीज उत्पादन में सबसे जैसे जो तकनीकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो पृथक्करण दूरी है, जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, अगर कहने को बताया जाए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आम तौर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कहा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कि जो बीज का जो पृथक्करण, जो क्रॉप का जो पृथक्करण दूरी है, वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि अगर आप जैसे पृथक्करण दूरी अगर मेंटेन नहीं करते हैं, तो या तो दूसरा क्रॉप, एक क्रॉप की वैरायटी दूसरी वैरायटी से जा करके मिक्सअप होगा, ठीक है, उसके बाद वो मिक्सअप आप कई लेवल पे हो सकता है जब फलन आने लगे, फ्लावर आने लगे, उस समय हो जाए, हो सकता है जिस समय आप सोइंग करने जा रहे हैं उस समय हो जाए, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसा होता है कि आप उस कुछ क्षेत्र में आप किसी खास क्रॉप का बीज उत्पादन नहीं ले सकते हैं, जैसे अगर हम बिहार में मक्के का

0: बीज उत्पादन की बात करें तो एक बहुत बड़ा समस्या ये आता है कि मक्के का जो है बहुत बड़े एरिया पे लगता है और बहुत सारी वैरायटी और उसमें जो है हाइब्रिड लगता है, तो आप उसमें पृथक्करण दूरी को मेंटेन करना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप अदर फसलों में देखें, जैसे गेहूं में देखें या धान में देखें, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होता, 3 मीटर होता है और 3 मीटर में आप आराम से उसमें कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे अगर आपने जैसे बीज जैसे आपने लगाया है, फसल लगाया है, तो आप उसको कम से कम मिनिमम कम से कम 2 बार आप उसको फील्ड पे जरूर जाइए। सबसे पहले ये देखिए कि कोई एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे से भिन्न दिख रहा है, जिसको हम लोग अभी जैसे टेक्निकल भाषा में हम लोग ये वो ऑफ टाइप बोलते हैं, वो क्या है, वो दूसरी वैरायटी का है। जनरली क्या होता है कि सीड जो बीज के साथ एक वैरायटी का बीज दूसरे वैरायटी के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो आपको तभी पता चलेगा खास तौर से जब आप फील्ड में उसको देखेंगे, और बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसमें डिफरेंस जो अंतर है वो आपको क्लियर कट दिखे, या तो पत्तों में अंतर है, या तो फ्लावर जो फूल निकला है उसमें अंतर है, या तो आपका जो बाली होता है अलग से उसमें अंतर है, या तना में अंतर है, या जो होता है जैसे लीफ है जो पत्ता है उसका जो बनने का जो तरीका है बनावट है उसमें अंतर है। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें क्या है कि जैसे 100 प्लांट है, 100 पौधा है, 100 पौधा में से आपको 1 या 2 पौधा आपको जरूर नजर आ जाएगा ये डिफरेंट है, ये भिन्न है और पौधों से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो बगल में होता है और वो बहुत तेज़ी से मतलब क्रॉस करके वो दूसरा ही जो है किस्म पैदा कर देता है,
1: मतलब मिक्सिंग ऑफ
0: मिक्सिंग बहुत बहुत ही मतलब आज के हम लोग तारीख में ये देख रहे हैं कि हम इतना वैरायटी हमारे पास हो गया, हमने बहुत सारी वैरायटी डेवलप करी, बहुत सारा का सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जो मिक्सचर का प्रॉब्लम है ये हो ही रहा है। हम कितना भी अगर उसको हम ये लेकर के आ रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मिक्सचर हो रहा है। और ये प्रॉब्लम ये है कि जब खेतों पे जाता है तो वहाँ पे मिक्सचर ये घटता नहीं है, ये मिक्सचर आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इसको निकालना, इसीलिए फिर आप ही लोग के तरफ से हम लोगों को ये मिलता है, मतलब बात आती है कि भाई वो जो है 1 साल उपज हमको मिला, अगले साल उपज नहीं मिला, वो सबसे बड़ा कारण वही है कि जब आपका जो बीज है वो मिक्सचर है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मतलब आप हर एक लेवल पे, जैसे अगर आपने बीज काटा है तो काटने वक्त ये ध्यान रखिए कि आप बीज के लिए क्या काटने जा रहे हैं, और जो आपका जो अदर फसल है जो आप अदर खाने में यूज़ करेंगे उसके उसको आप किस तरह से काट के अलग रखेंगे। अगर दोनों का मिक्सअप कर देंगे तब तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसका भंडारण करने जा रहे हैं तो अगेन आपको भंडारण में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीज जो है वो जैसे गेहूं का है या धान का है या इसका सोयाबीन का है, ये सब बीज जो है वो बहुत जल्दी से कीड़े मकौड़े से ग्रसित होता है और इसको फिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार हम लोग का जो आमन मतलब तरीका है, एक बार बीज हमने काटा, साफ सफाई कर दिया, करने के बाद हम लोग उसको एक बार रख देते हैं, फिर हम उसे हमारी क्या है कि हम लोग फिर उसको देखने ही नहीं जाते क्योंकि हम फिर 4 महीना 5 महीना तक उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या है कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ हम उसको देखने नहीं जाते। अगर आप नहीं देखेंगे तो कीड़े का जो अंडा है वो आपका जो बीज है बीज के सरफेस पे चिपका हुआ है, और वो आपका जो जैसे आपने साफ सफाई कर तो दिया है, डंठल वगैरह सब निकाल दिया है, लेकिन अभी भी जो बीज का जो सरफेस है सतह है उस पर वो चिपका हुआ है, जिस वजह से क्या होगा, और वो फील्ड से ही आया है, जिस वजह से क्या होगा जब वो गोडाउन में जाएगा, जब आप स्टोर भंडारण में रखेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करेगा, और एक बार जब ये पॉपुलेशन जब ये संख्या बढ़ने लगती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो जब तक आप उसे बार बार नहीं देखेंगे तब तक उसको करना थोड़ा बहुत
1: मतलब समय समय पर अगर आप बीज को
0: उसको देखते
1: जमा करके रख रहे हैं कि अगली बार आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समय समय पर देखते रहें कि कहीं उन पर कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो लग तो ना गए हैं। और डॉक्टर साहब अभी संकर बीज की हम बात करते हैं तो क्या किसान भाई संकर बीज का भी उत्पादन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे अभी बहुत सारी कंपनी जो है वो उनके पास अपना कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, अगर वो भी अगर उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं तो वो भी किसान भाई के घर पे ही करते हैं, उनके जो खेत होता है उन्हीं के मदद से वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं कि आप संकर बीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं,
1: कर सकते
0: बस हैं। यही है कि आपको इसमें थोड़ा, जैसे आप अगर आप किस्म का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आसानी होता है, और अगर संकर बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको और टेक्निकल चीज जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप

0: को दो लाइन मिलेगा, जैसे दो आपका दो लाइन आप लगा देंगे, दो लाइन और दोनों को आपको क्रॉस करना होगा, तभी
1: अच्छा
0: जाकर के किसी एक लाइन पे जो है आपका संकर बीज का उत्पादन होगा। और उस संकर बीज का उत्पादन होने के बाद तब आप अगले साल जो है उसको आप हाइब्रिड सीड के रूप में खेत में लगाएंगे, जिसका उपज आपको प्राप्त होगा। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इसके लिए हमेशा जो है विश्वविद्यालय का हमेशा मदद लेना होगा, थोड़ा सा जैसे नॉलेज कि हम कहाँ पे किस तरह से कर, हाँ टेक्निक सीखने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीज उत्पादन का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आप छोटा सा अगर आप गलती करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आपका कुंटल का कुंटल हजारों कुंटल बीज जो है ख़त्म हो जाता है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे हम किस्म लेके आते हैं तो किस्म लेकर के आए कहीं से लाए और हम यहाँ लगाने लग जाए तो ये संभव नहीं है। अगर जो किस्म यहाँ के लिए है हम पूरी कोशिश करें कि वो किस्म ही लेकर के आए और उसी का हम आगे उत्पादन करें, क्योंकि क्या होता है आप किस्म कोई भी होंगे अगर हम किस्म लेके आते हैं उसमें क्या होगा, इस बार लग तो गया उपज आपको मिल गया, लेकिन अगली बार हो सकता है आपको नहीं मिले उपज, तो सबसे बड़ा समस्या यही होता है। और उसमें बहुत सारा चेंजेज होता है, जैसे मतलब जैसे जैसे आगे वो बढ़ता जाता है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होते जाता है जिसको आपको शायद हो सके पता ना चले, और वो बीज जो है वो जो आप लेके आए थे वो है ही नहीं, वो दूसरा ही बीज हो जाता है। तो जो जो यहाँ पे जैसे होता है कि जैसे आपको जो बीज लगाना है जो यहाँ के लिए है, मतलब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम वही बीज को लगाने मतलब प्रयास करें हम।
1: और डॉक्टर साहब जहाँ तक बीज उत्पादन तकनीक की बात है तो एक और टॉपिक आता है बीज के गुणाक्रम, तो इस पर हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी बातें बताएं विस्तार में।
0: हाँ देखिए, गुणाक्रम का हम जैसे उस एक टेक्निक वो इसलिए दिया गया, उसका उद्देश्य ये था कि जैसे जो जैसे यूनिवर्सिटी ने कोई मतलब जैसे विकसित किया कोई किस्म विकसित किया या कोई संकर विकसित किया तो हमारे पास बीज बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, वो हम सभी को नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि क्वांटिटी मान लीजिए हमारे पास एक कुंटल होगा या दो कुंटल होगा, तो एक दो कुंटल में पूरा इतना बड़ा हजारों हेक्टेयर एरिया नहीं लग सकता, तो उसके लिए ये दिया गया कि हम इसको गुणाक्रम में लेके जाएंगे। मतलब ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें तीन गुणाक्रम है, जैसे बीडर सीड लेकर के आएंगे तो बीडर सीड इंस्टीट्यूशन के पास होता है, जैसे यूनिवर्सिटी के पास है किसी कॉलेज के पास है वहाँ बीडर सीड आपको उपलब्ध होगा, वहाँ से आप लेकर के आएंगे, उससे प्रोडक्शन जो आप करेंगे वो आधारीय बीज करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग फाउंडेशन सीड भी बोलते हैं। और उसके बाद जब उससे हम प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो हम लोग उसको सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, जो कि हम लोग प्रमाणित बीज बोलते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए दी गई है कि जिससे कि हम बीज जो भी नई किस्म आई है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर हम पहुँचा सकें। कोई मान लीजिए कोई किस्म है उसका जो बीज है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर हम पहुँचा सकें। और जैसे किसान भाई आप अपने यहाँ ये दो चीज़ का जो जैसे फाउंडेशन है आधारीय बीज है और जो प्रमाणित बीज है, इन दोनों का उत्पादन अच्छे तरीके से आप अपने यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त इतना ही होती है इसमें कि आपको थोड़ा थोड़ा सा समय समय पे एक एक छोटा छोटा टेक्निक होता है बस उनको सीखते रहना है, और उसके लिए यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मतलब साइंटिस्ट हैं और जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे थोड़ा मदद लीजिए। देखिए आप अगर अपने यहाँ जैसे उसको अगर आप मतलब सेलिंग नहीं करना चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बीज उत्पादन थोड़े से एरिया में आप कर लेंगे तो कम से कम आप अपने यहाँ तो अच्छा लगा पाएंगे
1: जी।
0: और वो पैसा जो मान लीजिए अगले साल खर्च करना है जैसे 1500 या 2000 या 5000 आप खर्च करते हैं बीज पे, कम से कम वो तो नहीं होगा। और दूसरा ये है एक चीज़ इससे बच जाएंगे, और दूसरा ये चीज़ है कि जैसे आपाधापी होता है कि हमको कोई किस्म नहीं मिल रहा है हम कब लगाएंगे, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, बीज आपके पास है आप जब खेत तैयार आपका होगा आप लगा लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि अचानक से बीज का मतलब डिमांड बढ़ गया और बीज है नहीं तो फिर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इस सब व्यवस्था ऐसा है कि जिससे आपको वो काफी मदद मिलेगा।
1: तो किसान भाइयों विस्तार से आपने जाना बीज उत्पादन तकनीक, और इसमें हमने अलग अलग पहलुओं पर भी विशेष प्रकाश डाला, जैसे कि हमारे किसान भाई कैसे बीज उत्पादन कर सकते हैं और बीज उत्पादन के बाद बीज ढेर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बीज उत्पादन के समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत सारे मतलब सवालों का जवाब मिला है हमारे किसान भाइयों को। तो आशा करती हूँ कि आप सभी आप हमारे किसान भाई इन बातों को याद रखेंगे, और जब भी आप बीज उत्पादन कर रहे हैं

0: तो यहाँ दिए गए दिशा निर्देशों को याद करके ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन आप सभी से अगले विषय के साथ मुलाकात होंगी। तब तक के लिए रखिए।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
10: धन्यवाद उमा।
0: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
10: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या

0: कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
1: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
0: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं, इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं, उस वहां पे जाकर के या फिर खुद ही इंटरनेट पर इसे इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
1: जी,
0: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है, जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। और फिर इसमें 5,00,000 रुपए का अनुदान और 5,00,000 का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को

0: बताना चाहूंगी जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना, इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50-80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
1: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और अंत में आप महिला किसान, ख़ास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सके।
1: जी मैम बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं, और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी
1: मैम
0: कि कृषि सखी, सरकार द्वारा एक पहल चल रही है कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र, जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जा कर के, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पे जानकारी ले सकते हैं

0: और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
11: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
10: जी,
11: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
10: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?

0: पोषण को हम पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
1: तो मान लिया जाए जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
0: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
1: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
0: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
1: जी,
0: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना?
0: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए, और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए, और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर

सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 एफएम ग्रीन को दिया, इसके लिए एफएम ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: 90.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन. और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें. तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं. और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण. और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं. तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जिनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं. तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं. तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है. लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे. तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे. तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है, तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं, जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है, तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला

कटे हुए का निशान दिखेंगे, तो ये तनाछेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है, या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तनाछेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तनाछेदक का। और ये जो तनाछेदक है, मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी बम से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं, तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है, ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहे कि उत्सर्जन, जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है, मल होता है, उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ है, जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं। उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारणें हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे, मतलब जो कीट है तो तनाछेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है, उसको आप कैसे पहचानिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है। एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी, जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको बचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताएं लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है, लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है। साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक, मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज, दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है। जैसे हर, जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ ना कुछ निशान होता है, हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन में, जिधर सर बोलते हैं उस साइड में। और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे, तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं, जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है, तो इसमें लगभग नहीं, छः इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो, तो ये अलग अलग उनके फेज है, हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा, तो वो अंडा के बाद, जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका
अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोले अवस्था होता है, तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज

छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया, अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है, और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं, और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है उस टाइप से आपके पत्तियां दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाले हैं जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियाँ बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से, साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3-4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है, अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो व्यस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80-100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो व्यस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके व्यस्क क्षति करते हैं, जो चलते हैं जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा

क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करें। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में, खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बटवार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बटवार होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है। लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपके प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेथ्रिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में

0: आपको डालना है, मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोग्राम 12.6% प्लस लैम्डा सालोहोलो 3 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 11.7% इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण

0: करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गाँव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गाँवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। यहाँ कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8

0: एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार स्थानीय ज्ञान पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान वैज्ञानिक निदान समाधान का संयुक्त विकास खेत पर उसका प्रयोग नियमित निगरानी परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर उत्पादकता में वृद्धि उत्पादन लागत में कमी किसान की आय में वृद्धि संसाधनों के बेहतर उपयोग किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि RAWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन फसलों में रोग एवं कीट मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी सिंचाई की समस्या बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य

0: का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान RAWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियाँ भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की RAWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्निल ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर AK साह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से RAWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि RAWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा। किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
3: FM ग्रीन।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
4: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको

0: समय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के

मध्य से बीज की बुवाई शुरू कर दे। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं।

सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम

फ्री है, इससे आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं, या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, ख़ास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए, किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं, और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस स्थिति में तो बहुत जरूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझे और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव

दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए ज़रूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं, और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कर आती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बता।

0: बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि, किसान भाइयों को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको धान में शीत ब्लाइट के प्रबंधन की ओर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी भगत, प्राध्यापक पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जब बात आती है रोगों की और वो भी धान में, तो ये जो शीत ब्लाइट रोग है वो हमारे धान की फसलों के लिए एक प्रमुख रोग बनकर रह गया है, और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि पहले के चार पाँच साल से धान की फसल में 60% तक गिरावट आई है, और ऐसे में किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का प्रबंधन करना एक चुनौती बन गया है। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट नाम क्यों पड़ा इस रोग का?
8: आप किसान भाई जानते होंगे कि आप जब धान लगाते हैं अपने उत्पादन के लिए अपने, तो क्या होता है कि आप जब फसल हमारा 30 से 40 दिन का हो जाता है रोपने से, जिसमें हम लोग घास उसमें खेत से निकालने के लिए तैयार होते हैं, उस समय देखते हैं कि बहुत हमारा खेत स्वस्थ होता है, और उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि घास निकालने के बाद जब खेत में घूमने जाते हैं कुछ दिन के बाद, देखते हैं कभी कभी कि हमारे खेत में धब्बा लग जाता है। यह जो धब्बा है शीत ब्लाइट कहलाता है, जो आप लोकल भाषा में जो हमारा क्षेत्र यह है इसमें हम लोग गलसा गलसा कहते हैं। यह गलसा क्यों होता है? हाँ, गलसा जैसे है शीत बाला ब्लाइट, उसको हम लोग आवरण झुलसा भी कहते हैं। आवरण झुलसा मतलब हुआ कवर, जैसे आपके धान के पत्ती को खींचते हैं तो एक कवर होता है नीचे में, पत्ती के नीचे उसी आवरण पर यह लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको शीत ब्लाइट बोलते हैं और उसका हिंदी में आवरण झुलसा बोलते हैं।
2: अच्छा, आवरण झुलसा।
8: जी हाँ।
2: और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट वैसे तो रोग हानि ही पहुंचाता है, चाहे वो मनुष्य हो या धान हो या फसल हो, जो भी हो। तो रोग की बात कर लेते हैं, शीत ब्लाइट रोग की, तो ये धान की फसलों को कहाँ तक हानि पहुंचाता है?
8: आप किसान भाई जानते होंगे यह शीत ब्लाइट जो हमारा है, यह जो गलसा रोग है, आपको अगर शुरू अवस्था में लगा तो देखेंगे कि उग्रता के हिसाब से, उग्र जब रोग होता है पूरे बाली तक आ जाता है, झुलसा ये हमारा पूरे बाली तक आ जाएगा, तो हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया है पत्ती द्वारा वह समाप्त हो जाता है। लगभग हमें यह रोग 50% तक हानि हो जाता है, आधा जो फसल हमें 10 क्विंटल होना चाहिए उस खेत से हमको 5 क्विंटल होगा, मतलब 50% तक का हानि को देखा गया है इसमें।
2: यानी कि 50% तक की गिरावट हो सकती है फसलों में, धान की फसलों में, या फिर यूँ कहें कि धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम जाने कि हमारे इस धान के फसल को शीत ब्लाइट रोग लग चुका है, और इसके लिए ज़रूरी है पहचान। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस

0: रोग का पहचान कैसे किया जाए?
1: आप किसान भाई देखेंगे कि जब आपका पौधा 50 से 60 दिन हो जाएगा तो आपके जो आवरण है, जो जहाँ पर पानी की सतह है, पानी की सतह से 1-2 इंच ऊपर देखेंगे आवरण पर या शीत पर भूरा रंग का धब्बा बनता है। यह भूरा रंग का धब्बा जब बढ़ता है तो यह पत्ती की ओर चला आता है। जब पत्ती पर आता है तो हम पत्ती पर देखते हैं भूरा से चिकता नेमा सांप का जो इस धब्बा होता सांप के ऊपर भरकदार चमकदार उस तरह के पत्ती पर और नियमित आकार का, कोई निश्चित नहीं है कि गोल होगा, वो अनियमित आकार का धब्बा दिखाई पड़ता है, बहुत चमकीला होता है। और उसके बाद यह धब्बा जो है आपके पूरे पत्ती को झुलसा देता है और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। इसका पहचान यही है जिसको आप लोग बाद में क्या कहते हैं कि झुलस गया गलस गया, आप लोग बहुत देर से देखते हैं। अगर शुरू अवस्था में देखेंगे तो आवरण पर भूरा रंग का धब्बा बनेगा जहां पानी से 1-2 इंच ऊपर जो हमारा धान का पौधा है, जो पत्ती के नीचे जो कवर किया हुआ है डंठल, वो आवरण जो है वह शीत जो है उसको उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। बाद में यह क्या होता है कि पूरे पत्ती पर झुलस जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की आवरण पर भूरे रंग का धब्बा अगर आपको दिखाई दिया जाए तो आप समझ लें कि वो प्रारंभिक अवस्था है शीत ब्लाइट रोग का, और अगर आप उसका उपचार करते हैं उसी समय तो आप इससे बच पाएंगे, इस रोग से अपने धान के फसलों को बचा पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शीत ब्लाइट रोग है ये हमारे धान की फसलों में फैलता कैसे है?
1: किसान भाई आप जानते होंगे कि आप जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वस्थ बीज का उपयोग करते हैं। जब स्वस्थ बीज का उपयोग किए बिचरा लगाए तो क्या करता है, कादो करने के समय जो शीत ब्लाइट का जो बीज है, इस रोग यह रोग जो है फफूंद के कारण होता है। इस फफूंद का नाम है राजेक्टोनिया सोलना है। यह फफूंद जब अपनी पूर्ण अवस्था करके फिर यह जो बीज को छोड़ देता है, उसका गोल गोल बीज होता है, जो सरसों का दाना आप जानते हैं जो बहुत छोटा होता है, उस तरह का बीज इसका होता है जो जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। जब आप कादो करते हैं तो यह बीज तैर करके ऊपर आ जाता है, सो ऊपरी सतह पर। जब आप कादुआ करते हैं उसके बाद हम वह बीज दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका भी रंग भूरा होता है, मिट्टी में गंदा पानी होता, नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में आप देखेंगे कि जब यह दाना, यह जो आपका फफूंद रोग कारक जो है, इसका जो बीज है वह पौधे से चिपक जाता है, जैसे सट जाता है तो वह अपना आपस में वह अंकुरण हो जाता है, क्यों उससे कुछ संबंध है कि उसके साथ जैसे चिपकेगा वह अपना बीज जो है अंकुरण अंकुरित करके पौधे में प्रवेश कर जाता है, पौधे की पत्ती में। जब प्रवेश करता है तो वह अंदर में पौधों के आवरण में जहाँ से पानी की सतह से चिपक गया हमारे आवरण पर शीत पर, उसके बाद वह मल्टीप्लाई करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, उसके बाद वो धब्बा का रूप में हमको उभर कर आता है। तो यह जो बीज है किसी एक पौधे में लगेगा, किसी एक धान के पौधे में, फिर दूसरे पौधे में कैसे कंटामिनेट होगा कैसे, तो एक पत्ती के द्वारा जब वृद्धि हो गया, पत्ती में जब यह लक्षण आता है दूसरे हमारे पौधे में जो पत्ती है उससे चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, आपस में मिला हुआ रहता है, तो उस पत्ती में चला जाता है, उस पत्ते से उस पौधे में चला जाता है, फिर यह इसका वृद्धि जो होता है उसी पौधे से, आक्रांत पौधे जहाँ पर हम लगाए हैं, आक्रांत पौधे से अगल बगल फैलेगा। यह हवा द्वारा नहीं फैलता है, यह कंटेक्ट से फैलता, आपस में संपर्क से फैलता है। एक एक लक्षण यह है फैलने का, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, जहां लगा है जहां यह लक्षण दिखाई पड़ा उसी के आसपास यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा बात क्या होता है कि हमारे किनारे जो घास है, हमारे आर जो बंद है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, उस पर घास बहुत होते हैं, उस घास में भी ये पलते हैं और वह घास आक्रांत होता है। घास हमारा जो है पौधे से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ जल्दी जल्दी फैला जाता है, जिसको आर के किनारे फैलता है। उसमें भी एक देखते हैं आर का जो पूर्वी आर है वहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी आर है उसके तरफ जो पौधे हैं उस पर ज़्यादा होता दिखाई पड़ता है यह रोग। क्यों ऐसा होता है कि 9 से 10 बजे तक पश्चिमी किनारे में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है और पूर्व

0: किनारा जो होता है हमारे प्लॉट का, वहाँ धूप जल्दी उग जाता है, मॉइस्चर कम देर रहता है, इसलिए वहाँ कम दिखाई पड़ता है। जबकि हमारा पश्चिमी किनारा जो होता है, कोई भी बंड के किनारे जो पौधे हैं, वहाँ पर यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह रोग जो किनारे में दिखाई पड़ता है ड्यू टू घास, जैसे घास का अगर हम सफाई सुथरा करते रहें तो हमें यह रोग पश्चिमी किनारे की ओर नहीं बढ़ता है। और यह खेत के अगर 10 हमारे 1 बीघा खेत है या 10 कट्ठा खेत है या 5 कट्ठा जो भी हमारा खेत का क्षेत्र है, वहाँ यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ तहाँ आपका पौधे से संसर्ग में जहाँ बीज लग गया इसका आपके फफूंद का, वहीं पर यह रोग फैलता है। यह किसान भाई इस लक्षण यही है। अगर यह जब आप पहचानेंगे तो एक डंटल तोड़ लें बीच बीच से और उसके डंटल को आवरण पर देखें भूरा रंग का है कि नहीं।
1: अच्छा, तो ये बातें हो गई है कि यहाँ पर ये कैसे फैलता है ये रोग, और इसके बाद डॉक्टर साहब जब रोग फैल जाता है तो ज़रूरी होता है उसका उपचार करना। और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का उपचार करना या फिर इसे स्थायी रूप से इसे बंद करना या फिर इसे छुटकारा पाना एक चुनौती भरी जो समस्या है वो उभर कर आ चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इससे कैसे बचे और इस रोग का उपचार कैसे किया जाए।
0: किसान भाई, आप जानते हैं कि जब भी रोग लगता है तो हमें उपचार करना चाहिए या हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन पूरा पूरा ले सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे किसान भाई उसको पहले तो अपने जब वह खाद बीज घास निकालने के बाद, जैसे 30 से 35 दिन में घास निकालते हैं हम लोग रोपाई के बाद, उसके बाद हमें 15 से 20 रोज जो है में खेत घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे डंटल पर जो आवरण जमीन जो पानी की सतह से जो हमारा डंटल है वहाँ उसको निचोड़ करके तोड़ करके देखिए कि उस पर धब्बा हुआ तो नहीं पड़ा है। अगर भूरे रंग का धब्बा आप देखते हैं और अधिक संख्या में देखते हैं तब खेत में हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है। अगर भूरा धब्बा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वह आप खेत जो है रोपनी से 60 दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए, जब वह आक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो जब किसान भाई यह धब्बा देखते हैं पत्ती पर तो क्या कहते हैं कि हमें खेत में रोग लग गया, लगता है वही गलसा है। सही, गलसा तो है, अगर हम जैसे पत्ती पर जो लक्षण बताए भूरा रंग का चमकीला भड़कदार धब्बा दिखाए पत्ता पत्ती पर, तो नीचे की ओर से होता है ना कि ऊपर की ओर से होता है। तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा हमारे पत्ती में क्या क्या लक्षण आया है कि नहीं आया। तो उस अवस्था में अगर धब्बा हमें दिखाई पड़े तो किसान भाई दवाई का छिड़काव करेंगे। इसमें हमें दवाई का छिड़काव करने के जिस खेत में बार बार होता है, इसकी हम लोग ये भी कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बार बार हो, साल में हमेशा होता हो, आता रहे यह रोग, तो आप पौधे की रोपाई जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर करें। जितना सघन करेंगे उतना रोग फैलेगा, उतना रोग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम रोप की बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में, तो हमें हवादार मिलेगा। जब हवादार मिलेगा तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है वातावरण जो ये है वो पानी की मात्रा उस धान के आसपास कम होगा, जहाँ पर वो लगा हुआ नीचे जमीन के सतह पर, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम हुआ तो वहाँ रोग नहीं होगा। जहाँ सघन रोपाई किए आपने तो वहाँ ह्यूमिडिटी जो पानी की मात्रा है वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहा, तो वहाँ पर रोग फैलने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए रोपाई उस खेत में थोड़ा दूरी दूरी करें जिससे कि लाइट रोशनी जल्दी जाए, और लाइन स्विंग करना जरूरी है। जैसे आप पूरा पश्चिम लाइन स्विंग किए तो आपको फायदा क्या है कि धूप सभी पौधे में बराबर पड़ेगा और वहाँ पानी की मात्रा जल्दी से उड़ जाएगा। उस वजह पानी की मात्रा कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाष्प वहाँ पर कम रहेगा, तो रोग कम होगा। अगर रोग लग ही जाता है, लग गया है, तब उपचार करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर दो दवाई बाजार में हम लोग ज़्यादा, ये दवाई एक है और उस बाज़ार में दो नाम से सीथमार आप लोग सुने होंगे। सीथ मतलब है सीथ ब्लाइट से नाम रख के रखा उन्होंने, सीथ मार बोलते हैं मारने वाला। तो इस सीथ मार जो दवाई है बहुत यह केमिकल नाम अलग है, वैलिडामाइसिन कहते हैं हम लोग इसको, वैलिडामाइसिन। ये वैलिडामाइसिन जो केमिकल है, इस वैलिडामाइसिन का उपयोग करना चाहिए। बाजार में भिन्न भिन्न तरह के, पहले तो मैं जानता था दो ही दवाई, राइजोसिन नाम करके एक दवाई आता था, इसी का नाम है बाजारू नाम राइजोसिन है। तो कहने का मतलब ये तरह का वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है। वैलिडामाइसिन का उपयोग करने के लिए हमें क्या

0: करना होगा कि हमें 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसी जगह छिड़कना है जहां हमें रोग दिखाई पड़ता है, और सभी जगह नहीं। अगर ये हवा वाली रहती, हवा द्वारा फैलता, हम पूरे बोलते हैं पूरे प्लॉट में छिड़क दीजिए, पूरे खेत में छिड़किए, लेकिन यह छिड़काव इसलिए हम लोकलाइज करते हैं, उसी जगह करते हैं कि जहाँ उससे बढ़ेगा नहीं
1: जी।
0: हाँ, किसान भाई के साथ कंसेप्ट यह है कि कोई भी दवा को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, तो हमको उसी जगह छिड़कना है दवाई, सभी जगह नहीं, जहाँ हो वहाँ छिड़केंगे तो वह बढ़ेगा नहीं।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जब आप रोपाई करते हैं तो समय समय पर आकर आप देखें कि कहीं धब्बे तो, यानी कि भूरे रंग के धब्बे तो नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप अगर पौधों की रोपाई करते हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों को रोशनी मिल पाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने शीत मार एक दवा बताई है, वो भी आप बाज़ार से लेकर जो फसलों हैं, धान की फसलों पर दे सकते हैं। हाँ, वेलिडामाइसिन जिसे कहा भी जाता है, यानी कि शीत मार को वेलिडामाइसिन भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी से आशा करते हैं कि आज जो भी सुझाव मिले हैं आपको डॉक्टर एपी भगत जी से, आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनाकर अपने धान के फसलों को शीत ब्लाइट से बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी किसान भाइयों आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PMsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।

0: हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियां या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहाँ पर भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती? हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5,00,000-8,00,000-6,00,000 पहुँच गया है। तो अगर 5,00,000 किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है।

0: क्यों आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर, आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
0: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए, और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी NABARD जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन NABARD उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं, जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं। क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान, क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं। 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में, इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं, और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं, उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस NABARD की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी NABARD ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
0: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें कि सरकार 50% से लेकर 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर शुरू करेंगे तो उनको लगे

0: दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
0: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को इंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों इंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें ज़रूर मुनाफा होगा।
1: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
0: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला, बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
0: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जानते होंगे कितना अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी, और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो

0: लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा है तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
8: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। यहाँ कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से राजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, राजंतीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी, ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास ना जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर ना रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों

पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन

के सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल NS सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके

0: बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है। राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए। इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सुमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले।

0: असली ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले।

0: ఆదల్లాని
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
2: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

0: टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
0: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में

और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल हैं। एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। और आज फिर से आप सभी के बीच लेकर आ चुकी हूँ, खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप जानते हैं खेती से जुड़ी उन्नत बातें। तो दोस्तों और हमारे किसान भाइयों, हर रोज़ हम अलग अलग फसल को लेकर आते हैं आप सभी के बीच, चाहे वो गेहूँ की बात हो, चाहे वो जो दाल है उनकी बात हो, या फिर चाहे वो चावल धान फसल की बात हो, वो लेकर आते हैं हम। लेकिन जहाँ तक फलों की बात होती है, तो भाई फल जो है वो हमारे हेल्थ से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदे लेकर आते हैं, और फल मौसमी भी होते हैं। फिलहाल अगर अनानास की मैं बात करूँ, तो ये हर मौसम में आप सभी के लिए उपलब्ध है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, आज हम बात करने वाले हैं अनानास के बारे में, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी। ख़ास तौर पर आज जो हमारा विषय है, मैं बता दूँगा आप सभी को, टिश्यू कल्चर विधि से अनानास के पौधों का उत्पादन। जी हाँ, ये है हमारा विषय, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तुषार रंजन जी। मैं आपको बता दूं कि ये सहायक प्राध्यापक हैं, साथ ही कनीय वैज्ञानिक भी हैं, और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। ये बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर से हैं, और आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, और अनानास से जुड़े बहुत सारी बातें भी जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वैसे तो मैंने अभी कहा भी कि अनानास के बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्थ के लिए, हमारे बहुत फ़ायदे लेकर आता है अनानास, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं हमारे लिए आज खास तौर पर, तो बताएं कि अनानास के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
1: अनानास की अगर हम लोग बात करें, तो ये ना ही सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके काफ़ी औषधीय गुण भी होते हैं।
0: जी,
1: ये अनानास का के फल का सेवन हमारे भूख को बढ़ाता है।
0: अच्छा,
1: एंड साथ ही साथ ये हमारे पाचन में भी काफी मददगार साबित होता
0: है। ऑब्वियसली जब ये भूख को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली डाइजेशन भी हमारा अच्छा ही होता होगा।
1: यस, एक्चुअली इसमें बहुत सारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफिशियंट बनाते हैं, और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारा अनानास विटामिन से काफी भरपूर होता है।
0: अच्छा।
1: और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फास्फोरस, जिंक की भी काफी प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। सो और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफी ज्यादा होते हैं, जो कि हमारे एंटी एजिंग के रूप में ये काम करते हैं, और ये हमें बीमारी से लड़ने में
0: मतलब हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो ये बनाए रखते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं अनानास के। वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे अनानास पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसमें जो है एक वाटर लेवल भी उसका मेंटेन रहता है, इसे खाने से, चाहे आप गर्मी में खाओ, सर्दी में खाओ, तो ये आपको बहुत ही अच्छा जो पोषण है वो देता है, साथ ही फिट रखता है आपको,
1: काफी हाइड्रेटेड
0: रहते हैं। फिलहाल जब गर्मी की बात आती है, तो हर जगह इसका जो जलवा है वो दिखता है। और अब आते हैं हमारे विषय पर, यानी कि टिश्यू कल्चर विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अनानास की टिश्यू कल्चर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है।
1: देखिए, यहाँ दो तरह की बातें हैं। एक पहली बात, जितने भी हमारे, अगर हम नॉर्मल प्लांट की बात करें, जैसे हमारे पास धान होते हैं, गेहूं होते हैं, मक्का होते हैं, ढेर सारे फल भी होते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें, जो कि बीज रहित पौधे होते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे अगर हम अनानास की बात करें, तो इसमें कोई बीज नहीं होता है,
0: तो फिर इसे कैसे लगाया जाता है?
1: यही एक वजह है कि हम लोग जैसे हम लोग केले की खेती करते हैं, तो केले के साइड से एक छोटा सा बच्चा, जिसको हम लोग शक्कर पौधा बोलते हैं, वो निकलता है हमारे बगल से, और उसको हम लोग यूज करते हैं केला की खेती करने के लिए।
0: हमने वो बचपन में देखा है कि जब केले के किसी भी पार्ट को आप ले लो, और वो छोटे बच्चे भी वो काम कर सकते हैं, तो वो हमने बचपन में देखा था।
1: अनानास में भी वैसा ही कुछ होता है, इसमें भी बगल से एक छोटे से प्लांट निकलते हैं, मदर प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, मातृ पौधे से एक छोटा सा बच्चा, जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं विज्ञान में, जिसको हम लोग वैज्ञानिक टर्म, जिसको हम लोग शक्कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: ये शक्कर होता है, इसको हम किसान बंधु यूज करते हैं, और इससे पौधे निकलते हैं।
0: अच्छा।
1: तो पहली बात, इसमें बीज नहीं है,
0: तो बीज रहित
1: पौधा है ये, तो इसीलिए हमें इसके पार्ट्स, इसको, इस प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर के किसान बंधु इसको खेत में लगाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हमारे पास दूसरी वजह ये चीज है, जो भी हमारे पाइनएप्पल के पौधे होते हैं, अगर हमारा मातृ पौधा है किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी जीवाणु विषाणु कोई भी बीमारी से अगर वो ग्रसित है, अगर उस पौधे से निकला हुआ बच्चा भी ऑफकोर्स वो भी हमारा बीमारी से ग्रसित होगा। अगर उसको किसान बंधु अगर खेत

0: लगाते हैं तो वो किसान बंधु के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है।
1: जी जी।
0: तो ये हमारा टिश्यू कल्चर विधि जो होता है वो हम लोग पाइनएप्पल के किसी भी एक छोटे से अंश को लेते हैं हम लोग और हम लोग अपने पोषक तत्व में अपने प्रयोगशाला में पोषक तत्व में पे उसके ऊपर रख करके काफी ही स्वच्छ वाले वातावरण में उसको रखते हैं और उस पर फिर हम लोग उससे एक अंश से पाइनएप्पल के एक छोटे से टुकड़े से हम 100-200 प्लांट रेडी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से डिजीज फ्री रोग रहित प्लांट। तो यही एक विशेषता है कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जितने भी पौधे पाइनएप्पल के तैयार किए जाते हैं अनानास के वो बिल्कुल रोग रहित होते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है और टिश्यू कल्चर के बहुत ये अच्छे फायदे हैं क्योंकि इससे पता चल जाता है हमारे किसान भाइयों को और ये विश्वास भी हो जाता है कि अगर टिश्यू कल्चर पौधा है तो ये रोग रहित ही होगा, इस पौधे में कोई रोग नहीं होगा। तो आप भी अगर पौधे लगाना चाहते हैं अनानास के तो टिश्यू कल्चर पौधे ही लगाएं। फिलहाल यहाँ पर अब नॉर्मल प्लांट की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब और टिश्यू कल्चर प्लांट की बात करते हैं। अभी तो आपने बताया कि उसमें रोग रहित होते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट और नॉर्मल प्लांट, तो फिर से एक बार हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि नॉर्मल प्लांट और टिश्यू कल्चर प्लांट में क्या अंतर होता है।
0: जैसे हम लोग नॉर्मल प्लांट की बात, जैसे मैंने अभी आपसे खुद ही बताया, अभी आपको खुद ही बताया हमने कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में अगर हम लोग बात करें तो किशनगंज का एक जिला है अपना, हमारा किशनगंज जिला है जो कि पाइनएप्पल में का सबसे ज्यादा पैदावार करता है बिहार में। और किशनगंज की अगर हम लोग बात करें तो पोठिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज ये कुछ ऐसे एरिया हैं, इलाके हैं जहाँ की किसान बंधु इसको अनानास की खेती
1: कर सकते हैं।
0: तो वहाँ पर यहाँ के किसान बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक आप बोल सकती हैं कि इनको बहुत बड़ा एक परेशानी फेस करना पड़ता है कि इनके लिए जो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल होते हैं, जो भी अनानास के लिए प्लांटिंग मटेरियल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मातृ प्लांट होते हैं, मातृ प्लांट के बगल से वो निकलते हैं, तो ये किसान भाई जो बगल से बच्चा प्लांट निकलता है उसको यूज करते हैं।
1: अच्छा।
0: ये इसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, इसके लिए हमेशा उतने प्रचुर मात्रा में ये बच्चे प्लांट शक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं ये उन किसान बंधुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। और इसके साथ साथ हमारा टिश्यू कल्चर जैसा कि हमने आपको बताया एक अंश लेकर के आप उससे 100-200-500 प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। तो एक तो पहला हमारा मोटो है कि टिश्यू कल्चर से जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांट हो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं अपने किसान बंधुओं के लिए। दूसरी बात जहां तक हमने बताया आपको नेचुरल प्लांट क्योंकि ये तो हमारे फील्ड में तैयार होते हैं, तो फील्ड में तैयार होते हैं तो हमारा फील्ड ढेर सारे जीवाणु विषाणु के से भी प्रभावित होता है हमारा अनानास का पौधा। तो जो नेचुरल प्लांट होते हैं उसमें डिजीज ढेर सारे बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और अगर किसान बंधु उस बीमारी वाले मातृ प्लांट से निकले हुए पौधों को अगर खेत में लगाते हैं तो ये उसके लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए साबित हो सकता है। तो यही एक हमारे टिश्यू कल्चर और नेचुरल प्लांट में यही डिफरेंस है कि हमारा टिश्यू कल्चर के द्वारा जितने भी रेज्ड प्लांट होते हैं, जो भी प्लांट हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर तकनीक से बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लांट हम लोग तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पाइनएप्पल की बात करें तो इनकी 12 से ऑलमोस्ट 12 महीने के करीब इनके ओवरऑल क्रॉपिंग सिस्टम के 12 महीने करीब लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम उतने दिन तक इंतजार करें तो ये हमारे लिए बहुत ही किसान बंधुओं के लिए बहुत ही एक ढंग से बोला जाए तो ये उनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है ये प्लांटिंग मटेरियल। तो इसीलिए हम लोग टिश्यू कल्चर विधि से ऑलमोस्ट हम बहुत ही मात्रा में बहुत काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हम लोग पौधे तैयार करते हैं और अपने किसान बंधुओं को ये डिजीज फ्री जिसको हम लोग रोग रहित बोलते हैं, रोग रहित प्लांट को हम लोग
1: लाते हैं। तो ये तो बात हुई अंतर की और फायदों की बात जहाँ तक आपने बताई, क्या इसके अलावा भी और कुछ फायदे हैं?
0: नहीं, यही सब कुछ फायदे हैं जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी ये काफी इसमें वाटर की काफी मात्रा होती है तो ये हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रेटेड रखते हैं और ये इसके खाने से हमारे स्किन भी काफी ग्लो करते हैं और इसमें एंटी एजिंग फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को हमें किसी भी अगर हम लोग इसे डेली कुछ प्लांट अगर सेवन करें तो ये हमारे इसमें विटामिन सी की भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और जैसा कि हमने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं।
1: तो खाने में ये जितना ही टेस्टी लगता है यानी कि इसका जो स्वाद है वो सबसे अलग है फल में, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है इसका अनारास का। तो जहाँ तक किसान भाइयों की बात है तो वो भी जी हाँ, बाज़ार में इसकी बहुत मांग है, आप इसके पौधे लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, फिर आप जहाँ भी इसे बेचना चाहते हैं अपने अगल बगल के बाज़ार में तो आप ले जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत होती है इस बात को जानने की कि

आपने जो प्लांट लिए हैं, जो छोटे पौधे लिए हैं, जो आप लगाना चाहते हैं, क्या वो रोग रहित है? तो इसलिए टिश्यू कल्चर पौधे को ही आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, यानी कि प्राथमिकता दें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छी जानकारी आज लेकर आए थे हमारे साथ तुषार रंजन जी, और इसके साथ ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी। 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए आरजे अनु के साथ। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई

गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे

0: काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं?

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का, और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है, उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं। जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है, तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही

0: समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके। लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
1: जी सर। सर प्राकृतिक खेती के आधार क्या है?
0: देखिए इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, या बीजामृत हुआ, या दशपर्णी अर्क हुआ, या नीमास्त्र हुआ, या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी अर्क या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है? ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं, लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
1: जी सर। आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं?
0: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है। एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद, जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा। दूसरी बात सह फसली खेती की जाती है। सह फसली इसमें जो खेती की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सह फसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सह फसली का इसमें ज्यादा बल होता है, सह फसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं, और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं, और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वो उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन। तो आच्छादन

0: धन पर भी हम बल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं?
0: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं, तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन, इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप में कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताज्जुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इसका प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप में जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें, और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी।
4: नहीं बता।

0: शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएं भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह, ख़ासतौर पर मैंने देखा इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
3: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
7: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे

0: स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
1: अच्छा।
0: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा मैम फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
0: ज़्यादा हो, विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं
1: जी,
0: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है, फ्रूट है, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
1: अच्छा।
0: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए
1: जी,
0: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
1: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे

0: इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
0: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है, और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा, जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे, 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं, मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती।

0: जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबीकॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है एवं बेबीकॉर्न की खेती से पौधे से में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुना चाहिए। मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू मटर राजमा चुकंदर प्याज लहसुन पालक मेथी फूलगोभी ब्रोकली मूली गाजर इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं ग्लैडियोलस लगा सकते हैं गेंदा लगा सकते हैं इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज

0: होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगाध प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुँचाएँ वहाँ पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

हाय, मैं अजय कुमार 90.8 एफएम ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो

0: आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में कुछ, पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी,
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया, लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए, और पालक

0: मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे। इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी। उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर. आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में. एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं. जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में. मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं इस विषय पर. तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है.
1: धन्यवाद. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है. हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है. एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है. और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधु का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है. यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे. अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है. एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूँ के भांति धान को उगाया जाता है. साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं. एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है.
0: तो इस तरीके से ये अलग है. और डॉक्टर साहब, धान, इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें.
1: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं वो पानी भरी और वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं. उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं. इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है. जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने

0: रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी नर्सरी नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोपिक धान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं, जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है। और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80 से 85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
1: तो ये तो बातें हो गई हैं, हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तरफ से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितने बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह हिलाएं। इससे स्वस्थ एवं भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ और स्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है, उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद एक तिहाई जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नाइट्रोजन की शेष दो तिहाई मात्रा को बराबर बराबर भागों में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
1: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों

0: के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
1: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और के रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुदके तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इमीडा क्लोरपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा वयस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरॉन 3G या कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G

0: निशान बन जाता है आवश्यकता अनुसार। क्विनोल फॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है। यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झोलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी की कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें। और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की जो आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग 1 माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्तुत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
2: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।

0: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणें की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपशील प्रजातियों में गौतम, ऋचार्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है, तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपशील किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है, इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170-175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिछारिया है, यह बौना प्रभेद 155-160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज क्षमता 55-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है, यह बौना प्रभेद बोरों में 160-170 दिनों में पककर तैयार होती है, इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज लगभग 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे, कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
1: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10-15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80-100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरो से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटें या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेष्ठ होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
0: जी तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की?
1: बोरो के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को एक हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35-40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएँ तो वहीं पुनः रोपनी कर देना चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं सस्क्रियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं।

0: चाहे हरी खाद का प्रयोग, चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% ईसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.125 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बालू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडोल कीटनाशक धूल की भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं और प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचाए जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज के गिरने पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है, लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुनें और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कर्षक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी लेके हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं। और ये इस तरह का जो अधिनियम है ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप उसको ले सकते हैं, तो इसके लिए अलग से अधिनियम में इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है, तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवंशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवंशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्सर है, तो ये उसको भी एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
2: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं, और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है, तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबी अवधि के हैं, सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
2: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं, उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला एक है कि एक खेत में से दूसरे खेत के एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो, तो दूसरे इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो

0: नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी, एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो
1: जी
0: उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूंकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात ये है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए, या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप

0: उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग है तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो एक कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है, तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें, ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर।
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि इसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें, और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें, ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे, फिर थ्रेश करेंगे, उसको अच्छे से सुखा लें, जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप, या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद, उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की, तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं।

0: होगा
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हाँ, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु जी।
1: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसे बता दीजिए।
2: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, धान बिहार की एक प्रमुख फसल है और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेके 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है
1: जी।
2: तो इसके अलावा जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है, और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही

0: भंडारण न होने की वजह से हो जाती है। जी
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो, वो है नमी। तो जैसा हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है, तो
1: अच्छा
0: उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे ख़राब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर हम देखें तो वो खेत में खड़ी फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, भंडारण में उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फफूंद एक बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत सारी फफूंद होती हैं जो भंडारण में के समय में धान को हम ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे घुन लग जाता है, या कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू का होता है, और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में ख़राब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी
0: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे कि धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी ना हो जिस वजह से फफूंद या कुछ और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो ना पनपे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
0: जी बिल्कुल, नमी देखिए, जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए। दूसरे, जो बीज बीज की खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें। क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं, इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ़ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको, उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें। और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज बीज को अगर हमें भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पे उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से, जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
1: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी

0: कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें।
1: जी बिल्कुल। धान का भंडारण की जब आप पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है, तो उसके बाद फिर आता है कि धान के भंडार जहाँ पे करना है भंडारण, वो जगह का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमी ना आती हो, थोड़ा ऊंचा उसका फर्श हो, उस तरह की
0: मतलब
1: हम
0: जमीन से थोड़ा ऊपर।
1: जमीन से थोड़ा ऊपर रहे और नमी वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसमें देख लें, उस कमरे में, जिस कमरे में भी आपको भंडारण करना है, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों। खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम ज़रूरत के हिसाब से उनको जब ज़रूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पे हमें धान का भंडारण करना है, पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से, अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा और वहाँ पे साफ़ सफाई कर लें। बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखें कि जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का, या जो आपको बेचना है बाद में, जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किसमें धान को
0: कंटेनर।
1: रख,
0: हाँ
1: कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप, अगर आपके जूट के बूरे बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें। या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका
0: जी,
1: इस्तेमाल
0: गांव
1: कर
0: में हमने
1: सकते हैं।
0: देखा है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं।
1: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर
0: और
1: सकते
0: आजकल
1: हैं।
0: स्टील के भी आ।
1: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है, बिन है, उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे, तो उसकी एक परत लगा देंगे, तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा
0: नहीं
1: नहीं
0: रहेगा
1: रहेगा।
0: जी।
1: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खौलते पानी में डाल दें।
0: अच्छा
1: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म
0: सूक्ष्म
1: जीव
0: जीव वो
1: होंगे
0: मर
1: वो ख़त्म हो
0: जाएंगे।
1: जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है और सुखाने के बाद उसका उनको उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
0: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस
1: हाँ
0: बोरों का।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से, जैसे मैंने बताया खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है, टंकी होता है, उसमें एक एक लेयर डालते जाएं।

0: और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है
0: हाँ,
1: भंडारण।
0: आयुर्वेदिक गोलियां भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो इस हमें,
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
0: हाँ, कर्पूर की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियां हैं, माचिस की डिब्बियां हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये माचिस की तिल्लियां ले लें, तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
0: बीच
1: डाल
0: बीच
1: सकते
0: में
1: हैं।
0: अगर टंकियों में रखेंगे तो, क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो
1: बाद
0: कीड़ों
1: में
0: को लगने से बचाता है,
1: जी
0: और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है।
1: जी
0: तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में। तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
0: जी, किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन
1: रेडी
0: हम
1: टू फूड यार,
0: रेडी टू, हाँ मतलब वो खाने के
1: रेडी
0: लिए,
1: टू ईट कह सकते हैं
0: रेडी
1: उसे।
0: टू ईट, तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहाँ पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट, उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा।
1: बिल्कुल
0: तो बीज में भ्रूण, सही भ्रूण का होना बहुत ज़रूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका
1: सही हो गया।
0: सही नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई के एक चीज़ और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं उसमें। फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें, तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई कि
1: धान के फसल
0: धान
1: की,
0: के
1: दाने की।
0: भंडारण के लिए जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पे, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं, और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से
1: बच सकते हैं
0: इससे बीज को हम बचा सकते हैं।
1: जी।
0: और इस

0: इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में, जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था, वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी फ्यूमिगेशन भी किया जाता है, जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का। उसके लिए धूमीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया, जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं, और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि धूमीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें, और धूमीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें, और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल खराब नहीं होगा, और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा
1: सुरक्षित
0: रहेगा,
1: रहेगा जी
0: सुरक्षित भी रहेगा।
1: जी तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए अपने इन धान को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरी टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक

रसोई की व्यवस्था करे तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी, ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गाँव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश

मिल चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानी

0: कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से डीपीएस की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरे टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं। आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी

0: दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती जरूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात की AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं? मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट GPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: मतलब अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
0: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है, तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा, और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके, इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई

0: इस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है,

0: आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल सस्मट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा
1: सुरक्षित
0: मजबूत
1: रहते
0: रहेगा और
1: हैं।
0: सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा एआई जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है। हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पे जो खेती कर रहे हैं वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है, और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया
0: बिल्कुल
1: जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: और एआई और कृषि मशीनें, ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा।

0: क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है। और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पे की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल्ड लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में 20 की बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AI कंट्रोल कर लेगा। और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो
1: खेती हो
0: रही
1: रही
0: है,
1: है।
0: जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये AI आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम, तो ऐसी स्थिति में AI को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने AI के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है, या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो AI के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। AI यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में मांग आने वाली है। AI चूंकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पे करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, AI आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियाँ जो दी जाती है, तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब AI बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये AI अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या AI से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए AI एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। AI के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के

0: तौर पे इंसान से वार्तालाप करते हैं। अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में AI को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर AI के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से AI का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप
1: धीरे धीरे
0: AI का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास AI का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी AI के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप AI वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए AI से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा,
1: जी
0: बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी
1: जी
0: कि
1: जी
0: जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लरिकल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया, क्या हुआ जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
1: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं। और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
0: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
1: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
0: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो।
1: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार

0: बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है। इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगाध प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए अवधि हम अगाध प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगाध प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंदनाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75:60:20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन

0: इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है जी। इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफी लाभदायक है।

0: खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: हाय, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर ऐसे नॉर्मल

0: अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि। ये सब है, जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
0: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे। इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां दी, उनमें से बहुत सी जानकारियां फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: उन्नत कृषि। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर। आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में। मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं इस विषय पर। तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है।
1: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है और

इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधु का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि

0: जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है, तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
1: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
0: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं, वह पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं, उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं, जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है, और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है, और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
1: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है, और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के में और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितनी बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह लाएँ। इससे स्वस्थ भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ साफ अस्वच्छ अटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज

0: वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है, उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद एक तिहाई जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नाइट्रोजन की शेष दो तिहाई मात्रा को बराबर बराबर भाग में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
1: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुदके तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमिडाक्लोपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा व्यस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार्ड जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार्ड का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरोन 3G या कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है, यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं, ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है। आवश्यकता अनुसार किनोल फॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है, यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी क्योंकि कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग 1 माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें

0: नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दौरान में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्कृत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
0: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणें की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यूनतम संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30 से 50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपजशील प्रजातियों में गौतम, ऋचार्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है। तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपशील किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खरी तथा हरी होती है। इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170 से 175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचार्या है। यह बौना प्रभेद 155 से 160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज क्षमता 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है। यह बौना प्रभेद बोरों में 160 से 170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की। अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे, कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए।
0: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी

0: में और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं और खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटें या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
0: बोरों के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को एक हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएं तो वहीं पुनः रोपनी कर देना चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25 से 30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं सस्क्रियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह जो रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बारू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो उसमें पौधों की सिंचाई के समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों

0: सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियां पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा, जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच, हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है। लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं, उसकी खेती करके, बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार, ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएं हैं, इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है, तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को, अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी ले के हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं। और ये इस तरह का जो अधिनियम है, ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2: उन्नतशील बीज, जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवंशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें, तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है, तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवंशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्सचर है। तो ये उसको भी एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
2: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान

0: वायु के बीच में प्रचलित हैं। और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है। तो किसान भाई, जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं। सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं, जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
0: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला एक है कि एक एक खेत में से दूसरे खेत के एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी, यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरे, इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे, अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी, एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई, एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें

0: बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात यह है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं?
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊँचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो

0: उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं
1: जी। और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि इसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे फिर थ्रेश करेंगे उसको अच्छे से सुखा लें। जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हाँ, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है, और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें, और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र, और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु जी।
1: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसे बता दीजिए।
2: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं धान बिहार की एक प्रमुख फसल है,

0: और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेके 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
1: जी
0: तो इसके अलावा जो जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही भंडारण ना होने की वजह से हो जाती है।
1: जी
0: जी
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो वो है नमी। तो जैसे हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है, तो
1: अच्छा
0: उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे खराब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर हम देखें तो वो खेत में खड़ी फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, भंडारण में उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फफूंद एक बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत सारी फफूंद होती हैं जो भंडारण में के समय में धान को हम खराब कर सकती हैं। इसके अलावा कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे घुन लग जाता है या कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू का होता है और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में खराब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी
0: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे कि धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा नमी ना हो जिस वजह से फफूंद या कुछ

0: कुछ, और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो नापन पे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
1: जी बिल्कुल, नमी देखिए जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: दूसरे जो बीज की, खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं। इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ़ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें, और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज को अगर हमें भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पर उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
0: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें।
1: जी बिल्कुल, धान का भंडारण की जब आप, पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है, तो उसके बाद फिर आता है कि धान के भंडार जहाँ पे करना है भंडारण, वो जगह का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमी ना आती हो, थोड़ा ऊंचा उसका फर्श हो, उस तरह की,
0: हम मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर,
1: जमीन से थोड़ा ऊपर रहे और नमी वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसमें देख लें, उस कमरे में, जिस कमरे में भी आपको भंडारण करना है, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको, दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों, खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम ज़रूरत के हिसाब से उनको जब ज़रूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पर हमें धान का भंडारण करना है, पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से, अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा और वहाँ पे साफ़ सफाई कर लें, बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या

0: जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा, तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखेंगे, जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का, या जो आपको बेचना है बाद में, जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किसमें धान को
1: कंटेनर,
0: रख,
1: हाँ
0: कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें, तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप अगर आपके जूट के बोरे बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें, या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका
1: जी,
0: इस्तेमाल
1: गांव
0: कर
1: में हमने
0: सकते
1: देखा
0: हैं।
1: है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं,
0: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर
1: और
0: सकते
1: आजकल
0: हैं।
1: स्टील के भी है।
0: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है, बिन है, उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे, तो उसकी एक परत लगा देंगे, तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा
1: नहीं
0: नहीं
1: रहेगा
0: रहेगा।
1: जी।
0: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खौलते पानी में डाल दें।
1: अच्छा,
0: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म
1: सूक्ष्म
0: जीव
1: जीव वो
0: होंगे
1: मर
0: वो ख़त्म हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसका उनको उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
1: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस
0: हाँ,
1: बोरों का।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से, जैसे मैंने बताया, खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है, टंकी होता है, उसमें एक एक लेयर डालते जाएं और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते
1: और
0: हैं।
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है
0: हाँ,
1: भंडारण।
0: आयुर्वेदिक गोलियां भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो इस हमें
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
0: हाँ, कर्पूर की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियां हैं, माचिस की डिब्बियां हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये माचिस की तिल्लियां ले लें, तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
0: बीच
1: डाल
0: बीच
1: सकते
0: में अगर टंकियों में रखेंगे तो, क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो
1: बाद
0: कीड़ों
1: में
0: को
1: जी।
0: लगने से बचाता है, और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है।
1: जी
0: तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
0: जी, किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन हम
1: रेडी टू फूड यार,
0: रेडी टू, हाँ, मतलब वो खाने के
1: रेडी
0: लिए,
1: टू

0: ट्वीट कह सकते हैं,
1: रेडी टू ईट, तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहां पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट, उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा। तो बीज में भ्रूण सही भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका सही नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई एक चीज और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसके उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं। उसमें फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई
0: धान के फसल,
1: धान के भंडारण के लिए जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पे, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से इससे बीज को हम बचा सकते हैं
0: जी।
1: और इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी कर, फ्यूमिगेशन भी किया जाता है जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का, उसके लिए धूमीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं। और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि धूमीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें, और धूमीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा
0: सुरक्षित रहेगा,
1: सुरक्षित भी रहेगा
0: जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए

भोजपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से डीपीएस की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरी टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में एनएच के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन। और साथ ही हर रोज़ की तरह हम एक और खास विषय लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हाजिर हैं, वो है हमारा धान में समेकित कीट प्रबंधन। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर किरण कुमारी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि धान जो है, अगर खाद्यान्न की बात करें, उसमें प्रमुख फसल है। हमारे बिहार की बात करें तो लोग जो है चावल बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो जहां तक बात होती है खेती की, धान की खेती उसी अनुसार करना होता है जहां पर मांग कितना है, जितना मांग हो उतना ही खेती हो। तो हमारे बिहार में इसका मांग ज़्यादा है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत मात्रा में की जाती है। और जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो ज़रूरी होता है कि हम अपने फसल को कीट पतंगों से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे फसलों को हानि पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय, जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाज़ार में से ले

0: जाकर वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार हमारा विषय है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम से कि धान में लगने वाले हानिकारक कीट कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो सभी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और सभी फसलों की तरह धान फसल पर भी कीड़ों का प्रकोप होता है। और जो जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है वही कीड़ों के बढ़ने में भी सहायक होता है, और कीड़ों की संख्या जुलाई महीने के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर महीने में इनकी संख्या बहुत चरम पर पहुंच जाती है, और फिर नवंबर महीने के बाद से धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। धान के प्रमुख जो कीड़े हैं जो धान फसल को हानि पहुंचाते हैं वे हैं तना छेदक, केसवर्म, गंधी कीट, पत्ती लपेटक, हरा एवं भूरा मधुआ, सैनिक कीट एवं ग्रास हॉपर।
0: जी, तो मैम तना छेदक कीट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये किस प्रकार हानि पहुंचाता है धान की फसल को और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं?
1: जी, तना छेदक कीट का पिल्लू गंदापन लिए हुए उजला रंग का होता है और या पीला हरा भी होता है। तितली जो इसकी वयस्क होती है वो तितली होती है, और उसका अगला पंख नारंगी पीला रंग का होता है। उन पंखों पर एक एक काला धब्बा होता है। इस कीट के पिल्लू धान के पौधों में छेद कर उसकी गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिसे पौधे का गाभा सूख जाता है एवं खींचने से आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र भी कहते हैं। बालियां निकलने के समय भी तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, और जब बालियों की अवस्था में इस कीट का प्रकोप होता है तो बालियां केवल सफ़ेद नज़र आती हैं और दाने खखड़ी हो जाती हैं। इस कीट से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 FS का 5 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। साथ ही खेत की सफाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। जड़ की सफाई करने से भी कीट की संख्या में कमी हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप 10 या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप जिसे प्रकाश प्रपंच भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन ट्रैपों पर यानी फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप पर वयस्क मॉथ जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, इसमें फंसकर वो मर जाते हैं।
0: जी,
1: रोपनी के पहले पत्तियों के ऊपरी छोर को काटकर खेतों में रोपनी करना चाहिए, जिससे तना छेदक के कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
0: जी,
1: ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टर की दर से 3 से 4 बार धान के पत्तियों पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों का अधिक प्रकोप होने पर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
0: तो ये बातें हो गई हैं श्रोताओं हमारे किसान भाइयों तना छेदक कीट की, कि आप कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप की बात की मैम ने, और इसके साथ ही कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे ये हानि पहुंचाता है, इसके बारे में भी बात की मैम ने। मैम अब आते हैं केशवर्म, जो कि आपने बताया कि मुख्य ये कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं, तो केशवर्म कीट कैसे हानि पहुंचाता है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे ये भी बता दें, और साथ ही साथ इसका प्रबंधन हम कैसे करें?
1: जी, केशवर्म कीट इसे बुढ़िया कीट भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे बुढ़िया कीट भी कहते हैं और भनभनिया कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये पानी लगे खेतों में ज़्यादा लगते हैं और पत्तियों की हरियाली को खा जाते हैं। कभी कभी पत्तियों को लपेट कर नली जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर उसकी जो क्लोरोफिल हरियाली होती है उसको खाते रहते हैं, और ज़्यादा प्रकोप होने पर खेत बिल्कुल उजला दिखने लगता है, क्योंकि ये हरियाली खा जाते हैं इसलिए वो उजलापन जैसा हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए एक बड़ी रस्सी लेकर उसे किरासन तेल में डुबा देना।

0: चाहिए। फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर धान के खेत में एक तरफ से दूसरे तरफ तक पौधे से सटाकर चलाना चाहिए, जिससे केसवर्म कीट खेत के पानी में गिर जाते हैं, और फिर पानी को खोलकर बहा देना चाहिए, जिससे कीट वो खेत से बाहर आ जाते हैं।
1: जी, तो केशवर्म कीट के बारे में आपने जाना, और अब बात करते हैं मधुआ कीट और पत्र लपेटक कीटों के बारे में मैम, कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी, मधुआ कीट दो तरह का होता है, एक तो हरा मधुआ और दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जब इनका अधिक आक्रमण हो जाता है तो इनके पौधों से रस चूसने के कारण पौधे सूख जाते हैं। भूरा मधुआ पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं। ये पौधों की धड़ से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी नजर आती हैं और दूर से जला जैसा दिखता है, और जिसके कारण इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, यानी दोनों हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ दोनों के प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, और रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या कोई भी नीम आधारित दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्र लपेटक कीट पिल्लू, इसके पीले हरे रंग के होते हैं। ये कीड़े पत्तियों के किनारे को रेशम जैसे धागों से लपेटकर अंदर ही खाते रहते हैं, और जब इनकी अधिक प्रकोप होता है तो पौधे ठूंठ और बीमार जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सभी पौधों को ये खा जाते हैं। इस कीट से प्रभावित खेत के फसल की ऊपरी पत्तियों की कटाई कर देना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव फसलों पर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपरी छोर पर ही ये ज़्यादा खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डायमेथोएट कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 50 cc का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी, तो मधुआ कीट के बारे में आपने जाना, साथ ही पत्र लपेटक कीट के बारे में, और अंत में कुछ और कीट बाकी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं मैम। जैसे कि गंधी बग के बारे में आपने कहा था, सैनिक कीट के बारे में आपने कहा था, और ग्रास हॉपर, ये भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं धान की फसल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही हानि और प्रबंधन के बारे में जानकारी।
0: जी, अभी तक तो जो भी कीट मैंने बताया, तना छेदक, केशवर्म, मधुआ कीट, पत्र लपेटक, ये सब ज़्यादातर पौधों के पत्तियों को खाते हैं। और अगला है गंधी कीट। गंधी कीट ये जो है, जब बाली लग जाती है तो दुग्धावस्था में ही ये बालियों से उसमें जो दूध बनते हैं उस दूध को चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। और गंधी कीट जो हैं वो हरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जहाँ पर ये दानों में रस चूसते हैं वहाँ पर भूरा दाग दिखाई पड़ता है। इसे हम वो पहचानते हैं कि गंधी कीट का आक्रमण हो गया है, और इससे जो है विशेष प्रकार का दुर्गंध तो निकलता ही है, वो भी ये इसका यह पहचान है। और इस कीट से प्रबंधन हेतु नीम बीज चूर्ण का जो है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे गंधी कीट या का उसका जो है प्रबंधन हो जाता है, और बहुत प्रकोप की बहुत अधिकता में इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी,
0: और सैनिक कीट है, सैनिक कीट भी जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बाली लग जाते हैं, तब ये जो बालियों पे ऊपर चढ़कर इनको काट गिराते हैं। और सैनिक कीट जो है इनको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। इस कीट के जो पिल्लू होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क पतंगा जो होता है मौत, जिसे मौत भी कहते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। और ये जो कीट होते हैं अंधेरा होने पर पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और दिन में ये पौधों की जड़ों में या जमीन के जो दरार होते हैं उसमें छिपे

0: रहते हैं। और इसके नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का जो दानेदार कीटनाशी है उसका 2 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रास हॉपर जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं, 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका प्रकोप अगस्त से अक्टूबर महीने में देखा जाता है। ये पत्तियों को किनारे से काट कर खाते हैं। ग्रास हॉपर के प्रबंधन हेतु खेत में पानी भर देने से इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। मेढ़ की खुदाई कर देने से भी इसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो नीम बीज चूर्ण है उसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। टीन पर कोल्टार लगाकर भी खेतों में चलने से ग्रास हॉपर टीन पर वो जो कोल्टार लगा रहता है उस पर आकर सड़ जाते हैं, जिससे वो कुछ तो मतलब सटकर मर भी जाते हैं और जिससे कि इनकी संख्या भी कम हो जाती है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की कि आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखिए कि आप फसलों से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की देखभाल करें और उस समय जो कीट लग रहे हैं आप उन्हें पहचानें और उसका तुरंत से तुरंत प्रबंधन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। श्रोताओं स्वागत है आपका 90.8 FM ग्रीन में और मैं लेकर आई हूं आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान बहुत सारे यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो आसानी से अपनी खेती कर सकें। तो आइए आज इसी यंत्रों के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर बात करें एक यंत्र यानी कि धान की कटाई के लिए जो बेहतर यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, आज उनकी बारे में बात करेंगे हम। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंकज कुमार जी। ये हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि अभियंत्रण और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी कटाई के लिए जो बेहतर मशीनें, आज का हमारा जो विषय है इसके लिए मशीनों के प्रकार कितने होते हैं?
2: ये जो धान काटने के लिए जो मशीनें अभी आ रही है उसमें 3 तरह का मशीन है। जैसे एक स्वतः चलने वाली मशीन जिस मशीन पर अपना इंजन लगा हुआ होता है, 5 से 5.5 HP का इंजन उस पर लगा हुआ रहता है जो वह स्वतः चलती है और उससे 1 घंटा में 1 एकड़ की कटाई आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और इसका मूल्य लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अलग अलग कंपनी के हिसाब से आता है। और इस मशीन से हम 1.25 मीटर चौड़ाई का फसल काट करके, जैसे मजदूर एक खेत में पत्तन लगाते हैं उसी ढंग से एक लाइन से पत्तन लगा देता है ताकि मजदूर बाद में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में वो अपना धान को उठा सके। और दूसरा मशीन है किसानों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, रीपर कंबाइंडर। रीपर कंबाइंडर का क्या है कि कटाई भी करे और धान का बंधाई भी करे। जैसे मजदूर को काटने के बाद बांधना पड़ता है, उसमें अलग मजदूर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि काटने के साथ साथ वो मशीन बंधाई का भी कार्य करता है। और इसका मूल्य लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है। और इस मशीन से भी आप 1.25 मीटर चौड़ाई का आप कटिंग एक कर सकते हैं और 1 घंटा में ये भी मशीन 1 एकड़ की कटाई करती है।
1: अच्छा, तो यहाँ पर हमने इन मशीनों के बारे में जाना सर। और इसके बाद अगर छोटे किसान, बड़े किसान और मंझोले किसानों को 3 भाग में बांटा जाता है तो इनके लिए मुझे लगता है कि लागत के अनुसार जो अलग अलग मशीन अवेलेबल होंगे तो उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: छोटे किसान के लिए जो ये रीपर

0: स्वतः चलने वाली मशीन है, इसको रीपर भी कहते हैं, हार्वेस्टर भी कहते हैं। ये एक छोटे किसानों के लिए है जो कि छोटे छोटे खेत में आसानी से इसका ये कार्य करता है। और रीपर कंबाइनर भी छोटे किसान के लिए है, और मध्यम किसान के लिए जैसे ट्रैक्टर चालित रीपर या हार्वेस्टर कह सकते हैं। इससे आप एक घंटा में आप 2 एकड़ से 3 एकड़ तक आप इसका कटिंग आप कर सकते हैं। ये भी मशीन लगभग 7 फीट चौड़ाई को काटते हुए एक लाइन में पत्तन जिसको आप कहते हैं, धान का जो पत्तन लगाते हैं आप अपने खेत में, और वो आपको लगा देगा। अच्छा। और इस हाँ इस मशीन से आप ट्रैक्टर के आगे ये मशीन लगा हुआ रहता है, और ये जिस टाइप से आप कल्टीवेटर को उठाते हैं और गिराते हैं उसी ढंग से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि फसल कहाँ से काटना है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और बड़े किसान के लिए जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर भी 2 तरह का होता है। जैसे एक कंबाइंड हार्वेस्टर है जो ट्रैक्टर चालित होता है, और दूसरा होता है क्या कि स्वतः चलने वाली, उस पर 110 एचपी का इंजन लगा हुआ होता है। तो इस मशीन से अगर आप कटिंग करते हैं तो लगभग 7 फीट से 8 फीट का चौड़ाई का ये मशीन आता है, इससे आप फसल काट सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर का जो चक्का होता है वो कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन में लग जाता है नीचे, और उस मशीन को ट्रैक्टर के इंजन को हार्वेस्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और वो ट्रैक्टर चालित हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और इससे आप इस मशीन से जब आप कटिंग करेंगे तो इसमें आप 3 से 4 हेक्टेयर यानी कि पर डे आप उससे आप कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कटाई भी कर सकते हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर का मतलब होता है एक साथ फसल की कटाई, थ्रेसिंग और क्लीनिंग, यानी कि तीनों काम एक साथ करके आप सिर्फ भूसा जो है वो खेत में वो डंठल के नुमा वो गिरा देता है। और ट्रैक्टर चालित होने के चलते इसका थोड़ा कार्य क्षमता कम है, क्योंकि स्वतः चलने वाली जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है वो 110 एचपी का होता है। इससे 13 फीट से लेकर के 14 फीट तक कटिंग एक समान इससे किया जा सकता है। ट्रैक्टर चालित रीपर से आप जो है 60 से 70% लेबर आप जो है बचा सकते हैं, 40 से 50% आप अपने जो मैनुअल जो आप माने कटाई करते हैं उससे आप जो है इसके कंपैरिजन में आप 40 से 50% कॉस्ट को कम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है, जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइंड हार्वेस्टर जिसको आप कहते हैं, वो 3 से 4 हेक्टर पर डे आप इससे कटाई करिएगा। और सेल्फ प्रोपेल जो कंबाइंड ये होता है, कंबाइंड हार्वेस्टर होता है जिसको कहते हैं आप, स्वतः चलने वाली मशीन, इससे 5 से 6 हेक्टर पर डे आप उससे कटाई कर सकते हैं, कटाई थ्रेसिंग और क्लीनिंग यानी सफाई आप कर सकते हैं।
1: अच्छा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अभी हम जानना चाहेंगे कि अगर कार्य क्षमता की बात आती है तो 1 घंटे में इन मशीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी?
0: 1 घंटे में जैसे कि आप हम बताए ना 5 से 6 हेक्टर पर डे, यानी कि पर डे का मतलब होता है 8 घंटा में आपको 5 से 6 हेक्टर आपको 8 घंटा में आपका इसको कटाई करेगा।
1: अच्छा।
0: और इसका इस मशीन का मूल्य लगभग 16 से 17 लाख रुपया होता है। और ट्रैक्टर ऑपरेटेड में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर चालित कंबाइंड हार्वेस्टर होता है इसका थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि आपको 6 से 7 लाख रुपया ट्रैक्टर का होता है और लगभग और 8 लाख से लेकर के 9 लाख रुपया तक कंबाइन हार्वेस्टर का होता है। अगर दोनों को अगर आप लगा देते हैं तो लगभग उतना ही हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब भी आप फसल की कटाई करेंगे, रबी या खरीफ या जो भी गर्मा में आप मक्के का, तो आप बीच में जो आप समय बचता है जब कटाई नहीं होता है, तो ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर को अपने शेड में रख करके और ट्रैक्टर को नीचे उतार करके आप सालों भर उससे आप काम ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप 6 से 7 लाख

0: लाख जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है वो आपका काम करता रहेगा, और लगभग 7 से 8 लाख रुपया में जो कंबाइन हार्वेस्टर उस पर है वो आपको सिर्फ कटाई में ही काम करेगा।
1: तो यहाँ पर धान की कटाई के लिए जो मशीनें हैं उनके बारे में जाना, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई और इसके कार्य क्षमता के बारे में बताया, और छोटे और बड़े किसानों के लिए कौन कौन से मशीन हैं अवेलेबल हैं बाज़ार में वो बताया, इसके परिचालन मूल्य के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे जुड़े किसान भाइयों बातें हम लेकर हमेशा आते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
1: और आगे किसान भाइयों आपसे मुलाकातें होंगी, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि। उन्नत कृषि।
1: किसान भाइयों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ, लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि, और आज भी आप सभी के लिए कुछ उपयोगी बातें होंगी यहां पर, और आप सभी को कुछ अच्छी बातें कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मैं लेकर आई हूं यहां पर डॉक्टर संजय कुमार जी को, जो है सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब हमेशा देखा गया है जब खेती की बात आती है और कहीं ना कहीं जल उसका एक मुख्य यूँ कहें जैसे हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो खेती का कहीं ना कहीं ये एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो रही है, और इस सिचुएशन में जल जो है प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सर सबसे पहले तो जल प्रबंधन के तरीके हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, अपने किसान भाइयों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जल प्रबंधन होता क्या है?
3: एक्चुअल जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
1: जी।
3: जल पौधों की समस्त जीवन क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में फसलों की सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है। हम अगर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन का तात्पर्य असिंचित क्षेत्रों में अब जो अपवाह जल नियंत्रण है, जल संरक्षण, जल भंडारण तथा उचित कृषि विधियां अपनाकर इसके दक्षतापूर्ण उपयोग करने से है। वहीं जहां पे वर्षा अधिक हो रही है या वाटर लॉक सिचुएशन है वहां पे अधिक पानी के निकास एवं उचित कृषि पद्धति अपनाने से है, तथा सिंचित क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने, अंतःस्रवण, अपवाह एवं बाष्पन से होने वाली जन हानि के नियंत्रण से है, जिससे लगातार सिंचाई से भूमि पर विशेष कुप्रभाव हुए बिना उपलब्ध जल से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। और ये हम कह सकते हैं कि सिंचाई जल की व्यवस्था वास्तविक रूप से मृदा पर निर्भर करती है। मृदा किस तरह से गठित है, मृदा की संगति क्या है, मृदा में पोरोसिटी क्या है, सिंचाई हमें कितनी सिंचाई देनी है, सिंचाई की क्या गहराई होनी चाहिए एवं सिंचाई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पे जल का प्रबंधन निर्भर करता है।
1: तो सर ने बताया कि सिंचाई की विधि भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जल प्रबंधन के लिए। तो सर आपने बताया जल प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर कि जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है?
3: देखिए जल प्रबंधन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जल ऐसा चीज है जो पौधों को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति हम करते हैं उस पौधे को सूखे से बचाने के लिए, अगर ठंडा का दिन है तो उसे पाले से बचाने के लिए, मृदा एवं वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, एवं वो मिट्टी जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है उस मिट्टी को लवण से दूर, लवण की मात्रा को कम करने के लिए भी हम जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से। हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, जिस तरीके से जिस तरीकों को अपनाकर, यानी कि सिंचाई के विधि के तरीकों को अपनाकर हमारे किसान

0: आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
1: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ, और जहाँ जल निकास नहीं होती है, वहाँ अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो, लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है, लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है, विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूस सेचुरेशन का, जहाँ पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है, और श्रम की मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है, लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो, वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है।
0: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये। और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य बातें, जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए?
1: देखिए, जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है जी। और ये अनौक्षीकृत स्थिति होती है, इस कारण स्फूर, लोहा और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है, तो ये देखा गया कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

0: और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था, उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब कि हमें जल की मात्रा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं।
0: देखिए, क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेष कर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
1: नमी रहना अनिवार्य है
0: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांतिक अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये 4 अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30 से 40% की कमी आती है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
0: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं, जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कदवा एवं समतलीकरण करें अपने खेतों की। अगर खेत समतलीकरण करेंगे तो खेत में एक समान पानी रहेगा और उस स्थिति में हमें जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाउ से 1 जुताई एवं डिस्क हैरो से 2 बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है, जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है, जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से। अगले विषय, अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ। और हर रोज कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सभी के सामने हाजिर होता है तो डेफिनेटली आप सभी के लिए कुछ खास बातें हाजिर होंगी। तो आज ऐसे ही एक विशेष जो हमारा विषय है वो है धान में खरपतवार प्रबंधन। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और वैसे मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोतागण, आप सभी को बता दें कि जब हम खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपने फसलों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें, और ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अपने फसलों को खरपतवार से कैसे बचाएं और किस तरीके से बचाएं। तो इसे ही कहते हैं खरपतवार प्रबंधन, और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर एस के चौधरी। तो सबसे पहले जब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है, परंतु यहाँ इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर औसत से बहुत कम है। और तो और बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है इस खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी। धान की खेती प्रायः 3 प्रकार की जमीन में की जाती है। बिहार में इस खेती 25% ऊपरी जमीन में, 25% मध्यम जमीन में, 40% निचली जमीन एवं 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी होने के कारण या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है, तथा किसान सही समय सही किस्म के चुनाव, बिचड़े की तैयारी इत्यादि ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है तकनीकी ज्ञान से कि किस जमीन में किस प्रकार की किस्म का चयन करें, कितना खाद दे, कितनी पानी की व्यवस्था करें, उसका कीट व्याधि का सुरक्षा किस प्रकार करें, इस सब में तकनीकी किसान को अभाव रहता है। और तो और मेरा आज का विषय है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा है जो अगर नहीं करेंगे, अगर समय से नहीं किए तो इसमें उपज में बहुत कमी हो सकती है। और तो जो धान सीधी बुआई होता है उसमें 100% तक का यील्ड, जो उपज है वो कम हो जाती है।
0: मतलब कि जो 100% यील्ड है वो उपज कम हो जाती है अगर इसका प्रबंधन ना करें तो। और इसलिए हमारे किसान भाइयों को घाटा भी हो सकता है अगर ये व्यवसायिक तौर पर अगर फसलों को बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं बाजारों में तो। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इसलिए 100% यील्ड के लिए आपको खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आप आगे भी कुछ कह रहे थे,
1: बोल रहे अभी जो खरपतवार प्रबंधन है इस पे अगर समय से कर लिए तो उपज बढ़ेगा ही, साथ साथ इसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है। हाँ। जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस दूसरे से कम हो जाएंगे।
0: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है, जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
1: तो हमारे बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे, पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथिलीन, जो कि ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप उसमें डाल दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम्प 35-30 ईसी के नाम से मिलता है।
0: अच्छा।
1: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़,

0: या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में नमी होने पर छिड़काव अवश्य रूप से करें, या अगर ये दवा अगर बाजार में नहीं उपलब्ध है तो इसका एक अलग है ऑक्सीड्राइजिल, जो मार्केट में टॉप स्टार या रेफेट नाम से मिलता है। ये 50 ग्राम प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें। इससे बहुत हद तक खरपतवार नहीं निकलेंगे खेत में। उसके बाद धान जब अंकुरण हो गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं, ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक यह है जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है। तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद 4-5 खरपतवार नाशी है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है बिस पैरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट में नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है। ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80 से 100 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15 से 20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 ईसी के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सी सल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर। ये चौड़ी पत्ती के या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरान, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है। ये 1820 ml प्रति एकड़ नहीं तो 50 ml प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ मोथा कुल के लिए है। ये भी 25 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब तो थोड़ा दवा महंगा होगा। एक सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा है 2,4-D इथाइल ईस्टर, जो मार्केट में 38 ईसी के नाम से मिलेगा। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए है। इसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए 20 से 25 दिन के बाद। ये जितने भी दवा के नाम बताएं, ये धान में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है।
1: सीधी बुआई के लिए
0: सीधी बुआई कहने का मतलब इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, चाहे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, बस धान में ये प्लॉइंग करके आप उसमें या तो चाहे लाइन स्वइंग से या नहीं तो स्प्रे मतलब छिड़काव विधि से आप धान लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: धान की दूसरी विधि है लगाने की, नर्सरी पहले लगाइए 20 से 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग करिए, जो कि कदवा करके खेत में लगाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग में 20 से 25 या 25x25 या 15x25। इसी हिसाब से दूसरा विधि है धान के नर्सरी विधि से लगाने के लिए खरपतवार नाशी अलग है। अगर आप धान को नर्सरी लगा लिए हैं 20 से 25 दिन हो गया है, तो आप उसको उखाड़ के और मेन फील्ड जो कदवा किए हैं उसमें आप लगाएंगे, उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग अलग होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो मार्केट में मीचेट नाम से मिलता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 ईसी के नाम से मार्केट में मिलेगा। मीचेट 50 ईसी, इसका जो दर है 1.5 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आप स्प्रे करिए 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 4 से 5 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब आप ट्रांसप्लांटिंग कर देने के 4 से 5 दिन के बाद आप इसको बालू में मिक्स करके और अच्छे तरीके से मिला के इसको खेत में छिड़काव करें। और ये ध्यान रखिएगा जो खेत में 1 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तब इसको आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बहुत सारे जो खरपतवार है वो इससे नहीं निकलेंगे, इसके निकलने से बाद। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं मिले तो पेट्राक्लोर है, जो मार्केट में रेफेट नाम से मिलता है, 750 ग्राम AI है, डेढ़

0: लीटर प्रति हेक्टेयर को, ये भी 3 से 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, धान का 3 से 7 दिन के बाद लगाने के बाद इसका स्प्रे करिए। दूसरा तीसरा दवा है ऑलमिक्स, जो कि इसमें 2 खरपतवार नाशी का कॉम्बिनेशन है, पहला क्लोरीमिरॉन और दूसरा मेट सल्फिरॉन। ये एक जो डब्बा में आता है 4 यूनिट का रहता है, वो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 15 से 20 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग में स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और ये भी बताया कि कब करना चाहिए, दवाओं के बारे में बताया कि कौन कौन से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि बिस्पैरबिक सोडियम के बारे में कहा, इथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में कहा, और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं इसका लाभ हम जानना चाहेंगे। आपने बताया जैसे कि 100% यील्ड होता है, इसके अलावे कुछ लाभ अगर हों तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: खरपतवार नियंत्रण करने से बहुत से ही लाभ हैं। खरपतवार क्या है, जो किसान भाइयों नहीं लगाते हैं वो अपने आप जो उपज जाता निकल आता है उसको खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार खेत में रहेगा तो इसका एक तो लाभ ये है, सबसे जो प्रमुख लाभ है इसका उपज बढ़ेगा। दूसरा अगर लाभ देखेंगे तो दूसरा जो आप खाद देते हैं, जो आप उर्वरक देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो क्या होता है, अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो खरपतवार का नेचर या चाहे आदत होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने का। तो आप जो खाद देंगे धान के लिए वो क्या करेगा, खरपतवार ले लेगा। तो आपको समुचित जो उपज होना चाहिए जितना खाद देने से, उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है, और तो और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट, धान को नहीं जाके चल जाएगा खरपतवार में। तीसरा फायदा ये है, जो धान में प्रमुख जो होती है उसका नेचर होता है टिलरिंग देने का, टिलरिंग तभी देगा जब उसमें स्पेस होगा, जगह होगा। और खरपतवार क्या करता है, जो बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई खेत में बहुत तेज़ी से होता है, तो वो धान को बहुत कम स्पेस देता है, जिससे कि टिलर निकलने की का जगह ही नहीं छोड़ता है। और उसके अलावा बहुत सा है, जैसे पानी दिए, पानी की जो धान को चाहिए वो खरपतवार ले लेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फायदा है, अगर खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो ये सारे जितना भी लाभ है वो खरपतवार को न जाके धान को, धान अगर धान में अगर आप खाद देंगे अगर बिना खरपतवार का नियंत्रण किए हुए, तो उसमें कंट्रोल नियंत्रण होने के बजाय ज्यादा और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इसीलिए जरूरत है खरपतवार प्रबंधन की, और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप खरपतवार प्रबंधन यानी कि आप फसल लगाते हैं तो आप टाइम टू टाइम समय पर आप देखते रहें कि फसलों में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए इसका प्रबंधन ज़रूर करें और खास ख्याल रखें अपने फसलों की सुरक्षा का। तो और भी बातें और भी विशेष चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के सामने, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर

या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो, इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की

भेदभाव को चुनौती दे सकते। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ ज़रूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफ़ी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफ़ी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो

0: ही लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले दो दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गाँवों के भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरी टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, घोषपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार,
1: साथियों आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला

0: कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में एआई की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में एआई के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह एआई का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो एआई एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में एआई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो एआई है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में एआई का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि एआई का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है,
0: मतलब उसमें अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो एआई जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए एआई नया है, तो उनके बारे में एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया में बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें, तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है।

0: कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो

0: कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फ़ायदे से ज़्यादा उनके फ़ायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है, डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो

0: प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, क्योंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल्ड लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो

0: और एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, जो कि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूंकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पे करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है, तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती हैं, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए, एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है। जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पे इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप,
1: धीरे धीरे
0: एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा,
1: जी
0: बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था। तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया, वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी
1: जी
0: कि
1: जी
0: जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई

0: युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
2: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वे

0: नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
1: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
0: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
1: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा, जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
0: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे

0: जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थीरम है, थीरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं। एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती, तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है। एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है, तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं, तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से। एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें, तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं, तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है, या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है, और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है, और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है, और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है। और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में एक दिन के अंतराल पे

0: हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है
1: जी।
0: इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवौर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि,

0: हाय, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन

0: स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
0: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए, और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था, तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर. आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में. एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं. जी हाँ, हम आज बात करेंगे

0: एरोबिक धान की खेती के बारे में, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं इस विषय पर। तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है।
1: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूँ के भांति धान को उगाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
0: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान, इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
1: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारी धान किसान भाई खेती करते हैं वह पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं। उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है। और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
0: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन

0: निकलाता है, इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राजील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी होती मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितने बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह हिलाएं। इससे स्वस्थ एवं भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ और स्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है, उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद 1/3 जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को बराबर बराबर भागों में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
1: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं फुदके भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और को के रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुदके तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमिडाक्लोपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा व्यस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरोन 3G या कारटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है। यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं। ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है आवश्यकता अनुसार।

0: क्विनोलफॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है। यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी क्योंकि कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग 1 माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्कृत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
0: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। अब बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने पर भेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की

0: अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद निम्नलिखित अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणें की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपस्थित प्रजातियों में गौतम, ब्रिचारिया, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है, तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपस्थित किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियाँ खरी तथा हरी होती है, इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170-175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचारिया है, यह बौना प्रभेद 155-160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज क्षमता 55-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है, यह बौना प्रभेद बोरों में 160-170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज लगभग 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे। कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
1: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के 10वें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में 1 दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेष्ठ होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
0: जी तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं कि किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
1: बोरो के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को 1 हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर 1 या 1 से 2 बीजरे रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 1 वर्ग मीटर में 35-40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएँ तो वहीं पुनः रोपनी कर देने चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं शस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग, चाहे

0: बॉटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संस्तुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बालू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल की भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखा कर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं और प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है, लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी ले के

0: हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं। और ये इस तरह का जो अधिनियम है, ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
0: उन्नतशील बीज, जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवांशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवांशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है, तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी
0: दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो
1: हम्म,
0: भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्स है, मिक्सचर है। तो ये उसको भी ना, एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी। और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
0: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं, और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है। तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं। सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी। अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
0: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और उस अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला एक है कि एक एक खेत में से दूसरे खेत के, एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरे, इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे, अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं,

0: कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी, एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान में, धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्म को, किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात यह है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स होके उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं।

0: ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का, बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग है तरह के हैं, उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है, तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी, पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें, ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि इसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें, और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें, ताकि वो पूरी जो नमी है, करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे, फिर थ्रेश करेंगे, उसको अच्छे से सुखा लें, जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप, या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद, उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की, तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों

0: सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां, हर रोज की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हां, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु जी।
0: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसे बता दीजिए।
1: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं धान बिहार की एक प्रमुख फसल है और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है, तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है, तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता, तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेके 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है
0: जी।
1: तो इसके अलावा जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है, और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही भंडारण न होने की वजह से हो जाती है।

0: जी
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो, वो है नमी। तो जैसे हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है, तो
1: अच्छा
0: उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे ख़राब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर हम देखें तो वो खेत में खड़ी फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, भंडारण में उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फफूंद एक बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत सारी फफूंद होती हैं जो भंडारण में के समय में धान को हम ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे घुन लग जाता है, या कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू का होता है, और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में ख़राब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी
0: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे कि धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी ना हो, जिस वजह से फफूंद या कुछ और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो ना पनपे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
0: जी बिल्कुल। नमी, देखिए जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए। दूसरे, जो बीज बीज की खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें। क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं, इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें। और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज बीज को अगर हमें भंडार करना है, भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पर उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से, जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
1: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं।

0: हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें।
1: जी बिल्कुल। धान का भंडारण की जब आप पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है तो उसके

0: उस कमरे की जो दीवारें हैं वो उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों। खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम ज़रूरत के हिसाब से उनको जब ज़रूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पे हमें धान का भंडारण करना है पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा और वहाँ पे साफ़ सफाई कर लें। बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखें कि जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का या जो आपको बेचना है बाद में जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किसमें धान को
1: कंटेनर।
0: रख
1: हाँ
0: कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप अगर आपके जूट के बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें। या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका
1: जी,
0: इस्तेमाल
1: गांव
0: कर
1: में हमने
0: सकते हैं।
1: देखा है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं।
0: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर
1: और
0: सकते
1: आजकल
0: हैं।
1: स्टील के भी है।
0: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है बिन है उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे तो उसकी एक परत लगा देंगे तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा
1: नहीं
0: नहीं
1: रहेगा
0: रहेगा।
1: जी।
0: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खौलते पानी में डाल दें।
1: अच्छा
0: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म
1: सूक्ष्म
0: जीव
1: जीव वो
0: होंगे
1: मर
0: वो ख़त्म हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है और सुखाने के बाद उसका उनको उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
1: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस
0: हाँ,
1: बोरों का।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से जैसे मैंने बताया खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है टंकी होता है उसमें एक एक लेयर डालते जाएं और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते
1: और
0: हैं।
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है
0: हाँ,
1: भंडारण।
0: आयुर्वेदिक गोलियाँ भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है तो जो इस हमें
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
0: हाँ कर्पूर की गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियाँ हैं, माचिस की डिब्बियाँ हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये

0: माचिस की तिल्लियां ले लें तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
0: बीच बीच में अगर टंकियों में रखेंगे तो, क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो
1: बाद
0: कीड़ों
1: में
0: को लगने से बचाता है, और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है।
1: जी
0: तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में। तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
0: जी किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन
1: रेडी
0: हम
1: टू फूड यार,
0: रेडी टू, हाँ मतलब वो खाने के
1: रेडी
0: लिए
1: टू ईट कह सकते हैं
0: रेडी
1: उसे।
0: टू ईट, तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहाँ पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट, उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा।
1: बिल्कुल
0: तो बीज में भ्रूण सही भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका
1: सही हो गया।
0: सही नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई एक चीज़ और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं उसमें। फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई कि
1: धान के फसल
0: धान
1: के
0: के
1: दाने के,
0: भंडारण के लिए जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पे, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से
1: बच सकते हैं।
0: इससे बीज को हम बचा सकते हैं।
1: जी
0: और इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी फ्यूमिगेशन भी किया जाता है।

0: जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का, उसके लिए ध्रुवीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं। और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि ध्रुवीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें। और ध्रुवीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा
1: सुरक्षित
0: रहेगा,
1: रहेगा जी
0: सुरक्षित भी रहेगा।
1: जी तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए अपने इन धान को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच सबौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 90.8 FM ग्रीन की टीम की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया गया। सबौर प्रखंड के घोषपुर गांव के अंदरूनी हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और कुछ ग्रामीणों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। बाढ़ के कारण घोषपुर के कुछ लोग सबौर प्रखंड के क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं और पानी लगातार बढ़ने के कारण कुछ अन्य गांवों के भी प्रभावित होने के आशंका बनी हुई है। वहीं भिट्टी गांव के पीछे और बड़ी इब्राहिमपुर में भी कई ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ गया है। सड़क के स्तर पर बने कई घर भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। पानी बढ़ने की स्थिति में छोटा इब्राहिमपुर भी प्रभावित हो सकता है। आरे टोला की ओर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ ग्रामीण अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। आरे टोला से होकर जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर गांव और ब्राह्मण टोला को जोड़ता है। ये मार्ग भी अब बाढ़ के पानी से प्रभावित है। बाबूपुर से राजंतीपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है और राजंतीपुर जाने के लगभग सभी रास्ते पानी से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेज के बांध के बगल से जाने वाले रास्ते पर भी पानी आ गया है। वहीं बाबूपुर शिव मंदिर के पास से DPS की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी पहुंच चुका है। बाबूपुर की ओर से रजंतीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। पानी बढ़ने के कारण कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सबौर और हाई स्कूल के मैदान, साथ ही सबौर प्रखंड के आसपास उपलब्ध खाली स्थानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। सबौर क्षेत्र के आरी टोला के पीछे, ब्राह्मण टोला के पीछे, बाबूपुर, रजंदीपुर, राजपुर, चंदेरी, मिर्जापुर, इंग्लिश, भोजपुर, सुल्तानपुर, भिट्टी और खनकित्ता सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अगर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करें तो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और वहां कई तरह के और भी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी के पास, बाबूपुर में NH के पास और हाई स्कूल सबौर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों के लिए कुछ जरूरी सावधानी। ग्रामीणों को निचले स्थानों पर रहने से बचने की और पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी गड्ढों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाने दें। पशुओं को भी निचले स्थानों पर बांध कर न रखें, उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले जाएं। 90.8 FM ग्रीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के समन्वय से आगे मिलने वाली आवश्यक

0: जानकारी और सुविधाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से
2: आम आदमी के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थीं, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
2: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन

0: सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था, पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है, यानी कि जो एक किसान